वक्त आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्म शाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्म शाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

इस वक्त आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तुहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं तुहा सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्या।

92.2 MHz पर ए तुहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओ कन तुहा सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ए है तोहां सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कने तोहां सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महका। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही, तोहां सारे ए बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गुंज।

0: गोरिया।
1: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
2: बैठिए मैडम, बैठिए। देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो, पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था, एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो।
3: अरे बेटो तू यहाँ क्या कर रहा है, और ये दोनों लड़कियों कौन है?
2: देखिए भाई साहब, आप कौन है?
3: जी मैं इसका बाप हूँ।
2: आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है?
4: जी नहीं।
2: तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें?
5: जवान तो कटेगा भैया तेरा।
2: और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि
4: रोड किसी के बाप का नहीं।
2: शाबाश, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
6: नमस्कार दोस्तों, प्रेम विश्वास और भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पावन पर्व रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि प्यार विश्वास सुरक्षा और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है।

रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। हर कलाई पर सजे प्यार का धागा और हर चेहरे पर मुस्कान रहे। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ रेडियो गुंजन धर्मशाला की ओर से आ रहे इस रक्षाबंधन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

0: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी?
1: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
0: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए कौन सा स्टाइल चाहिए आपको। ये देखिए, पिछले महीने मिश्रा जी की बेटी की शादी के लिए सिया था।
1: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए, थोड़ा सिंपल दिखाइए।
0: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
1: चुन्नी के लिए।
0: ये अपनी चुन्नी?
1: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
0: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
2: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी। पंडित जी ने इसी इतवार का मुहूर्त निकाला है, तो हो तो जाएगा ना तब तक।
0: अच्छा, 12 साल की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
2: नहीं, क्यों?
0: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
2: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
0: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
3: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
0: ना हम सीएंगे, ना किसी को सीने देंगे।
4: जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा मित्र, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी खामोशी में ही ईश्वर का वास।
5: मम्मी जी क्या कह रहे हैं, बचपन में आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था।
6: हाँ, जब मैं 12 साल का था ना, तो मैं पापा को बिना बताए उनकी बाइक लेके घर से बाहर निकल गया, और मैं बाइक इतनी तेज चला रहा था कि सामने से एकदम से ट्रक आ गया। तो ट्रक को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से लेफ्ट ले लिया। तो जैसे ही लेफ्ट लिया, सामने से गाड़ी आ रही थी, और गाड़ी में जाके बाइक लगी और बाइक पूरी खत्म हो गई।
5: बेबी बाइक को छोड़ो, आप बताओ आप बचे थे कि नहीं।
6: तब तो बच गया था, लगता है अब नहीं बचूंगा।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 MHz पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आज के कार्यक्रम में श्रोताओं बस इतना ही। अब अपनी रेडियो दोस्त पिंकी को दीजिए इजाजत और यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: आकर गुड़िया, आकर आ आ
1: गुड़िया
2: गुड़िया
0: आकर
2: गुड़िया गुड़िया आ गुड़िया आकर आ
1: गुड़िया

रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। हर कलाई पर सजे प्यार का धागा और हर चेहरे पर मुस्कान रहे। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ रेडियो वंचन धर्मशाला की ओर से आ रहे।

0: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी?
1: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
0: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए कौन सा स्टाइल चाहिए आपको। ये देखिए, पिछले महीने मिश्रा जी की बेटी की शादी के लिए सिया था।
1: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए, थोड़ा सिंपल दिखाइए।
0: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
1: चुन्नी के लिए।
0: ये अपनी चुन्नी?
1: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
0: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
2: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी। पंडित जी ने इसी इतवार का मुहूर्त निकाला है, तो हो तो जाएगा ना तब तक।
0: अच्छा, 12 साल की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
2: नहीं, क्यों?
0: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
2: चलो छोड़ो उसे,

0: किसी और से सिलवा लेंगे।
1: अरे भैया जी एक मिनट, अरे बिरजू वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
2: मास्टर जी टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
1: ना हम सीएंगे ना किसी को सीने देंगे।
3: जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा मित्र, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी खामोशी में ही ईश्वर का वास।
4: मम्मी जी क्या कह रहे हैं, बचपन में आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था।
5: हाँ, जब मैं 12 साल का था ना, तो मैं पापा को बिना बताए उनकी बाइक लेके घर से बाहर निकल गया, और मैं बाइक इतनी तेज चला रहा था कि सामने से एकदम से ट्रक आ गया। तो ट्रक को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से लेफ्ट ले लिया। तो जैसे ही लेफ्ट लिया, सामने से गाड़ी आ रही थी, और गाड़ी में जाके बाइक लगी और बाइक पूरी खत्म हो गई।
4: बेबी बाइक को छोड़ो, आप बताओ आप बचे थे कि नहीं।
5: तब तो बच गया था, लगता है अब नहीं बचूंगा।

नमस्कार दोस्तों, 91.2 तुमेगा हर्ट्स पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। आप सभी जुड़ चुके हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। हाजिर हो गई हूँ आप सभी का बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा कार्यक्रम लेकर। जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे हैं और अपनी सेहत का ध्यान बहुत अच्छे से आप सभी रख रहे हैं।

दोस्तों आज 23 अगस्त 2026 का दिन बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा रविवार का दिन, अपनों का दिन, फैमिली के साथ कुछ प्यारे प्यारे से लम्हे बिताने का दिन। तो इसे खूब इंजॉय कीजिए और ज़्यादा खूबसूरत बनाइए। दोस्तों गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में ढेर सारी बातें, ढेर सारा मनोरंजन और ढेर सारी जानकारियाँ आप सभी तक पहुँचती हैं। तो फिलहाल आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम में मनोरंजन की एक प्यारे से खूबसूरत से गीत के साथ।

कुछ बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। कहते हैं जिंदगी में तिनका नहीं मील का पत्थर बनना चाहिए। तिनका कभी मत बनिए कि कोई हवा का झोंका आपको उड़ा कर ले जाए। वो मील का पत्थर बनिए जिसे बड़े बड़े तूफान भी हरा ना सके, हिला ना सके, डिगा ना सके। जिंदगी में हालात चाहे कितने भी विपरीत क्यों ना हो, अपनी शख्सियत ऊंची रखिए और मन मजबूत रखिए। क्योंकि कमजोर वही नहीं होता जो गिर जाता है, कमजोर वो होता है जो गिरकर उठने का हौसला खो देता है। खुद को इतना मजबूत बनाइए कि परिस्थितियां आपको बदले नहीं, बल्कि आपकी मजबूती के आगे परिस्थितियां बदलने पर मजबूर हो जाएं। इस तरह का किरदार जब आप अपनी जिंदगी में ढाल लेते हैं तो कोई भी मुश्किल या कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं लगती। ऐसा लगता है बड़ी होगी भी तो कोई बात नहीं, हम डट कर उसके सामने खड़े हैं तो उसे फेस करेंगे और लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल हम भी कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और आप सभी को लेकर चलेंगे कार्यक्रम के एक और प्यारे से खूबसूरत से गीत की ओर। तो एंजॉय कीजिए अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा मीठा सा गीत।

0: तो अलका याग्निक शान के आवाजों के साथ आप सभी ने एंजॉय किया। बस इतना सा ख्वाब है मूवी का, ये प्यारा सा गीत। तो आइए दोस्तों, इसी गीत के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और बात करते हैं मौसम की। जी दोस्तों, तो इस समय धर्मशाला का तापमान लगभग 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास, यानी कि 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है इस समय आप सभी महसूस कर सकते हैं। और मौसम विभाग की हम बात करें दोस्तों, तो 23 से 28 अगस्त तक प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश हो सकती है, लेकिन इस अवधि के लिए कोई अलर्ट या फिर भारी बारिश की विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है। शनिवार को प्रदेश के कई हिस्सों में हुई बारिश के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिला, लेकिन सतर्कता और सावधानी बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मौसम है और मौसम कब करवट बदल दे कोई नहीं जानता। तो 9:20 हो चुके हैं दोस्तों, इसी के साथ आइए लेकर चलते हैं आप सभी को समाचारों की ओर। प्रादेशिक समाचार सुनते हैं और उसके बाद फिर से वापस आते हैं अपनी इस प्यारी सी बातचीत और मनोरंजन के साथ।
1: हड़सर से गौरीकुंड के बीच उपलब्ध होगी BSNL की 2G सेवाएं। प्रशासन ने यात्रियों के लिए जारी किए एहतियाती उपाय। राज्य पथ परिवहन निगम के धर्मशाला डिपो में संचालित इलेक्ट्रिक बसें बनी बेहतर प्रदर्शन और आर्थिक बचत का जरिया। और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि सीमा को हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की सूचना के साथ प्रभावी हो गया है। इससे पहले सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। मंत्रालय का मानना है कि टेलीविजन उद्योग और डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा मौजूद है। टेलीविजन के लिए विज्ञापन अवधि सीमा वर्ष 2006 में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत लागू की गई थी। तब से लेकर आज तक टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। वर्ष 2006 में 62 टीवी चैनलों की तुलना में आज 900 से अधिक चैनल उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जनजातीय जिला किन्नौर में ग्रामीण परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। योजना के तहत जिले में 386 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। योजना के तहत पात्र परिवारों को मकान निर्माण के लिए 1,30,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। विस्तृत ब्यौरा हमारी किन्नौर जिला संवाददाता से।
2: केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जनजाति जिला किन्नौर में ग्रामीण परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। वर्ष 2016-17 से 2024-25 तक की रिपोर्ट के अनुसार जिले में 601 मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया था। रिपोर्ट के अनुसार 600 लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया और 599 मकानों को मंजूरी मिली। इनमें से अब तक 386 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। ब्लॉकवार देखें तो कल्पा में 73, निचार में 192 और ऊ में 121 मकान पूरे किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के पात्र परिवारों को सुरक्षित और पक्का आवास उपलब्ध करवाना है। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
1: रसायन व उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने खरीफ और आगामी रबी मौसम के लिए उर्वरक विभाग की तैयारियों की कल समीक्षा की। नई दिल्ली में आयोजित बैठक में उर्वरक विभाग के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उर्वरकों की उपलब्धता संतोषजनक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरकों की निरंतर और निर्बाध आपूर्ति करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कुल्लू जिला के कसोल में उपायुक्त कुल्लू सुरजीत सिंह राठौर की अध्यक्षता में नशा निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक कुल्लू अभिषेक सेकर सहित पुलिस व विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में मणिकर्ण कसोल घाटी में मादक पदार्थों के अवैध सेवन, बिक्री, तस्करी, वितरण की रोकथाम तथा क्षेत्र में बढ़ती पर्यटन गतिविधियों के बीच उत्पन्न चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में क्षेत्र में आने वाले प्रवासी श्रमिकों, विशेषकर नेपाली मूल के श्रमिकों के संबंध में भी चर्चा की गई।
3: उनके क्षेत्र में आने का उद्देश्य नियोजक व निवास संबंधी आवश्यक जानकारी उपलब्ध रखने तथा लागू नियमों के अनुरूप सत्यापन और रिकॉर्ड रखने पर भी बल दिया गया। बैठक के दौरान स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों, महिला मंडलों, युवा मंडलों, होटल व्यवसायियों व अन्य प्रतिभागियों से नशे से संबंधित गतिविधियों, अवैध पार्टियों, संदिग्ध व्यक्तियों व अन्य गैर कानूनी गतिविधियों के संबंध में चर्चा की गई। स्थानीय लोगों से आग्रह किया गया कि क्षेत्र में मादक पदार्थों की अवैध तस्करी, बिक्री अथवा वितरण से संबंधित किसी भी सूचना को पुलिस व संबंधित विभागों के साथ साझा करें। लाहौल स्पीति जिला के उदयपुर उपमंडल के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल त्रिलोकीनाथ में आयोजित राज्य स्तरीय पोरी मेले की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में उपायुक्त लाहौल स्पीति किरण बढ़ाना ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उपायुक्त ने कहा कि पोरी मेला लाहौल स्पीति की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये आयोजन धार्मिक आस्था के साथ साथ लोक संस्कृति, परंपराओं और भाईचारे को सहेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सांस्कृतिक संध्या में स्थानीय कलाकारों और स्टार कलाकारों ने लोकगीतों, लोक नृत्यों और रंगारंग प्रस्तुतियों से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मणिमहेश यात्रियों को इस बार हड़सर से लेकर गौरीकुंड तक BSNL की 2G सेवाएं मिल पाएंगी। पहले हड़सर से मणिमहेश तक मोबाइल सिग्नल न होने के कारण ये क्षेत्र ब्लैक जोन रहता था और 13 किलोमीटर के पैदल सफर के दौरान यात्री अपने परिजनों से संपर्क नहीं कर पाते थे। जिला प्रशासन के प्रयासों से धनछो में BSNL का टावर स्थापित किया जा रहा है, जो 4 सितंबर से शुरू हो रही मणिमहेश यात्रा से पूर्व कार्य करना शुरू कर देगा। उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने बताया कि मणिमहेश यात्रियों को संचार की सुविधा देने के लिए ये पहल की गई है।
4: BSNL के माध्यम से 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो एक धनछो पे टावर है एस्टैब्लिश करने का कार्य किया जा रहा है। टावर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है, उसमें जो उनके BTS लगते हैं जिसके बाद रेडिएशन स्टार्ट होती है वो भी यात्रा से पहले पहले 20 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। तो BSNL का एटलीस्ट आपके पास 2G नेटवर्क जो है वो नीचे हमारे हड़सर से लेके ऊपर आपके गौरीकुंड तक अवेलेबल रहेगा, ताकि जो एक पूरा ब्लैक आउट जोन बन जाता था वो इस बार की यात्रा में हमें देखने को नहीं मिलेगा।
3: उपायुक्त ने श्रद्धालुओं से अपील की कि पंजीकरण के उपरांत ही मणिमहेश यात्रा पर जाएं।
4: मेरी सभी श्रद्धालुओं से पहली अपील तो यही रहेगी कि आप रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही यात्रा का प्लान करें, मौसम की करंट जानकारी उपलब्ध करें, उसी के बाद अपनी यात्रा का प्लान करें। साथ ही में जो मणिमहेश की यात्रा है ये डिफिकल्ट ट्रैक रूट है, लगभग 15 किलोमीटर का रास्ता है और आप 4500 मीटर की हाइट पर जाते हैं, तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी करके आएँ। चप्पलें वगैरह में यात्रा, निकरों में यात्रा करने वाली नहीं है। अपने पास सर्दी के कपड़े रखें, प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़ रखें, रेनकोट अपने साथ लेके चलें। लंगर और दुकानें काफ़ी कंटिन्यूसली आपको मिलती हैं, बट उसके बावजूद भी कुछ बेसिक खाने का और पीने का पानी ज़रूर अपने साथ में लेकर चलें। छोटे बच्चे और बुज़ुर्गों के साथ इस यात्रा को अवॉइड करें। यात्रा का एक ही आधिकारिक रूट है जो कि आपका हड़सर से ऊपर जाते अपने।
3: हिमाचल पथ परिवहन निगम के धर्मशाला डिपो में संचालित 5 नई इलेक्ट्रिक बसें निगम के लिए बेहतर प्रदर्शन और आर्थिक बचत का जरिया बन रही हैं। HRTC धर्मशाला के डिविजनल मैनेजर पंकज चड्ढा ने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से निगम को ईंधन खर्च में बचत हो रही है और इन बसों में प्रदूषण व शोर कम होने से यात्रियों को आरामदायक सफर की सुविधा मिल रही है। उन्होंने बताया कि बेहतर रूट प्लानिंग और अपॉर्चुनिटी चार्जिंग के चलते बसों का औसत दैनिक संचालन 217 किलोमीटर तक पहुंच गया है। राजधानी शिमला तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह से बारिश हो रही है। मंडी में पिछले 8 घंटों से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। वहीं कुल्लू में भी आज सुबह बारिश का समाचार है। मौसम विभाग के अनुसार 23 से 28 अगस्त तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो सकती है, लेकिन इस अवधि के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। प्रदेश भर में भूस्खलन से 98 सड़कें और 89 बिजली ट्रांसफार्मर तथा 42 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। संबंधित विभागों द्वारा इन सुविधाओं को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इस बीच सिरमौर जिला के गिरी जंटौन डैम से आज शाम 7 बजे पानी छोड़ा जाएगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सुरक्षा के दृष्टिगत स्थानीय लोगों से नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला का शीर्षक है, हिमाचल समेत 7 राज्यों में चीनी की जमाखोरी पर सख्ती। हिमाचल दस्तक के शब्द हैं, लगातार दूसरे दिन गतिरोध की भेंट चढ़ी विधानसभा की कार्यवाही। दिव्य हिमाचल की सुर्खी है, वंदे मातरम और राष्ट्रगान पर फिर हंगामा, सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नारेबाजी के बाद दो बार स्थगित करनी पड़ी कार्यवाही। दैनिक जागरण की

खबर है, बिना मंजूरी पाठ्यक्रम शुरू नहीं कर सकेंगे निजी विश्वविद्यालय। दैनिक भास्कर प्रदेश उच्च न्यायालय के हवाले से लिखता है, 90 दिन पूरे होते ही रद्द हो जाता है निलंबन आदेश। शिक्षकों को बहाल करें, कर्मचारियों के निलंबन नियमों को लेकर कोर्ट का फैसला। पंजाब केसरी के अनुसार, कर्मचारियों के निलंबन की समीक्षा निर्धारित 90 दिनों के भीतर होना अनिवार्य। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट विज्ञापन अवधि सीमा को हटाने की सूचना की जारी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत किन्नौर जिला में बनाए गए 386 मकान। मणिमहेश यात्रियों को हड़सर से गौरीकुंड के बीच उपलब्ध होगी बीएसएनएल की 2G सेवाएं। प्रशासन ने यात्रियों के लिए जारी किए एहतियाती उपाय। राज्य पथ परिवहन निगम के धर्मशाला डिपो में संचालित इलेक्ट्रिक बसें बनी बेहतर प्रदर्शन और आर्थिक बचत का जरिया। और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

तो सुसमाचारों और एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए दोस्तों, इस प्यारे से सफर को अपनी बातचीत के खुशनुमा माहौल के साथ आगे की ओर लेकर चलते हैं। जैसे हर कार्यक्रम में आप सभी के साथ होती हैं कुछ खास बातें, जो हमारे आसपास कुछ ऐसी घटनाएं जो देखते हुए ऐसे हमें झकझोर कर रख देती हैं, सोचने पे मजबूर कर देती हैं, उन्हीं से जुड़ी कुछ खास जागरूकता भरी बातें आप सभी के साथ साझा करने की कोशिश रहती है, ताकि जो लोग सिचुएशंस फेस कर रहे हैं, जो घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं, वो कोई और ना करे, उन्हें उन मुश्किलों से ना गुजरना पड़े। तभी आपके साथ या आप तक जो है वो जानकारियां पहुंचाई जाती हैं। जी दोस्तों, दोस्तों कहते हैं ना कि बच्चों की हंसी में बसी है खुशियों की बहार, इनके मासूम आंखों में छिपा है सुंदर सा संसार, नन्हे कदमों से ये सपनों की राह सजाते हैं, बच्चे ही तो घर को घर बनाते हैं, किताबों से ही नहीं अनुभवों से भी सीखते हैं बच्चे, हमारे व्यवहार का हर रंग देखते हैं बच्चे, जैसा संसार हम उन्हें आज दिखाएंगे वैसा ही कल का संसार बनाएंगे। दोस्तों अब आप सभी सोच रहे होंगे कि बच्चों के बात क्यों की गई है, क्योंकि आजकल हमारे आसपास बातें ही बच्चों से जुड़ी सामने आ रही हैं, फिर चाहे वो धर्मशाला की बात हो या फिर कहीं की भी बात हो, देश विदेश की बात हो, कहीं की भी बात हो, बच्चों की जिंदगी आज एक ऐसे नाजुक मोड़ पे आकर खड़ी हो गई है कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत है। वो खुद को इतना भी मजबूत नहीं महसूस कर पाते हैं कि वो एक सही डिसीजन ले पाए, या उन्हें उस तरह से बनाया नहीं गया। क्यों? क्योंकि उनके सामने व्यवहार ही उस तरह का रखा गया। कहते हैं ना दोस्तों, पेरेंट्स का जो भी एक एक बात उनकी जिंदगी पर असर करती है, उनके आसपास का माहौल किस तरह से है, किस तरह से आप उनके सामने रख रहे हैं, वो सारी बातें उन्हें इफेक्ट करती हैं। तो इस बात पे हम गहराई से बात करने वाले हैं दोस्तों, जरूर, क्योंकि बहुत गंभीर और बहुत ही खास बातचीत है। लेकिन आइए उससे पहले आप सभी को थोड़ा सा मनोरंजन की ओर लेकर चलते हैं, और गंभीर बातचीत की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा आपको एनर्जेटिक और मस्ती के मूड में लेकर चलते हैं, क्योंकि आज संडे का दिन है, मस्ती का दिन है।

दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इस प्यारे से मस्ती भरे गीत के साथ आपका मूड भी बिल्कुल फ्रेश हो गया होगा और मस्ती भरा माहौल क्रिएट तो हो ही गया है। से दोस्तों, अब मस्ती से क्योंकि लेकर जा रही हूँ थोड़ा सा आपको गंभीर से बातचीत की ओर, क्योंकि बच्चों की जिंदगी से जुड़ी जब भी बात आती है ना दोस्तों, तो वो अपने आप गंभीर हो जाते हैं और जब हम उसे लाइटली लेते हैं तो कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना तो फिर पेरेंट्स को करना ही पड़ जाता है। तो आइए, क्या खास बातचीत आज के कार्यक्रम में आप सभी एंजॉय करने वाले हैं, जानने वाले हैं, लेकर चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से सफर की ओर।

दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय के जो शायद हर घर की कहानी है, हर स्कूल की चिंता है और हर युवा के मन में कहीं ना कहीं एक अनकहा सवाल बनकर मौजूद है। कौन सा विषय है ऐसा? दोस्तों, शिक्षक, माता पिता और विद्यार्थी जीवन के त्रिकोण में फंसी युवा पीढ़ी। दोस्तों, बचपन से ही हमारे सामने एक रास्ता बना दिया जाता है। स्कूल जाइए, अच्छे नंबर लाइए, एक अच्छी स्ट्रीम चुनिए, किसी बड़ी परीक्षा में सफल हो जाइए, अच्छी डिग्री हासिल कीजिए, फिर अच्छी नौकरी या सफल व्यवसाय, और उसके बाद परिवार गर्व करेगा, रिश्तेदार उदाहरण देंगे, समाज कहेगा वाह, बच्चे ने नाम जो है वो रोशन कर दिया। लेकिन इस पूरी यात्रा में एक सवाल अक्सर पीछे छूट जाता है। क्या कभी पेरेंट्स ने उस बच्चे से पूछा कि वो वास्तव में चाहता क्या है? क्या उसकी अपनी कोई पसंद है, कोई सपना है, कोई ऐसी प्रतिभा जिसे हमने कभी गंभीरता से देखा ही नहीं? आज का युवा केवल पढ़ाई का बोझ नहीं उठा रहा, वो उम्मीदों का बोझ भी उठा रहा है। माता पिता की उम्मीदें, शिक्षकों की अपेक्षाएं, समाज की राय, दोस्तों से तुलना और सबसे बड़ी बात, अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता। तो आखिर विद्यार्थी के जीवन की दिशा तय करने का अधिकार किसके पास होना चाहिए? सोचिए, विचारिए, फिर लेकर चलेंगे आप सभी को इस बहुत ही खास सवाल की ओर। सवाल पे सवाल और जवाब अपने मन से, क्योंकि दोस्तों, जब तक हम खुद से सवाल नहीं करेंगे तब तक हम जिंदगी में आगे शायद नहीं बढ़ पाएंगे। तो तब तक आप ही सोचिए कि आखिर ये सवाल कहाँ तक मायने रखता है, कहाँ तक हमारी जिंदगी में ये प्रेफर करता है। क्या सबके साथ ऐसा होता है? सभी बच्चों की कहानी है, हर घर की कहानी है, हर एक जिंदगी से जुड़ी कहानी है। तो इस कहानी को हम नज़रअंदाज जो है वो कैसे कर सकते हैं? फिलहाल एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत, तो उसके बाद फिर से वापस आते हैं इस बहुत ही खास बातचीत के साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल भी एक भी स्टेप मत छोड़िएगा दोस्तों, बहुत खास आज का ये सफर आप सभी के लिए रहने वाला है, खास करके बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए।

दोस्तों रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी एंजॉय कर रहे हैं। जी दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बहुत ही खास, बहुत ही गंभीर से बातचीत जो है वो कर रहे हैं। शिक्षक, माता पिता और विद्यार्थी जीवन के त्रिकोण में फंसी युवा पीढ़ी। दोस्तों एक सवाल, क्या कभी हमने बच्चे से पूछा कि वास्तव में वो क्या चाहता है? तो इस सवाल के बारे में हम बात कर रहे थे, तो उम्मीद है कि आप सभी ने इस सवाल पे गौर किया होगा। और आखिर विद्यार्थी के जीवन की दिशा तय करने का अधिकार किसके पास होना चाहिए? शिक्षक के पास, माता पिता के पास या स्वयं विद्यार्थी के पास? इन्हीं सवालों के साथ आज की इस बातचीत को खास बनाते हैं। दोस्तों कभी कभी लगता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था एक ऐसी मशीन की तरह काम कर रही है जिस पर एक कन्वेयर बेल्ट चल रही हो, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक। पहले स्कूल, फिर बोर्ड परीक्षा, फिर प्रवेश परीक्षा, फिर कॉलेज, फिर डिग्री, फिर नौकरी और फिर पूरी जिंदगी। ये रास्ता गलत नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हर बच्चे के लिए यही एकमात्र रास्ता है? हर विद्यार्थी डॉक्टर नहीं बन सकता और ना ही हर किसी को डॉक्टर बनना चाहिए। हर बच्चा इंजीनियर बने ये भी जरूरी नहीं। सरकारी नौकरी एक सम्मानजनक विकल्प है, लेकिन क्या जीवन की सफलता का केवल यही प्रमाण है? किसी बच्चे को संगीत पसंद हो सकता है, कोई खेल में बेहतर हो सकता है, तो कोई लिखना चाहता है, कोई डिजाइनिंग में अच्छा है, कोई लोगों से बात करने और नेतृत्व करने में माहिर है, कोई तकनीक की दुनिया में अपना भविष्य देखता है, कोई खेती को आधुनिक रूप देना चाहता है, कोई अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है। लेकिन अक्सर हमारी समस्या ये होती है कि हम बच्चों को विकल्प नहीं दिखाते, केवल मंजिलें बताते हैं और वहीं से मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, यही कुछ खास बातें हैं जो कि बच्चों की जिंदगी को एक अलग दिशा दे देती हैं और वो अपनी सपनों, अपनी मंजिलों को पाने के लिए भटकते रहते हैं। तो फिलहाल आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये खूबसूरत संगीत, उसके बाद फिर से वापिस आते हैं कार्यक्रम में आप सभी के साथ इस बहुत ही खास बातचीत के साथ।

बिल्कुल दोस्तों, बहुत सी आशाओं के साथ हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और मंजिल पाने की राह को अपनाते हैं, लेकिन वो रास्ता बहुत ही मुश्किल रहता है, बहुत ही चुनौतियों से भरा हुआ रहता है। लेकिन असली जंग तो वही होती है ना दोस्तों, जिसमें बहुत सारी मुश्किलें हों और उसको फेस करके हम आगे की ओर बढ़ें। तो खैर, आज की बातचीत बहुत ही खास है और बहुत ही आप सभी से इंजॉय भी करने वाले हैं। फिलहाल आप सभी को लेकर चलेंगे एक बहुत ही खास जानकारी की ओर। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग द्वारा बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 में उपस्थित हुए लेकिन उत्तीर्ण ना हो सके अभ्यर्थियों और प्रवेश परीक्षा में शामिल ना हुए पात्र अभ्यर्थियों के लिए बीएड कार्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑन स्पॉट ओपन ऑफलाइन काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय से संबद्ध विभिन्न शिक्षा महाविद्यालयों में बीएड कार्यक्रम की लगभग 2687 रिक्त सीटों को भरने के लिए ये काउंसलिंग आयोजित की जा रही है। इनमें जीसीटीई धर्मशाला की 8 सीटें भी शामिल हैं। वहीं विश्वविद्यालय की नोटिस के अनुसार बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 में उपस्थित हुए अभ्यर्थियों के लिए 26 अगस्त को प्रातः 10 बजे से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में ऑन स्पॉट ओपन ऑफलाइन काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म भरकर उसके प्रति तथा अन्य मूल दस्तावेजों की एक एक फोटोकॉपी साथ लानी होगी। जी दोस्तों, तो बहुत ही खास ये जानकारी, और ये जानकारी आप सभी तक पहुंचाई गई है रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं एक बेहद प्यारे से खूबसूरत से गीत की ओर।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और बहुत ही खास बातचीत आज के कार्यक्रम में हम आप सभी के साथ कर रहे हैं। जी दोस्तों, बच्चों से जुड़ी बात चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उस पर बहुत ही ध्यान से गौर करने की जरूरत रहती है। अभी रिसेंटली एक न्यूज सामने आ रही है कि बच्चे ने आईफोन की जिद में आकर अपनी जिंदगी को गंवाना चाहा और जान गंवाते गंवाते पूरे परिवार ने अपनी जान गंवा दी। महाराष्ट्र की में भी ये न्यूज सामने आ रही है दोस्तों। तो बच्चों में कहीं ना कहीं जो पेशेंस लेवल है, जो धैर्य है, वो नहीं हैबिट पनपती है, क्योंकि पेरेंट्स कई बार कहते हैं ना दोस्तों, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को हम जब नज़रअंदाज करते हैं तो इस हद तक जो है हम आ पहुंचते हैं। तो मोबाइल फोन्स के हम आज के समय में इतनी ये एडिक्शन देख रहे हैं बच्चों में। धर्मशाला की भी बात आप सभी ने जानी ही है, न्यूज़ आप सभी ने सुनी होगी कि गेम खेलने के लिए जब बच्चे की माँ ने उसे फ़ोन नहीं दिया तो उसने अपनी ज़िंदगी गंवा दी। तो इतना भी बच्चों को मोबाइल एडिक्शन की ओर बिल्कुल मत लेकर जाइए दोस्तों, जिससे कि पूरे परिवार को उसका नुकसान जो है वो फेस करना पड़े। और आज हम बहुत ही खास एक तरफ और भी बातचीत कर रहे हैं दोस्तों कि एक युवा पीढ़ी जो है वो त्रिकोण में फंसी हुई है, माता पिता, शिक्षक और अपने एक विद्यार्थी जीवन की जिंदगी में। तो कभी भी बच्चों से ये नहीं पूछा जाता पहले के समय में, खैर अब तो बहुत सी फैमिलीज जो हैं वो अवेयर हो चुके हैं, जानते हैं, लेकिन एक दूसरे को देखकर फिर भी हम ये गलतियां कर बैठते हैं। उनसे ये नहीं पूछा जाता कि उन्हें किस चीज़ से खुशी मिलती है, उनके सपने क्या हैं, वो क्या करना चाहते हैं। क्या कभी आपने अपने बच्चे से बिना किसी सलाह, बिना किसी तुलना और बिना किसी डांट के पूछा है कि आप जिंदगी में वास्तव में करना क्या चाहते हो? और अगर पूछा है तो क्या आपने उसका जवाब पूरा सुना भी है? दोस्तों, सवाल पे सवाल होते हैं लेकिन उसका आंसर हमारे अंदर होता है।

है, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सरकारी नौकरी करो, तो कई बार उसके पीछे केवल सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं बल्कि भविष्य की सुरक्षा की चिंता भी होती है। अब इसके आगे कौन सी बात सामने आती है, कौन सी ऐसी जो सिचुएशन है जो माता पिता और बच्चों को फेस करनी पड़ती है, जरूर उसकी ओर जाएंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एंजॉय करेंगे कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

तो इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं इस बहुत ही प्यारे से सफर के साथ। तो आइए दोस्तों, इस प्यारी सी बातचीत और मनोरंजन को इसी तरह से आगे की ओर लेकर चलते हैं और थोड़ा सा रुख बदलते हैं जानकारियों की ओर। तो बातचीत का सिलसिला तो दोस्तों इसी तरह से चलता रहेगा, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ बातें आप सभी के साथ साझा करने के लिए बाकी हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने पात्र परिवारों के चयन के लिए अंतिम चरण शुरू करने का फैसला लिया है। सरकार ने उन परिवारों को एक और मौका दिया है जो पिछले 8 चरणों में पात्र होने के बावजूद समय पर आय प्रमाण पत्र या अन्य जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा पाए थे और इस कारण चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सके। ऐसे परिवार अब अंतिम चरण में आवेदन कर सकेंगे, यानी कि बीपीएल में शामिल होने के लिए। जी दोस्तों, सरकार ने इसके लिए आवेदन सत्यापन और अंतिम सूची जारी करने की समय सीमा भी तय कर दी है। पात्र परिवार 20 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। इसी अवधि तक आवेदनों के सत्यापन और अनुशंसा की कार्रवाई भी पूरी की जाएगी। इसके बाद विभाग की ओर से 25 सितंबर 2026 तक अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। जी दोस्तों, तो ये बहुत ही खास जानकारी आप सभी तक पहुंचाई गई है रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आप सभी को कार्यक्रम के एक और प्यारे से खूबसूरत से गीत की ओर।

91 दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। इस बेहद प्यारे से खूबसूरत से सफर को आप सभी अपने दिन के शुरुआत के साथ एंजॉय कर रहे हैं, तो आइए फिर से रुक करते हैं अपनी बातचीत की ओर। जी दोस्तों, तो हम एक विद्यार्थी की बात कर रहे हैं, एक बच्चे की बात कर रहे हैं जो बच्चे से बड़ा होते होते युवा पीढ़ी तक जाता है। बहुत सी चुनौतियां और बहुत मुश्किलों से भरा यह सफर एक बच्चे के लिए रहता है। एक तरफ माता पिता की उम्मीदें, दूसरी तरफ शिक्षकों की अपेक्षाएं, एक तरफ अपने सपने, हर एक चीज को मेंटेन करना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी कई बार दूसरों की खुशी के लिए बच्चे अपने सपनों को कुर्बान कर देते हैं। यहाँ माता पिता को बच्चों को समझने की जरूरत होती है, उनकी भावनाओं को समझने की जरूरत होती है, क्योंकि जिंदगी बच्चे ने अपने हिसाब से आगे की ओर लेकर जानी है। बस गाइड कर सकते हैं वो बच्चे को, सही राह दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब कोई भी बच्चा अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है या खेती को आधुनिक रूप देना चाहता है, मतलब अपने तरीके से किसी भी फील्ड में वो अगर जाना चाहता है, तो वहां अक्सर हमारी समस्या क्या होती है कि वहां हम बच्चों के आगे विकल्प नहीं दिखाते, सिर्फ मंजिलें बताते हैं। हम कहते हैं बस अच्छे नंबर लाओ, लेकिन शायद हमें ये भी पूछना चाहिए कि तुम्हें किस चीज को करते हुए खुशी मिलती है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी अपने बच्चे से बिना किसी सलाह, बिना किसी तुलना और बिना किसी डांट से पूछा है? बिल्कुल नहीं। अक्सर हम ये चीजें इग्नोर कर देते हैं और अपनी जो इच्छाएं होती हैं वो बच्चों पे थोपना शुरू कर देते हैं। तो जब ये सारी बातें सामने आती हैं दोस्तों, तो कई बार उसके पीछे जो है भविष्य की सुरक्षा की चिंता उन्हें सताती रहती है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब चिंता नियंत्रण बन जाती है, सलाह आदेश बन जाता है और उम्मीद दबाव बन जाती है। हर बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से करना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। देखो शर्मा जी का बेटा, तुम्हारी बहन के इतने नंबर आए, तुम्हारे दोस्त ने ये परीक्षा पास कर ली। दोस्तों, तुलना कभी कभी प्रेरणा नहीं देती, वो आत्मविश्वास भी छीन सकती है। हर बच्चा अलग है, उसकी गति अलग है, उसकी क्षमता अलग है, उसका स्वभाव अलग है, और सबसे जरूरी बात, उसका सपना भी अलग हो सकता है। माता पिता को शायद अपने बच्चों के लिए फैसले लेने से पहले ये समझना होगा कि वे बच्चे के लिए रास्ता तैयार करें, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए उसे मजबूर ना करें। और अक्सर हम देखते हैं दोस्तों अपने आसपास बहुत सी ऐसी चीजें कि माता पिता बच्चे को मजबूर कर देते हैं, खास करके चाहे वो एक हमारी स्टडी का सफर है, पढ़ने का सफर है, पढ़ाई का सफर है, या फिर बात करें मैरिड लाइफ की, तो वहां भी कई बार पेरेंट्स जो हैं अपनी इच्छाएं, अपना दबाव उन पे थोपने लग जाते हैं। वहां भी कई बार बच्चों से पूछा तक नहीं जाता कि क्या वो इस फैसले से खुश हैं, क्योंकि जिंदगी तो उन्होंने बितानी है, उन्होंने किसी अननोन पर्सन के साथ लाइफ में आगे बढ़ना है, तो राय भी तो उनकी होनी चाहिए ना। हाँ, आप उस पे राह जरूर दिखा सकते हैं कि सही है या गलत है या किस तरह से आप बातचीत कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन उनके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि खुशी बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। गलत रास्ते की ओर जाने से जरूर रोकिए, लेकिन अपनी इच्छाएं, अपनी दबाव जो है उन पर मत थोपिए। फिलहाल आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को एक और प्यारे से गीत की ओर।

से ये गीत और बहुत ही खास बातें आप सब एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आज का दिन ही बेहद खास है जब अपने साथ होते हैं, पेरेंट्स भी साथ होते हैं और बच्चे भी साथ होते हैं, तो सचमुच दोस्तों तभी तो बातें समझ में आती हैं जब हम रिलेट कर पाते हैं चीज़ों को कि वाकई हम कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे। तो बच्चों के सपने हैं, उन्हें भी थोड़ा सा आसमान में उड़ने दीजिए, थोड़ा सा उन्हें अपनी उंगली का सहारा छोड़ दीजिए, क्योंकि अक्सर कई बार पेरेंट्स को ऐसा लगता है, क्योंकि वो गलत नहीं चाहते हैं, वो अपने बच्चों का भविष्य संवारना ही चाहते हैं, लेकिन हम कहते हैं ना दोस्तों, जब ज़्यादा ही लाड प्यार दिखा देते हैं तो कई बार वो लाड प्यार बच्चों के लिए एक मजबूरी बन जाती है। वो खुद अकेले कहीं चल ही नहीं पाते, वो बाहर चीज़ों को फेस ही नहीं कर पाते, उन्हें पता ही नहीं होता अक्सर कि अकेले ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ा जाता है, कैसे मुश्किलों को फेस किया जाता है, क्योंकि वो हर मुश्किल को आपके सहारे फेस कर रहे हैं, तो वो कैसे अपने कदमों पर खड़े हो पाएंगे। तो लाड प्यार ज़रूरी है दोस्तों बच्चों के लिए, लेकिन दूसरों से तुलना, दूसरों के सामने उनकी थोड़ा सा उनकी जो विश्वास है उसे तोड़ना, वो शायद कुछ हद तक गलत लग सकता है। आप जानते हैं बहुत अच्छे से, बखूबी समझते हैं इस चीज़ को दोस्तों। मैं जस्ट एक आप सभी के साथ विचार साझा करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि अगर कहीं आपको लगे कि ये चीज़ें गलत हैं या हमारे द्वारा हो रही हैं जाने अनजाने, तो उस पर विचार किया जाए ताकि बच्चों की ज़िंदगी को बचाया जा सके। अब बात करते हैं एक शिक्षक की, जो प्रतिभा देखते हैं लेकिन पूरा जीवन नहीं। एक शिक्षक शायद उस विद्यार्थी को उस रूप में देखता है जिस रूप में माता पिता नहीं देख पाते। शिक्षक बच्चे को कक्षा में देखता है, उसके सवाल सुनते हैं, उसकी रुचि पहचानते हैं।

उसकी झिझक भी समझते हैं। कभी कोई बच्चा पढ़ाई में औसत होता है लेकिन वाद विवाद में शानदार होता है। कोई गणित में कमजोर होता है लेकिन कला में अद्भुत प्रतिभा रखता हो। कोई परीक्षा के समय घबरा जाता है लेकिन सामान्य परिस्थितियों में बहुत बुद्धिमान और आत्मविश्वासी होता है। एक अच्छा शिक्षक इन संकेतों को पहचान सकता है। लेकिन क्या शिक्षक अकेले विद्यार्थी का पूरा भविष्य तय कर सकता है? शायद नहीं। दोस्तों, शिक्षक बच्चे को सीमित समय और सीमित परिस्थितियों में देखता है। उसे हर विद्यार्थी के परिवार की आर्थिक स्थिति शायद पता नहीं होती, घर का माहौल पता नहीं होता, परिवार की जिम्मेदारियां पता नहीं होती। कई बार तो ये भी नहीं पता होता कि स्कूल की घंटी बजने के बाद उस बच्चे का जीवन कैसा है। इसलिए शिक्षक की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम और एकमात्र निर्णायक की नहीं। शिक्षक को मार्गदर्शक होना चाहिए, माता पिता को सहयोगी होना चाहिए और विद्यार्थी को अपने जीवन का सहभागी और निर्णयकर्ता होना चाहिए। दोस्तों, बात करेंगे विद्यार्थी आखिर बोल क्यों नहीं पाते, क्यों अपनी इच्छाओं को दबाते हैं, क्यों अपने सपनों को दबाते हैं। फिलहाल आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

जी दोस्तों, तो बहुत ही प्यारे से इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आजादियां किसको पसंद नहीं है, हर कोई आजाद रहना चाहता है अपने सपनों के साथ, अपनी ख्वाहिशों के साथ। लेकिन कई बार हम अपनी इच्छाओं के चलते, अपने इस तुलनात्मक बिहेवियर के चलते बच्चों की जिंदगी को बंद कर देते हैं, उस आजादी को कहीं ना कहीं दबा देते हैं। आजाद होते हुए भी वो खुद को आजाद महसूस नहीं कर पाते। जी दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं कि एक बच्चा विद्यार्थी आखिर बोल क्यों नहीं पाता। दोस्तों, ये शायद आज की सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम अक्सर कहते हैं आजकल के बच्चे अपनी बात नहीं बताते, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि वो अपनी बात बताते क्यों नहीं है? सवाल तो ये है। कई बच्चे अपने माता पिता से प्यार करते हैं, लेकिन अपनी असली इच्छा बताने से डरते हैं। उन्हें लगता है अगर मैंने कहा कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना तो मम्मी पापा निराश हो जाएंगे, अगर मैंने कहा कि मुझे संगीत पसंद है तो शायद कोई मुझे गंभीरता से नहीं लेगा, अगर मैंने कहा कि मैं अभी तय नहीं कर पा रही या कर पा रहा कि क्या करना है तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। और यहीं से शुरू होती है मन की चुप्पी। कई बार बच्चा घर में मुस्कुराता है लेकिन अंदर से परेशान होता है। कई बार वो पढ़ रहा होता है लेकिन समझ नहीं पा रहा होता कि वो किस दिशा में जा रहा है। कई बार उसके पास सवाल होते हैं लेकिन पूछने की जगह नहीं होती। याद रखिए, हर शांत बच्चा संतुष्ट हो ये जरूरी नहीं, हर अच्छे नंबर लाने वाला बच्चा खुश हो ये भी जरूरी नहीं, और हर कम नंबर लाने वाला बच्चा असफल हो ये तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं। हमें बच्चों से केवल ये नहीं पूछना चाहिए कि कितने नंबर आए, कभी ये भी पूछिए कि तुम ठीक हो, तुम्हें किसी बात की चिंता है, तुम्हें किस चीज में मदद चाहिए। शायद यही सवाल किसी बच्चे के मन का दरवाजा खोल दे। दोस्तों, ये छोटी सी बातें लग रही हैं सुनने के लिए, लेकिन अगर आपने इसमें झांक लिया, इसे समझ लिया, तो सचमुच ये बहुत बड़ी बात है, बच्चे की जिंदगी को बदल कर रख सकती हैं। फिलहाल आइए इसी के साथ एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों हरिहरन कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में आप सभी ने एंजॉय किया कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत। और सचमुच कई बार बच्चों के सामने भी ऐसी ही सिचुएशन होती है, कहीं इमोशनली जो है वो खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं, एक तरफ माँ बाप की इच्छाएं हैं, एक तरफ अपने सपने हैं, तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो हर चीज़ से पहले अपनी फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं जिंदगी, लेकिन सबकी एक सबसे बड़ी कोशिश यही रहती है दोस्तों कि वो हर एक सिचुएशन को बैलेंस कर सकें, ना पेरेंट्स को हर्ट करें ना खुद को हर्ट करें। लेकिन ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी बच्चों को उतना ही समझें जितना कि बच्चे समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों करियर की बात करें तो दुनिया तो बहुत बड़ी है, जानकारी छोटी है। आज के समय में करियर की दुनिया तेजी से बदल रही है। पहले कुछ गिने चुने पेशों को ही सफलता का प्रतीक माना जाता था, लेकिन आज अवसरों की दुनिया बहुत व्यापक हो चुकी है। डेटा और तकनीक से जुड़े क्षेत्र, डिजिटल मीडिया, एनिमेशन, गेम डिज़ाइन, फूड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, पर्यावरण विज्ञान, फोरेंसिक साइंस, साइबर सुरक्षा, फैशन और डिज़ाइन, सामाजिक कार्य, बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं। और न जाने कितने नए क्षेत्र आज युवाओं के सामने हैं। समस्या ये नहीं कि युवा सपने नहीं देखते, कई बार समस्या ये होती है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके सामने कितने दरवाजे खुले हैं। माता पिता अक्सर उन्हें करियर विकल्पों के बारे में जानते हैं जिन्हें उन्होंने अपने जीवन में देखा या सुना है। इसलिए जरूरी है कि स्कूलों और परिवारों में करियर काउंसलिंग को गंभीरता से लिया जाए। बच्चे को केवल ये ना बताया जाए कि ये मत करो, बल्कि ये भी बताया जाए कि अगर तुम ये करना चाहते हो तो इसका रास्ता क्या है। दोस्तों बदलती दुनिया और बदलते करियर, आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। तकनीक, ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करने के तरीकों को बदल रहे हैं, और ऐसे में जो काम आज बहुत लोकप्रिय है, जरूरी नहीं कि 10 साल बाद भी वो उसी रूप में मौजूद रहे। इसका मतलब ये नहीं कि हमें भविष्य से डरना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि हमें बच्चों को केवल एक नौकरी के लिए तैयार नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें जीवन के लिए तैयार करना चाहिए, उन्हें सीखना सिखाना चाहिए, बदलाव को स्वीकार करना सिखाना चाहिए, समस्याओं का समाधान खोजना सिखाना चाहिए, सवाल पूछना सिखाना चाहिए, और सबसे जरूरी असफल होने के बाद दोबारा से खड़े होना सिखाना चाहिए, क्योंकि भविष्य में वही युवा सबसे अधिक तैयार होगा जो केवल एक विषय का विशेषज्ञ नहीं बल्कि लगातार सीखने वाला इंसान होगा। तो दोस्तों कहने की बात एक ही है।

कि पेरेंट्स को बच्चों के आगे सिर्फ एक ऑप्शन नहीं रखनी है। कई बार पेरेंट्स का क्या होता है, जो फैमिली बिजनेस होता है वो उसी में बच्चों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी बच्चों के लिए एक दबाव है, एक थोपी गई इच्छा है, वो भी पेरेंट्स की, बच्चे की नहीं। अगर बच्चा इच्छा से करना चाहता है वो अलग बात है, वो आपको उनसे बात करके पता चलेगा। तो फिलहाल आइए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से 91.2 ओमेगा हर्ट्ज़ पर।

जी दोस्तों, जब तक दिल जिद्दी नहीं होगा तो अपने सपनों को पाना बहुत ही मुश्किल होगा, और ये जिंदगी का सफर खास करके बच्चों के लिए, युवाओं के लिए बहुत मुश्किलों से भरा होगा, इसलिए जिद भी बहुत जरूरी है। तो फिलहाल आइए बढ़ते हैं अपनी बातचीत में आगे की और कुछ और खास बातों की और।

बढ़ता मानसिक दबाव एक गंभीर सामाजिक विषय है। परीक्षा का दबाव, करियर का दबाव, परिवार की उम्मीदें, सामाजिक तुलना, असफल होने का डर और भविष्य की अनिश्चितता, ये सब मिलकर एक युवा मन पर बहुत भारी पड़ सकते हैं। हमें ये समझना होगा कि सफलता की तैयारी के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक सहारे की भी जरूरत होती है। अगर कोई विद्यार्थी परेशान है, लगातार उदास रहता है, अचानक खुद को दूसरों से अलग करने लगता है, बहुत अधिक डर या चिंता महसूस करता है, या बार बार ये कहता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, तो उसकी बात को हल्के में ना लें। उसे डांटने या कमजोर कहने के बजाय धैर्यपूर्वक सुने। जरूरत पड़े तो परिवार, शिक्षक और प्रशिक्षित विशेषज्ञ की सहायता अवश्य लें। दोस्तों, किसी भी परीक्षा या करियर से अधिक महत्वपूर्ण एक विद्यार्थी का जीवन और उसका मानसिक संतुलन है। अब आते हैं एक और खास बात पे कि आखिर फैसला किसका। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि विद्यार्थी के भविष्य का फैसला किसे करना चाहिए, माता पिता को, शिक्षक को या विद्यार्थी को। शायद इसका आंसर होगा कि तीनों को मिलकर, लेकिन उनकी भूमिकाएं अलग अलग होनी चाहिए। माता पिता बच्चे को सुने, उसकी रुचि को समझें, अपने अनुभव साझा करें, उसे आर्थिक और व्यवहारिक परिस्थितियों की जानकारी दें, लेकिन उसके सपनों को केवल इसलिए खारिज ना करें क्योंकि वो आपके लिए नए हैं। शिक्षक बच्चे की क्षमता पहचाने, उसे अलग अलग अवसरों से परिचित कराएं, उसकी कमजोरी पर केवल टिप्पणी ना करें, उसकी ताकत भी बताएं, उसे अंक से अधिक एक इंसान की तरह देखें। अब बारी है विद्यार्थी की, यानी कि खुद की। अपनी रुचि को समझें, जानकारी जुटाएं, भावनाओं के साथ साथ वास्तविक परिस्थितियों को भी समझें, माता पिता और शिक्षकों की बात सुने, लेकिन अपनी जिंदगी के फैसले में अपनी आवाज जरूर रखें, क्योंकि आखिरकार जिंदगी उसे ही जीनी है। दोस्तों, तो है ना ये कितनी खास बातें। तो बहुत ही खास बातचीत आज के कार्यक्रम में आप सभी ने एंजॉय की है। तो फिलहाल आइए इसी खास बातचीत के साथ एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा, खूबसूरत सा, खास एक म्यूजिकल ब्रेक।

आज के कार्यक्रम में हमने की है एक बच्चे के जिंदगी में किस तरह से किसका अहमियत किस तरह से रहनी चाहिए। तो बच्चे को सलाह जरूर दे, रास्ता जरूर दिखाए, गलतियों से बचाए, सहारा दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा अपने जीवन का रास्ता स्वयं समझकर चुनता है तो ये केवल सफलता की जिम्मेदारी नहीं लेता, वो अपनी गलतियों से सीखने की जिम्मेदारी भी लेना सीखता है। तो बिल्कुल दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ अब समय हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का। तो फिर होगी आप सभी के साथ मुलाकात एक नई बातचीत नई जानकारियों के साथ। दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त रुचिका को कार्यक्रम संपन्न करने की, और आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपनेपन की।

0: गोरिया
1: गोरिया आकर गोरिया
0: गोरिया
1: गोरिया आकर आ
0: गोरिया
2: हटो हटो हटो हटो एले गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: बैठिए मैडम बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था, एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो।
5: अरे बेटो तू यहाँ क्या कर रहा है, और ये दोनों लड़कियां कौन है?
4: देखिए भाई साहब आप कौन है?
5: जी मैं इसका बाप हूँ।
4: आप इसके बाप हूँ? महमूद का बेटा नहीं तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है?
6: जी नहीं।
4: तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें?
1: जवान तो कटेगा भैया तेरा।
4: और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियम का पालन कीजिए, क्योंकि
6: रोड किसी के बाप का नहीं।
4: शाबाश, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
7: नमस्कार दोस्तों, प्रेम विश्वास और भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पावन पर्व रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि प्यार विश्वास सुरक्षा और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है।

0: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी?
1: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
0: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए। कौन सा स्टाइल चाहिए आपको? ये देखिए, पिछले महीने मिश्रा जी की बेटी की शादी के लिए सिया था।
1: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए। थोड़ा सिंपल दिखाइए।
0: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
1: चुन्नी के लिए।
0: ये अपनी चुन्नी?
1: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
0: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
2: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी। पंडित जी ने इसी इतवार का मुहूर्त निकाला है, तो हो तो जाएगा ना तब तक।
0: अच्छा, 12 साल की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
2: नहीं, क्यों?
0: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
2: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
0: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
3: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
0: ना हम सीएंगे, ना किसी को सीने देंगे।
4: जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा मित्र, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी खामोशी में ही ईश्वर का वास।
5: मम्मी जी क्या कह रहे हैं, बचपन में आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था।
6: हाँ, जब मैं 12 साल का था ना, तो मैं पापा को बिना बताए उनकी बाइक लेके घर से बाहर निकल गया, और मैं बाइक इतनी तेज चला रहा था कि सामने से एकदम से ट्रक आ गया। तो ट्रक को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से लेफ्ट ले लिया। जैसे ही लेफ्ट लिया, सामने से गाड़ी आ रही थी, और गाड़ी में जाके बाइक लगी और बाइक पूरी खत्म हो गई।
5: बेबी, बाइक को छोड़ो, आप बताओ आप बचे थे कि नहीं?
6: तब तो बच गया था, लगता है अब नहीं बचूंगा।

जी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर। यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

0: गोरिया
1: गोरिया
2: गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: बैठिए मैडम बैठिए।
5: देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो।
4: पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था, एक चतुर नार बड़ी होशियार, क्या गाना था वो?
6: अरे बेटो तू यहाँ क्या कर रहा है, और ये दोनों लड़कियां कौन है?
4: देखिए भाई साहब आप कौन है?
6: जी मैं इसका बाप हूँ।
4: आप इसके बाप हूँ? महमूद का बेटा नहीं तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है?
7: जी नहीं।
4: तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें?
1: जवान तो कटेगा भैया तेरा।
4: और अभी उतर के लेके जाओ, आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए।

नमस्कार दोस्तों, प्रेम विश्वास और भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पावन पर्व रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास, सुरक्षा और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है।

रिश्तों में मिठास रहे अपनों का साथ रहे, रिश्तों में मिठास रहे अपनों का साथ रहे, हर कलाई पर सजे प्यार का धागा और हर चेहरे पर मुस्कान रहे। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ रेडियो वंचन धर्मशाला की ओर से आ रहे

0: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी?
1: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
0: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए। कौन सा स्टाइल चाहिए आपको? ये देखिए, पिछले महीने मिश्रा जी की बेटी की शादी के लिए सिया था।
1: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए। थोड़ा सिंपल दिखाइए।
0: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
1: चुन्नी के लिए।
0: ये अपनी चुन्नी?
1: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
0: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
2: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी। पंडित जी ने इसी इतवार का मुहूर्त निकाला है, तो हो तो जाएगा ना तब तक।
0: अच्छा, 12 साल की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
2: नहीं, क्यों?
0: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
2: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
0: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
3: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
0: ना हम सिएंगे, ना किसी को सीने देंगे।
4: जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा मित्र, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी खामोशी में ही ईश्वर का वास।
5: मम्मी जी क्या कह रहे हैं, बचपन में आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था।
6: हाँ, जब मैं 12 साल का था ना, तो मैं पापा को बिना बताए उनकी बाइक लेके घर से बाहर निकल गया, और मैं बाइक इतनी तेज चला रहा था कि सामने से एकदम से ट्रक आ गया। तो ट्रक को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से लेफ्ट ले लिया। तो जैसे ही लेफ्ट लिया, सामने से गाड़ी आ रही थी, और गाड़ी में जाके बाइक लगी और बाइक पूरी खत्म हो गई।
5: बेबी, बाइक को छोड़ो, आप बताओ आप बचे थे कि नहीं?
6: तब तो बच गया था, लगता है अब नहीं बचूंगा।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि आपके साथ। इट फील्स लाइक इट्स योर ओन शो, डजंट इट? ऐसा ही चाहती हूं मैं, क्योंकि आप ही के पसंद के गाने यहां पर मैं बजाती हूं। और आज भी कुछ ऐसी ही कोशिश है मेरी, जो कि है हमारे आज के स्पेशल आर्टिस्ट मशहूर एक्टर फारूक शेख जी की ही फिल्मों के। फारूक जी बॉलीवुड में एक ऐसे एक्टर थे जो हाईली और माइन्यूटली ट्रेंड थे, यानी कि छोटी से छोटी चीज इन्हें एक्टिंग के बारे में समझ में आती थी। हमने इनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को एंजॉय किया है इन मूवीज लाइक गर्म हवा, उमराव जान, बाजार, साथ साथ एंड सो ऑन। अपने करियर में लेकिन इन्होंने सिर्फ 30 से 35 फिल्में ही की हैं। विश्वास नहीं होता ना, इतनी दमदार इनकी परफॉर्मेंस जो रही थी। वैसे आपको पता है कि हर फिल्म साइन करने से पहले ये अपने आप से 3 शर्तें रखा करते थे। क्या थी वो शर्तें? इसका जवाब आपको कुछ देर के बाद में मैं बताऊंगी, लेकिन उसके पहले आप सुनिए बहुत ही खूबसूरत गाना फ्रॉम द फिल्म साथ साथ। जगजीत जी की आवाज में ये गाना है। गाने का नाम तुमको देखा तो ये ख्याल आया।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ, और आज हम बात कर रहे हैं द वेरी टैलेंटेड एक्टर फारुख शेख जी के बारे में। इन्होंने ऑलमोस्ट सारे जॉनर्स में कोई ना कोई रोल तो किया ही है, कभी ना कभी किसी ना किसी फिल्म में, ड्रामा हो, कॉमेडी हो, रोमांस हो, कुछ भी हो। लेकिन कोई भी फिल्म साइन करते वक्त फारुख जी अपने आप से 3 सवाल पूछा करते थे, अपने सामने 3 शर्तें रखा करते थे। पहली शर्त ये कि वो फिल्म उनके लिए काफी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। दूसरी शर्त, उनके रोल को ही सारा अटेंशन मिलना चाहिए। और तीसरी और आखिरी शर्त कि उनके डायरेक्टर के प्रति उनका विश्वास खूब होना चाहिए। अपने करियर को सिंप्लीफाई करने के लिए वो खुद का सेल्फिश होना बहुत जरूरी समझते थे, और इन्हीं शर्तों की वजह से उन्होंने हिट पे हिट फिल्में इंडस्ट्री को दी हैं। फारूक जी को कभी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी वो क्लास में टॉप किया करते थे, और अपने कॉलेज के दिनों में भी वो लेक्चर्स में कम और कैंटीन में ज्यादा हुआ करते थे। आपको पता है फारूक जी एक वेल क्वालिफाइड लॉयर भी थे, अपने इस फील्ड में वो खुश भी थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया जिसके बाद उनका इस फील्ड में से मन उठ गया। ऐसा क्या हुआ था कि अच्छी खासी नौकरी छोड़ करके उन्होंने फिल्मों की तरफ अपना रुख कर लिया, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले सुनिए आप फिल्म नूरी से अगला गाना लता जी की आवाज में।

वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप वीकेंड क्लासिक रेडियो शो मेरे यानी रुचि के साथ। बजा रही हूँ कुछ बढ़िया प्यारे गाने फारूक शेख जी की ही फिल्मों से आज आपके लिए, और उन्हीं की जिंदगी के बारे में आपको कुछ ऐसी बातें बता रही हूँ जो कि शायद आप ना जानते हो। जैसे द एवरग्रीन फारूक शेख अपने करियर के शुरुआती दिनों में लॉयर हुआ करते थे। कोर्ट में डिबेट करना, किसी केस को सॉल्व करना उन्हें बहुत पसंद था। और तो और, फारूक के पिताजी भी एक लॉयर ही थे, तो उन्हें भी अपने डैड के फुटस्टेप्स को फॉलो करना था। मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज में उन्होंने एक लॉ की डिग्री हासिल की थी और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद कई सारे केसेस भी हैंडल किए थे। लेकिन बहुत जल्द उन्होंने ये रियलाइज किया कि एक लॉयर होने का मतलब कोर्ट में कम बैठना है और पुलिस स्टेशन में ज्यादा समय बिताना है, और पुलिस स्टेशन का माहौल उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता था।

राइम की बातें सुनना, यूं ही नेगेटिविटी के आसपास रहना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए उन्होंने ज्यादातर ये क्राइम से जुड़ी हुई फिल्में भी नहीं की, हमेशा स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप की अच्छी सी नॉर्मल हंसती मुस्कुराती हुई फिल्में करना पसंद किया करते थे फारूक जी। तो इस चीज से डिसअपॉइंट होकर के उन्होंने एक क्वालिफाइड लॉयर होने के बावजूद उसे छोड़ दिया और एक्टिंग को अपनाया। लेकिन अपनी पहली फिल्म फारूक जी ने फ्री में की थी। किसके लिए की थी ये फिल्म और क्यों फ्री में की थी बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले उमराव जान फिल्म से अगला गाना तलत अजीज जी की आवाज में आपके लिए।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। फारूक शेख जी की जिंदगी के बारे में आज मैं आपको कुछ बता रही हूं। अक्सर ऐसा होता है कि एक्सपीरियंस लेने के लिए हम अपने करियर के शुरुआती दिनों में कम पैसे में या मुफ्त में भी काम कर लिया करते हैं। फारूक शेख जी ने तो शबाना आजमी जैसी एक्ट्रेस के साथ एक्टिंग में ट्रेनिंग ली थी, उनके साथ मिलकर ये प्लेज किया करते थे। वैसे अच्छी एक्टिंग स्किल्स होने के बावजूद भी उन्होंने फ्री में अपनी पहली फिल्म की थी। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि डायरेक्टर MS सत्यू फिल्म गरम हवा के लिए एक एक्टर ढूंढ रहे थे, लेकिन उनके पास कुछ बजट नहीं था, तो वो चाहते थे कि कोई ऐसा एक्टर हो जो कि फ्री में काम करे। एक तरफ जहां MS सत्यू एक एक्टर ढूंढ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ फारूक जी एक मूवी ढूंढ रहे थे। दोनों का कुछ मिलाप हो गया इस तरह कि उन दोनों ने साथ में फिल्म कर ली और फारूक शेख जी को भी बिना कोई सवाल जवाब के ये रोल मिल गया। और बस उस रोल के बाद एक के बाद एक उन्हें फिल्में मिलना शुरू हो गई। वैसे आप जानते हैं फारूक जी एक टाइम पर बस एक ही फिल्म किया करते थे और उन्हें ये नहीं चाहिए था कि उनके मरने के बाद कोई उन्हें याद करे। ये बड़ी अजीब सोच है, ऐसा क्यों सोचते थे वो बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर। फिलहाल सुना रही हूँ आपको गाना आशिक हो तो ऐसा हो फ्रॉम द फिल्म नूर।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप मेरे यानी रुचि के साथ, और आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही टैलेंटेड एक्टर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्टर्स एंड सीनियर मोस्ट एक्टर्स जो रहे हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, फारूक शेख जी के बारे में। फारूक जी का हमेशा ये सोचना था कि इंसान जब तक जिंदा है उसे सिर्फ अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीने का सोचना चाहिए, ना कि अपने पास्ट की मिस्टेक्स को याद करना चाहिए या फिर ये सोचना चाहिए कि फ्यूचर में क्या होगा या मेरे चले जाने के बाद लोग मुझे किस तरह से याद करेंगे। हर कोई इस दुनिया में आता है और चला भी जाता है। जब तक आप हैं और आपके बारे में लोग अच्छी या बुरी बातें करते हैं तब तक तो कुछ मतलब बनता है। आपके चले जाने के बाद कोई आपके लिए ट्रिब्यूट रखे, आप पर फिल्म बनाए, आप तो इन सब चीजों को देखने के लिए जिंदा रहेंगे नहीं, तो इसका क्या मतलब है। वो जिंदगी को आज ही सेलिब्रेट करने में विश्वास करते थे, इसीलिए उन्होंने अपना टीवी शो भी शुरू किया था जिसका नाम था जीना इसी का नाम है। आप जानते ही होंगे कई सारी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज इस शो का हिस्सा बन चुकी थी और काफी फेमस भी था ये टीवी शो। इनफैक्ट मैं फारूक जी की जिंदगी के बारे में भी बस यही कहूंगी कि जीना इसी का नाम है। सुनाती हूँ आपको अगला गाना फिल्म गमन से हरिहरन जी की आवाज में। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।

0: बाजार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में श्री मोदी ने निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
1: बहुत लोगों को हमें जुड़ना है, हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इस दौरान ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता और द्विपक्षीय बैठक भी होगी। ब्रिक्स युवा अलायंस ने आज लगातार दूसरे दिन ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ विषय पर चर्चा का आयोजन किया। ये ऑनलाइन चर्चा मुख्यतः वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार पर केंद्रित थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हॉर्मुज जल डमरू मध्य को एक बार फिर अमरीकी इलाका बताए जाने के बाद से अमरीका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। इस बीच ईरान ने फिर कहा है कि जब तक अमरीका अपना रुख नहीं बदलता हॉर्मुज बंद रहेगा। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने हॉर्मुज पर अमरीकी दावों को खारिज करते हुए ट्रंप के बयानों की कड़ी आलोचना की। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमरीका ईरान पर और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूरी पर यह दुर्घटना हुई। जापान में राजधानी टोक्यो के उत्तर पूर्वी प्रांत इबाराकी में आज तड़के 5.9 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र 70 किलोमीटर की गहराई में था। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 105 रन बना लिए हैं। एफआईएच हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत को पूल ई का यह मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गोरिया
1: गोरिया
2: गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन।

0: छोटी सी अच्छाई।
1: बैठिए मैडम बैठिए।
2: अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था, एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो।
3: अरे बेटो तू यहाँ क्या कर रहा है, और ये दोनों लड़कियों कौन है?
2: देखिए भाई साहब आप कौन है?
3: जी मैं इसका बाप हूँ।
2: आप इसके बाप हूँ? महमूद का बेटा नहीं तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है?
4: जी नहीं।
2: तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें?
5: चलान तो कटेगा भैया तेरे,
2: और अभी उतर के लेके जाओ आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए।

नमस्कार दोस्तों, प्रेम विश्वास और भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पावन पर्व रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास, सुरक्षा और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है।

रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। हर कलाई पर सजे प्यार का धागा और हर चेहरे पर मुस्कान रहे। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ रेडियो गुंजन धर्मशाला की ओर से।

0: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी?
1: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
0: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए। कौन सा स्टाइल चाहिए आपको? ये देखिए, पिछले महीने मिश्रा जी की बेटी की शादी के लिए सिया था।
1: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए। थोड़ा सिंपल दिखाइए।
0: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
1: चुन्नी के लिए।
0: ये अपनी चुन्नी?
1: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
0: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
2: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी। पंडित जी ने इसी इतवार का मुहूर्त निकाला है, तो हो तो जाएगा ना तब तक।
0: अच्छा, 12 साल की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
2: नहीं, क्यों?
0: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
2: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
0: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
3: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
0: ना हम सीएंगे, ना किसी को सीने देंगे।
4: जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा मित्र, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी खामोशी में ही ईश्वर का वास।
5: मम्मी जी क्या कह रहे हैं, बचपन में आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था।
2: हाँ, जब मैं 12 साल का था ना, तो मैं पापा को बिना बताए उनकी बाइक लेके घर से बाहर निकल गया, और मैं बाइक इतनी तेज चला रहा था कि सामने से एकदम से ट्रक आ गया। ट्रक को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से लेफ्ट ले लिया, तो जैसे ही लेफ्ट लिया सामने से गाड़ी आ रही थी, और गाड़ी में जाके बाइक लगी और बाइक पूरी खत्म हो गई।
5: बेबी बाइक को छोड़ो, आप बताओ आप बचे थे कि नहीं?
2: तब तो बच गया था, लगता है अब नहीं बचूंगा।

नमस्ते दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसीं जुड़े होए हो ते मैं हां तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। हुण समां हो गया है पंजाबी गीतां दा ते आओ सुनदे हां पंजाबी गीत।

श्रोते हो रेडियो गुंजन धर्मशाला, तो तुसी एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीत। मैं तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। आओ सुनदे हां प्रोग्राम दा एक होर सोहणा जिहा पंजाबी गीत।

श्रोतियों रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी बने होए हो ते सुन रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया ते आओ अगला गीत तुहाडी पेश नजर।

सोहणे सोहणे पंजाबी गीत तुसी सुन रहे हो रेडियो गुंजन धर्मशाला तो ते मैं थोड़ी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया 91.2 MHz ते तुसी एदा ही बने रहो साडे नाल ते प्रोग्राम एंजॉय करते रहो पंजाबी गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो कुंजन धर्मशाला तू सारे श्रोते एंजॉय कर रहे ने प्रोग्राम पंजाबी गीत अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया दे नाल वही खोर पंजाबी गीत सुन जिया तुहानू भेज रहे हां तुहाडे रेडियो सेट्स ते।

यह रेडियो कुंचन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज। इस वक्त तुसी एंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। ते आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम दा होर पंजाबी गीत।

0: गोरिया
1: गोरिया
2: गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: बैठिए मैडम बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था, एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो।
5: अरे बेटो तू यहाँ क्या कर रहा है, और ये दोनों लड़कियां कौन है?
4: देखिए भाई साहब आप कौन है?
5: जी मैं इसका बाप हूँ।
4: आप इसके बाप हूँ? महमूद का बेटा नहीं तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है?
6: जी नहीं।
4: तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें?
1: जवान तो कटेगा भैया तेरा,
4: और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए।

नमस्कार दोस्तों, प्रेम विश्वास और भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पावन पर्व रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास, सुरक्षा और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है।

0: उत्सव
1: रिश्तों में मिठास रहे अपनों का साथ रहे रिश्तों में मिठास रहे अपनों का साथ रहे हर कलाई पर सजे प्यार का धागा और हर चेहरे पर मुस्कान रहे। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ रेडियो मंचन धर्मशाला की ओर से

0: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी?
1: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
0: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए। कौन सा स्टाइल चाहिए आपको? ये देखिए, पिछले महीने मिश्रा जी की बेटी की शादी के लिए सिया था।
1: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए। थोड़ा सिंपल दिखाइए।
0: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
1: चुन्नी के लिए।
0: ये अपनी चुन्नी?
1: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
0: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
2: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी। पंडित जी ने इसी इतवार का मुहूर्त निकाला है, तो हो तो जाएगा ना तब तक।
0: अच्छा, 12 साल की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?

0: क्यों? और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है?
1: पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
2: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
1: अरे भैया जी एक मिनट। अरे बिरजू वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
3: मास्टर जी टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
1: ना हम सीएंगे ना किसी को सीने देंगे।
4: जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा मित्र, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी खामोशी में ही ईश्वर का वास।
5: मम्मी जी क्या कह रहे हैं, बचपन में आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था।
6: हाँ, जब मैं 12 साल का था ना, तो मैं पापा को बिना बताए उनकी बाइक लेके घर से बाहर निकल गया, और मैं बाइक इतनी तेज चला रहा था कि सामने से एकदम से ट्रक आ गया। तो ट्रक को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से लेफ्ट ले लिया। तो जैसे ही लेफ्ट लिया, सामने से गाड़ी आ रही थी, और गाड़ी में जाके बाइक लगी और बाइक पूरी खत्म हो गई।
5: बेबी बाइक को छोड़ो, आप बताओ आप बचे थे कि नहीं।
6: तब तो बच गया था, लगता है अब नहीं बचूंगा।

नमस्ते दोस्तों, 91.9 ओमेगा हर्ट्ज पर यह तुहां सारिआं दा ही अपना रेडियो मंचन धर्मशाला। तो दोस्तों तुहां दी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका तुहां कन्ने जुड़ी हुई है एक बहुत ही खास गलबात कन्ने, बहुत ही खास जेड़ा है अहां दे जेड़ा जिंदगी च बोली सकदे कि मुल्दे ना जानकारियां बड़ी जरूरी होंदियां ना, अहां अपडेट रहना बड़ा जरूरी अज दी डेट च। अहें जेड़ा ज्ञान है हर कुथी ते लेना बड़ा जरूरी है, चाहे छोटी ते छोटी गल है, बड़ी ते बड़ी गल है, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे अहां दे हम उम्र हैं, कुथी ते भी अहें सीखने मिलता है, तसे अहें वो मौका जेड़ा है जाना नहीं देना चाहिए। तो अज दी ये गलबात तुहांजे वास्ते बड़ी जरूरी है, कहे जे अहां हिमाचल दे रहने वाले लोग हैं, कने अहें अपनी संस्कृति अपनी परंपरा

0: जेड़ा की तुह सारे दिखा दे उन धीरे धीरे जेड़ा से उथी विलुप्त होंगी जा रही है, खत्म होंगी जा रही है, तो तिसे किया बचाए के रखना है। अगर हम ऊनी तिसे खत्म कर देंगे तो आने आई पीढ़ियां तक ओहायो सुरक्षित करके किया रखना है, किया पहुंचाना है। तो बस ये छोटी छोटी गल्ला जेड़ा अहां दे बुजुर्ग ते अहां सुनने मिलदियां ने या अहां दे बड़ियां ते अहां सुनने मिलदियां ने, तसे अहां जरूर सुनना चाहिदियां, उस पर विचार करना चाहिदा। तो अज दी इस गलबात च अहां कन्ने बड़े ही खास जेड़ा अहां दे मेहमान हैं से जुड़े हुए दोस्तों, ता उमेश शर्मा जी जेड़ा कि लोक संस्कृति दे कन्ने जुड़े हुए बड़े, मतलब पुराने टाइम ते खास काफी टाइम ते जुड़े हुए, कन्ने उन्हां दा बड़ा अच्छा लगाव भी है लोकां दे प्रति भी, ताकि से अवेयर करना चाहंदे लोकां जो कि अपनी संस्कृति यो कियां संजोई कर रखा जा सकदा है, ओह यो कियां हां आने वाली पीढ़ियां तक जेड़ा है सिर्फ पहुंचाए सकदे। ते गलबात बड़ी खास रहने आई है तुहां वास्ते, ता आईया स्वागत कर देन अपने खास मेहमाना दा। उमेश शर्मा जी तुहाडा स्वागत है अहां दी इस गलबात च।
1: धन्यवाद जी।
0: जी ता सारे ते पहले ता तुहां अपने बारे च थोड़ा दे अहां दे दोस्तां जो दसा कि तुहां कुत्थों दे रहने आए न, कने इस वक्त जेड़ा तुहां क्या मतलब अपनी जेड़ा सेवा दिया दे अपने समाज दे प्रति या अपनी जिंदगी दे प्रति से कुछ तरीके न दिया दे।
1: नमस्कार जी, मेरा नाम उमेश शर्मा है। मैं एट प्रेजेंट जेड़ा है कि मैं एक अध्यापिका दे पत्रकारी रहतूं
0: जी,
1: कने मैं जेड़ा आज की प्राथमिक पाठशाला सुधेड़ धर्मशाला ब्लॉक च काम कर दी
0: जी।
1: कने बाकी मेरा जेड़ा घर है रामनगर है, मेरा अपना परिवार है, मेरे तीन बच्चे हैं ना, बाकी घरे सारा परिवार है, सासू मां मेरे हस्बैंड। तो मैं अपनी पढ़ाई कने बच्चे दी पढ़ाई जे लेकर अपने घर दे कम्मे दे लेकर ही बच्चे दी जेड़ी स्कूले च जाके दी मेरा उन्हां दे प्रति जेड़ा मेरा कर्तव्य है सारे कम्म कर दी। कने लोक संस्कृति च मेरा बड़ा बड़ी रुचि है, शुरू ते बचपन ते जेड़ा लोक संस्कृति च मेरा बड़ा भारी अगे लगाव रहा, शुरू ते बचपन ते मुझे बड़ा शौक रहा इन्हां चीजां दा। कने आज भी मैं कोशिश कर दी कि अपनी जेड़ी लोक संस्कृति है सो अगे बढ़ाइए, इसे बचाए के रखी, क्योंकि आने वाला जेड़ा समय है जेड़ा है क्योंकि अपनी संस्कृति जेड़ी सारी लुप्त होंदी जा रही। पर मैं ये कोशिश कर दी कि अपने बच्चे आने वाली जेड़ी सारी पीढ़ी है इसे वहां अपने संस्कृति बारे च अपनी भाषा के बारे अपनी पहाड़ी भाषा के बारे च बच्चे जानन, अपने लोक संस्कृति संजोई करी रखन
0: जी।
1: तो इस ताई मैं अपना पूरा जे एफर्ट्स जे कर दिए
0: जी। तो बिल्कुल तुहां दसे कि तुहां जेड़ा इस वक्त जेड़ा अध्यापिका दे तौर पर अपनी सेवा जेड़ा दिया देन है ना, तो तुहें कितना टाइम हुई या मतलब इस जॉब च?
1: मुझे लगभग कोई 17-18 साल हुई जी,
0: मतलब ब्याह ते बाद
1: ही मेरी नौकरी लगी थी
0: जी।
1: मैं सबसे पहले जेड़ा था सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत जेड़ा मैं मोबाइल स्कूल तो शुरू किया था मैं सफर अपना पढ़ाई का, जेड़े बच्चे स्कूल च नहीं पढ़ते थे झुग्गी झोंपड़ियां बच्चे
0: जी
1: है ना जी, ईजीएस सेंटर जी ने एजुकेशन गारंटी स्कीम दे अंतर्गत जेड़ा मैं काम शुरू किया था सर्व शिक्षा अभियान दे अंतर्गत जेड़ा था ये मेरा सफर शुरू होया था। कने अज मैं SJVT दे पद पर जेड़ी कार्य रत है ना, कने प्राइमरी स्कूल सुधेड़ च मैं अपनी सेवाएं दिया दी
0: जी। तो तुहाडी जेड़ा बचपन ते स्कूलिंग हुई तीस दे बारे थोड़ा व्याहां दे दोस्तां दस्सा कि कियां कियां तुहां अज इत्थों तक पुज्जे?
1: हां जी, मेरी स्कूलिंग जेड़ी है राजकीय प्राथमिक पाठशाला चढ़ी
0: जी,
1: चढ़ी ते शुरू हुई, बाकी हाई स्कूल चढ़ी ते मैं अपनी मैट्रिक पूरी कीती थी। तो शुरू ते जेड़े सारे दिखा जी प्रथम गुरु जेड़े हुंदे सारे एक तो मां हुंदी, सारे घर दा माहौल ऐसा था जियां सारे घर ते शुरू ते जियां लोक संस्कृति सारे मम्मी मेरे फादर जेड़े थे तिन्हें भी बड़ा भारी शौक था भजन गाने कुछ गाना, या मैं इंस्ट्रूमेंट भी प्ले कर दी, हारमोनियम बजाना शौक है, बाकी ढोलक वगैरह मैं शुरू ते मतलब जो बचपन के शौक था।
0: अच्छा।
1: मेरे फादर जेड़े थे शुरू ते तिन्हें बड़ा शौक था, तो तिन्हां ते मैं मतलब भजन सीखने तिन्हां ते मेरा बड़ा मतलब जो मोटिवेशन थी मतलब मेरे मन च था कि उन्हें लगता था कि मेरी सारी कुड़ी जेड़ी अगे संगीत च अगे मतलब बड़े, पर ये कि सारे टाइम में जेड़ा ना रुचिका जी कोई ऐसे कोई साधन नहीं थे, कोई गाइडेंस नहीं थी है ना सांझे, कोई मौके नहीं मिले कि अगे बढ़ने ताई। लेकिन स्कूलों च जियां सारे प्रोग्राम होंगे थे छोटे छोटे प्रोग्राम कल्चरल प्रोग्राम साड़ियां जेड़ियां अध्यापिका थी उस टाइम जेड़ियां छोटे छोटे संजे प्रोग्राम उस टाइम ज्यादातर पहाड़ी चलते थे, हिंदी वगैरह बड़े घट होंगे थे, डीजे सिस्टम वगैरह नहीं होंगे थे, जो भी गाना आपू बजाना ना उसकी बड़ी मोटिवेशन शुरू ते रही। कने दसवीं तक जेड़ा कोई अपने जमाकड़ा कोई एक साड़ा चरिया च बड़ा मशहूर था साड़े पहले था चंद्रोली गीत चंद्रोली डांस जिसे बोलते, चंद्रावली जिसे

0: ना सितार तो सिखाई सिखाई और भी हर कुछ दिन मतलब सिखाने की कोशिश की थी। तो साड़े स्वर्गीय श्री राजेंद्र गुरंग जी मेरे गुरु जी थे से अज भी है ना, तो तिना तो बड़ा आशीर्वाद रहा, तिना बहुत मेनू गाइड किया, बड़ा कुछ सिखाया, तिना तो बड़ा अगे मेरा इंटरस्ट जो बढ़ता गया। फिर ग्रेजुएशन तक जरा मेरा म्यूजिक का सफर चलिया, उसके बाद जरा थोड़ा मेरा एम ए जी मैं हिंदी च की, मेरा छुट्टी है सफर म्यूजिक का ना, पर मेरा इतना की मतलब चली रहा अगे अगे शौक जरा शौक खत्म नहीं होंगे। मेरी मैरिज हुई फिर थोड़ा छुट्टी है मेरा मतलब सारा जो था ना सब कुछ छुट्टी है सही जी क्योंकि तुझे पता है
1: जिम्मेदारियां
0: बड़ी, जिम्मेवारियां बड़ी। उसके बाद पांच छह सात आठ साल जरा था बिल्कुल टोटली कुछ मतलब बिल्कुल कट ऑफ हो गई अपनी लाइफ थी इन चीजा थी। मैंने कॉलेज टाइम जरा मैं भाषा संस्कृति विभाग ने भी जुड़ी रही थी अपने कॉलेज टाइम च, हाँ संस्कृति विभाग की तरफ से भी काफी जगह अपना पार्टिसिपेशन करते थे, जमाकड़ा गिद्दा या अपना गद्दी नाटी गीत डांस वगैरह सब कुछ मतलब इन चीजें बड़ा इंटरेस्ट रखिया
1: जी बिल्कुल। तो दोस्तों तो हम भी जेड़ा पहले दे टाइम दे ना दस तो हां रिलेट करी पा दे होने की पहले जेड़ा ना स्कूलां च जेड़ा ए कल्चरल प्रोग्राम हुंदे थे ना तो तीना जे बड़ा अहमियत दित्ती जांदी थी जेड़ा हांदी संस्कृति है जेड़ा हांदिया ए परंपरा जेड़ा लोक गीत हुंदे उन्हें बड़ा मतलब ना लोका तक पहुंचाने की कोशिश हुंदी थी। पर हुण धीरे धीरे जियां जियां टाइम बदलिया तो उस हिसाब ने थोड़ा हां मतलब पढ़ाई है वखे ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिता है ना, तीसरी वजह ना कुथी ना कुथी जड़ा हमारी हमी जड़ा परंपरा संस्कृति ऐसे कुथी ना कुथी है दबदिया हुई नजर ओदिया। पर हुण धीरे धीरे जियां जियां सोच बदला दी जियां जियां हुण मॉडर्न जमाना जियां हुआ था तो उस हिसाब ने लोग हुण थोड़ा अलग तरीके ने उस संस्कृति वापस लाने की कोशिश करा दे उसे जागृत करने की कोशिश करा दे। तो अहां दा भी दायित्व बनता कि अहां भी उन्हां दा सहयोग करन कने उस च अपना साथ देन तो शायद अहां कुछ बेहतर करी पाए। तो उमेश जी जियां कि तुहां इस दे बारे च दस्या कि किस तरह दे सफर तुहाडा इत्थों तक पुजा तो इस दे अगे अहां जरूर गल जरूर करनी है कि उसके अगे तुहां इस मतलब कि अपने इंटरस्ट च वापिस कियां आए कियां तुहाडा ए जेड़ा मतलब फिर ते जागृत हो मतलब कि शौक। लेकिन उससे पहले हाँ एक प्यारा जिहा पहाड़ी गीत सुनना चाहेंगे तो अगर तुहां दी पसंद दा कोई गीत हो तो हाँ अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना चाहेंगे उसी
0: जी जरूर
1: जी।
0: पहाड़ी गीतां च वैसे तो खैर अजकल तुझे पता है तने बड़ी बड़ी सिंगर है ना बड़ा कुछ गांदे पर हाँ मेरा जेड़ा एक मेन मकसद है साड़े दी पुराने लोक गीत सुहाग गीत होइए सेहरे वगैरा ना इन चीजे बड़ा मोडिफिकेशन करके जेड़ा इना दी मतलब रूपरेखा जेड़ी बिगाड़ी थी पर साड़ी कोशिश है कि इना गीत जेड़ा जिया थे ना तिया गाया जाए तो मतलब साड़ी संस्कृति जेड़ी है पुरानी जेड़ी से जिंदा रहे जागृत रहे ना। एक छोटा देख मैं सुहाग गीत जेड़ा तंजु मैं सुनाने की कोशिश कर सकती क्योंकि इतना ज्यादा तो सारे गल का अभ्यास नहीं रहा पर थोड़ी जी कोशिश कर सकती मैं तो सुहाग गीत मैं तंजु सुनाऊंगी।

0: कहना बड़ी ही मधुर तुम्हारी आवाज इस सुहागे और ज्यादा इसी चार चांद लगाए थे जी। तो उमेश जी मैं ये जानना चाहती कि ये जेड़ा लोक संस्कृति कने साहित्य दे प्रति जेड़ा ये तुम्हारी मतलब एक तरह से प्रेरणा रही, तो ये जिया तुम बोले कि मेरे फैमिली भी बड़ा इंटरेस्ट रखते, मतलब मम्मी पापा भी बड़ा शौक रखते थे, तो ये तुम्हें उन्होंने ही प्रेरणा मिली या कोई होर भी तुम्हारा जिंदगी च रोल मॉडल रे या कोई जिसने दिखी के तुम्हें मतलब ये शौक जाग गया?
1: देखो एक रोल मॉडल जो होंगे जैसे पहले फैमिली ते समझो एक सारी मदर एक जिकर बच्चे माहौल जो होंगे बच्चों का सीखने सिखाने का फैमिली ते ही मिलता है ना। अगर आप कुछ फैमिली के गुण होंगे अगे कुछ कुछ कर पाएंगे ना, तो फैमिली के गुण जड़े थे सारे मदर दे सारे चाची मम्मी वगैरह जो भी थे ना आशुरू थे और इंटरेस्टेड भी थे ना गीतों सुनने ताई, क्योंकि बच्चे सारे से होते नहीं होंगे कि जब माँ बाप बोले तेने सीखने की जिज्ञासा भी कुछ नहीं होंगी खुशी खुशी च होंगी ना, पर मेरे च जिज्ञासा ना मैं सीखने की मेरे चल लगती शुरू ते ही। उसके बाद जिया सा दसवीं तक आज हम पढ़ते थे ना फिर सा जिया अगे अगे कर देगे प्रोग्राम, तो समझो फिर मेरी मुलाकात जेडी है ना अगे मैडम शिवानी नेगी जी। अच्छा, नेगी जी उस टाइम तो गुरंग है ना सच जानते हो ना, मैं वो दीदी ना मेरे शायद मेरा इंटरव्यू सुन गए था, मैं उन्होंने भी बड़ा थैंक्स कर दी है, तो उन्होंने मतलब मेरी एक इंट्रोडक्शन हुई उन्होंने सिस्टर के थ्रू जो स्कूल सिस्टर थे ताती ना मिंजो मेरे स्कूले वाले जेड़े थे मिंजो बच्चे तैयारी करने ताई मिंजो स्कूले सद्या थी ना कि लड़की है सारे स्कूल के बच्चे बड़ा अच्छा कर दी कहने दसवीं करके चली गई तो सारे बच्चे जेड़ा ऐसा प्रोग्राम तैयार कराने ताई मिंजो सदी लेंदे थे, तो सह को इंसिडेंटली जे शिवानी दीदी भी तू आए थे क्योंकि सह भाषा विभाग के जुड़े थे सह बच्चे जेड़ा सह लेकर जाते थे जी प्रोग्राम च लेकर जाना मिंजर मेला हो गया या अपने कोई भी प्रोग्राम जिया तब हर जगह जिया जगह जगह बच्चों जमाकड़ा वगैरह मैं तीस जिया भी स्टार्ट किया तो इन्होंने जाना ना डांस गाना जो भी अपना मतलब भाषा संस्कृति करने ता काफी कॉलेज टाइम करने मैं तिना करने जुड़े रही आकाशवाणी धर्मशाला च भी सारे कई मेरे सुहागीत वगैरह जेड़े ने रिकॉर्डिंग हुई है मेरी, मैं एक रेडियो आर्टिस्ट भी इस टाइम रही मैं तो मतलब सह भी मेरे रोल मॉडल रहे एक ना। उसके बाद तुझे दस कि जी हाँ ब्याह के बाद थोड़ा छुट्टी है मेरा ना, तो उसके बाद फिर मैं 2003 ते जेड़ा मैं स्कूलों से चालू मैं दोबारा ज्वाइन किया ना अपना, तो उसके बाद मेरी जी लाइफ दोबारा से शुरू हुई है चीजें तो भी बच्चे कहने मैं स्टार्ट किया अपने बच्चों सिखाने का मैं ये मोटिव रखा कि मैं जो भी लोक संस्कृति जेड़ी है मैं अपने बच्चों सिखानी है अपने जितने भी बच्चे ना आने वाली पीढ़ी है मैं कोशिश करनी है कि जेड़ा समझ गुण है मैं अपने बच्चे भी ट्रांसफर करा है ना जी, तो मतलब सफर बस इसके बाद फिर अगे चलता चलता चलता इतना ज्यादा कोई मेरा इतना ज्यादा नहीं है कि कोई बड़े मेरे फैन फॉलोइंग बड़े ज्यादा ने कि मैं बड़ा ज्यादा कोई मशहूर है, पर ये कि जितना भी अपने लेवल तक अपने एक टीचर ग्रुप या अपने कोई फ्रेंड्स तक मतलब मैं कोशिश कर दी कि मैं जो थोड़ा बहुत जानते भी है पसंद भी कर दे मैं थोड़ी थोड़ी कविता भी लिख दी पहाड़ी है ना जी, तो ये थोड़ा मिला जुला दिया थोड़ा संसार बनिया
0: जी बिल्कुल। तब एक कविता भी यहाँ तो हाथे जरूर सुनना चाहेंगे, पर उससे पहले मैं एक नजर इस पर दौड़ाना चाहूंगी कि जी तो हाँ बोले कि एकदम से सारा कुछ ब्याह के बाद जरा से छुट्टी था है ना 5-6 साल वास्ते, तो फिर उसके बाद तो है मतलब फैमिली सपोर्ट जब तो शुरू किया तो एक तो शुरू मतलब क्या लगा तो जो कि क्या ऐसी जिज्ञासा अंदर आई कि नहीं मुझे शुरू करना चाहिए, तो उस फैमिली मतलब कि अपनी जरा ससुराल दा सपोर्ट किस तरह तेरे या तो जो मुश्किल आई या फिर क्या मतलब क्या
1: सपोर्ट की गल नहीं होगी ना कि इंटरेस्ट तो नहीं बोले कि इंटरेस्ट की गल होंगी फैमिली माहौल होंगे, मेरे ससुराल ऐसा कोई माहौल नहीं था कि संगीत जो पसंद करते थे कि मेरे गाने जो पसंद करते थे, मेरी फैमिली का माहौल जो था बिल्कुल डिफरेंट था ठीक है ना बिल्कुल टोटली डिफरेंट, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं ना गाने च ना बजाने च ना सुनने च भी
0: जी दादा बड़ा मुश्किल सा
1: पर कि जेड़े मेरे आस पास के जेड़े मेरे लोग हैं जी हाँ उन्दे ना जेड़ा अंदर बोलते कोई कीड़ा हो सर जागृत रहंदा ना
0: जी
1: मोरे ती से कीड़ा कदी नहीं मरदा असा कीड़ा जेड़ा था मेरे अंदर से एक गुण था ना
0: जी।
1: फिर दिखा ना जी कोई कीर्तन होने अखे बखे नोई नोई नूह थी है ना ऊपर ते मुझे शौक था है ना जालू में जाना फिर जी हाँ कीर्तना चखे बखे जाना था जालू में एक दो कीर्तना चखे बखे गई ब्याह लग गई तो मैं तो एक दो जेड़े ना अपने भजन कने जेड़े मैं अपने सुहागे गीत वगैरह जगाए तो मैं तीतु बड़ी मशहूर हो गई
0: जी
1: तीतु लोग मुझे बड़ा पसंद ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਾਮਨਗਰ ਸ਼ਿਆਮ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੜੋਸੀ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰਾਮਨਗਰ ਹੈ ਸਹਿ ਮਿੰਜੋ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸਹਿ ਵੀ ਮਿੰਜੋ ਮਤਲਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚ ਮਿੰਜੋ ਪਹਿਲੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਮੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਮੰਡੂਏ ਦਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਮਿੰਜੋ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਅਲੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰੈਂਡਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਾਬਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਮੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ ਹੈਨਾ ਤੂੰ ਗੀਤਾਂ ਚ ਆਉਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਚਲੋ ਬਣੀ ਰਹੇ
0: ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ
1: ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਵੀ ਨੀ ਹੈ ਕਵਿਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਸ ਚੇਤਾ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਤੋ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੜੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਆ ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਪਰਿਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਾ ਰੁਚੀਕਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣੀ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਖਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਾ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੋਕ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਇਕਦਮ ਨੀ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਹੋਰ ਥੇ ਹੁਣ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਚ ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਚ ਜਿਵੇਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਝੋ ਨੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਹ ਮਿੱਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੁਛ ਵਿਕਰਿਆ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਾ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁੰਡੂ ਛੱਡਦੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁੰਡੂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਨਿਕਲਾਂਦੀ ਕਿ ਮੁੰਡੂ ਕੁੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਨੇ ਕਿ ਮੁੰਡੂ ਖਰਾਬ ਨੇ ਕਿ ਸੱਸੂ ਖਰਾਬ ਬੈਲੈਂਸ ਸਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਜੇ ਕਰਨੇ ਤਾਈ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੋ ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੁੰਡੂਆਂ ਤਾਈ ਲਿਖੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬਣੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀ ਕਰੇ ਨਾਰੀ ਜੋ ਕਿਆ ਕਿਆ ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡੂਆਂ ਤਾਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਦੀ ਕਿਉਂ ਕਵਿਤਰੀ ਨੀ ਆ ਬਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਹੈ ਅੱਜ ਘਰੇ ਘਰੇ ਦੀ ਕਥਾ ਘਰੇ ਘਰੇ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਰਾਂ ਬਿਆਹ ਕਰੇ ਘਰੇ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਰਾਂ ਬਿਆਹ ਹਰੇ ਘਰੇ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹਰ ਘਰੇ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰਵਣ ਕਿਸਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁੰਡੂ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਰਵਣ ਸਮਝੀ ਲਿਆ ਕਿ ਹਰ ਘਰੇ ਦਾ ਮੁੰਡੂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਵਣ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜਦ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਪਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹਰ ਘਰੇ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰਵਣ ਕਿਸਦਾ ਨਾ ਸੁਖਣਾ ਪਖਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਇਆ ਲਾਡਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਪੜਾਇਆ ਬੀ ਐਡ ਐਮ ਐਡ ਪੜਿਆ ਪੜਾਇਆ ਸੁਖੇ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਥੱਸਾ ਕਰੇ ਕਰੇ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਰਾਂ ਬਿਆਹ ਹਰ ਘਰੇ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰਵਣ ਤਿਸਦਾ ਨਾ ਕਿੱਤੀ ਪੂਰੀ ਪੜਾਈ ਲੱਗਿਆ ਨੌਕਰੀਆ ਕਿੱਤੀ ਪੂਰੀ ਪੜਾਈ ਲੱਗਿਆ ਨੌਕਰੀਆ ਬਸ ਅੰਮਾ ਬਾਪੂ ਪੇਗੇ ਤੋਪਾਂ ਹੁਣ ਛੋਕਰੀਆ ਅੰਮਾ ਬਾਪੂ ਤੋਪਾ ਪੇਗੇ ਤੋਪਾਂ ਹੁਣ ਛੋਕਰੀਆ ਸੋਹਣ ਸੁਰੱਖੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣੀ ਸੋਹਣ ਸੁਰੱਖੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣੀ ਬਸ ਹੁਣ ਮਨੂਆ ਦਾ ਕਰਨਾ ਵਿਆਹ ਬਸ ਹੁਣ ਮਨੂਆ ਦਾ ਕਰਨਾ ਵਿਆਹ ਘਰੇ ਘਰੇ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਰਾਂ ਬਿਆਹ ਹਰ ਘਰੇ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰਵਣ ਤਿਸਦਾ ਨਾ ਘਰੇ ਚ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਆਹ ਆਉਂਦੀ ਘਰੇ ਚ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਆਹ ਆਉਂਦੀ ਬੜੇ ਚਾਏ ਕਰਨ ਅੰਦਰੋਂ ਮਸੇ ਕੁਸੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤੇ ਮਸੇ ਕੁਸੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤੇ ਫਿਰ ਸੱਸ ਕਨੇ ਨੂੰਹਾਂ ਪੁੱਜ ਬੜਾ ਹਰੇ ਲੜੋਣ ਮਸੇ ਗੁੱਸੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤੇ ਫਿਰ ਸੱਸ ਕਨੇ ਨੂੰਹਾਂ ਬੋਲਿਆ ਆਪੋ ਚ ਬੜਾ ਹਰੇ ਲੜੋਣ ਬਾਪੂ ਵਿਚਾਰਾ ਬੋਲੇ ਛੱਡ ਨੌਕਰੀਆ ਬਾਪੂ ਵਿਚਾਰਾ ਬੋਲੇ ਛੱਡ ਨੌਕਰੀਆ ਵਿਆਹਗਾ ਸੰਜਾ ਓਨ ਫੋਨ ਸੱਸੂ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਆਪੋ ਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਲੜੋਨ ਇੱਕੀ ਮੁੰਡੇ ਲਾੜੀਏ ਚ ਚੁੱਕਾਂ ਇੱਕੀ ਮੁੰਡੇ ਲਾੜੀਏ ਚ ਚੁੱਕਾਂ ਦੂਏ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਂ ਇੱਕੀ ਮੁੰਡੇ ਮੈਂ ਲਾੜੀਏ ਚੁੱਕਾਂ ਦੂਏ ਚੁੱਕੇ ਮਾਂ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਸੁਖੇ ਦਾ ਨੀ ਮਿਲਦਾ ਸਾਂ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਸੁਖੇ ਦਾ ਨੀ ਮਿਲਦਾ ਸਾਂ ਘਰੇ ਘਰੇ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਰਾਂ ਵਿਆਹ ਹਰ ਘਰੇ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰਵਣ ਤਿਸਦਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਮਿੰਜੋ ਲਾੜੀ ਟੋਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਮਿੰਜੋ ਲਾੜੀ ਰੋਕੇ ਬੈਠਦਾ ਤਾਂ ਟੋਕੇ ਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਮਿੰਜੋ ਲਾੜੀ ਰੋਕੇ ਬੈਠਦਾ ਤਾਂ ਟੋਕੇ ਮਾਂ ਕਦੀ ਲਾੜੀਆਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਕਦੀ ਲਾੜੀਆਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਕਦੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਮਾਂ ਵਿਆਹ ਕੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਇਲ ਵਿਆਹ ਕੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਇਲ ਹੁਣ ਬਣੀ ਗਈ ਸੈ ਕਾਂ ਘਰੇ ਘਰੇ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਰਾਂ ਵਿਆਹ ਹਰ ਘਰੇ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਰਵਣ ਤਿਸਦਾ ना माऊ जो जहर लगदी मेरी लाड़ी, माऊ जो जहर लगदी मेरी लाड़ी, लाड़ी ओ मेरी मां, इक्की दुए जो इन्या कूरदियां, इक्की दुए जो इन्या कूरदियां जियां अरे पतरायो गां, इक्की दुए जो इन्या कूरदियां जियां अरे पतरायो गां, घरे घरे दी कथा सुनांदी क्या क्या करां ब्याह, हर घरे दा प्यारा पुत्र सरवण तिसदा नां, इक्की दी जुबान जिया निम्मे दे पत्ते, इक्की दी जुबान जिया निम्मे दे पत्ते, दुइया दी कैंचिया सही जुबान, जालू भी बोलन कोड़ा बोलन, जालू भी बोलन कोड़ा बोलन, बस नहीं चलदा मेरा भगवान, घरे घरे दी कथा सुनांदी क्या क्या करां बयान, हर घरे दा प्यारा पुत्र सरवण तिसदा नां, माओ फेर लिया उन अखी, माओ फेर लिया उन अखी, सिरे ते टाई लई छां, माओ फेर लिया उन अखी, सिरे ते टाई लई छां, हर वेले तान्या लाई लाई, हर वेले तान्या लांदी ले ले लाड़िया दा ना, हर वेले तान्या लांदी ले ले लाड़िया दा ना, बोले एक जननी एक जीवन साथी, एक जननी एक जीवन साथी, कुछ दिन मैं छड्डा वा, एक जननी कन एक जीवन साथी, कुछ दिन मैं छड्डा वा, बस मेरी हुण इक्की ड्यूटी रही गई, कदी आ कदी ना, कदी आ कर कदी ना।
0: बड़ी प्यारी दी कविता लिखी उमेश जी दा, कने वाकई एक एक शब्द च जेड़ा है ना जेड़ा आहांदी डेली लाइफ च ओवा दा असल च आहांदी जिंदगी च चले, खास करी आहां कुड़ियां दी गल ता अक्सर करी लैंदे ना, लेकिन कुती ना कुती आहां सोचदे कि मुंडू बोलदे ना दसदे नहीं अपना दर्द बयान नहीं करदे तां से तिन्हां आहां नजरअंदाज करी देंदे, पर बिलकुल सही गल है कि एक मुंडू जालू ब्याह करदा है तो सर इक्की बखे मां हुंदी है तो दो बखे लाड़ी हुंदी है तो सर समझ नहीं आंदा कि वे जा तो जा कुसी बखे,
1: पर देखा नहीं ना देखे सोल्यूशन हो सकता ना
0: जी,
1: कसूर ना मुंडू दा भी नहीं हुंदा, कुड़िया दा भी नहीं हुंदा, या घरे वाले दा भी नहीं हुंदा, मैं तो सारे एक एक सुझाव देना चाहती कि आने वाला जरा समय ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है ना, तो मतलब देखा अज ने टाइम तक फिर भी टाइम अच्छा टप लंगी है, लेकिन आने वाला जरा समय है, ये सारे अगे आने वाले समय है, सारे बच्चे ने आने वाले समय ने, तो अम्मी एक मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जेडी है ना सह बड़ी बड़ी जरूरी है,
0: ताई
1: रिश्ते निभाई सकते, कने मुझे लगता कि कोई भी कुड़ी जेडी है ससुराल च जांदी है तो सर कदे ही सोची कि नहीं जांदी कि मैं ससु सोहरे नाल लड़ना है कि मैं लड़ना, देखो ना हर कोई एक नवा जन्म हुंदा, हर कोई अपने परिवेश ते प्रक्रिया दा कोई कियां हुंदा, कुछ दी नेचर तां चेंज नहीं कर सकदे, पर सानू मिली करी जेड़ा एक दूए दी नेचर समझ करी कोऑपरेट करना चाहिदा ताकि सारे दे घर वसन, सारे असन, कने सारे सुखे ने रहन, अगर सच कने मैं तो सबसे बड़ा दिखा घर च एक लेडीज जेड़ी हुंदी ना घर बनाना जो लेडीज दे हत्थ, क्योंकि लेडीज जेड़ी है लेडीज ही घरे रहनी है ज्यादातर, तिना सब कुछ करना हुंदा, लेडीज दी आपको च अंडरस्टैंडिंग अच्छी है ना तो सब घर अच्छा चलदा, क्योंकि लड़कियां दिखा बाहर भी कमाना या करे बिजनेस करा देते ना भी कमाना, तिना भी सह हर वक्त सह चीजा नहीं दिखते, और अगर मुंडू भी सपोर्ट खैर सारे दी देना चाहिए, अगर गलत मां है तो मां भी बोलना चाहिए, अगर लाड़ी गलत है तो लाड़ी जो भी बोलना चाहिए, पर एक ही मैं तो मैं ये बोलना चाहती कि सारे दी जो अंडरस्टैंडिंग है एक सारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छा एक वातावरण पैदा करना चाहिए ताकि सारे घर च सुख शांति बड़ी रहन, पहले साथ लड़ाइयां उन्होंने करे च ना
0: कुछ जान ना गवाना,
1: हां बस
0: आजकल बिल्कुल
1: देखो सहनशीलता नहीं रही, अजकल बिल्कुल सहनशीलता नहीं रही अजकल ना, क्योंकि अजकल एक एक कुड़िया लोग ज्यादातर एक एक बच्चा सिंगल गर्ल चाइल्ड भी है ना या सिंगल लड़कियां भरा भैन है ना, मां बाप का भी है कि सारी कुड़ी अगर बड़ी परेशान है तो या ले आगे नहीं माफ माफ सुने तो बिल्कुल सुसाइड दिखा सर धर्मशाला ची दो केस हो गए दाड़ी ची दो केस हो गए, तो मैं सारी अपनी भैन या जितने भी सारे जो भी बच्चे है ना अगे दे मैं सारिया एक यही प्रेरण मतलब सुझाव देना चाहती है कि सहनशीलता तो बड़ी बड़ी जरूरी है हर चीजा च, पर एक घरे का अच्छा वातावरण बनाए के रखा तुहा उन्हें बगानिया बच्चे भी तुहा जेड़े आंदे तिन्हें भी तुहा एक अपना परिवार का हिस्सा समझी के तिन्हें सिखा समझे कि तुहाड़े घरे एक नए बच्चा लड़की पैदा हुई है तुहा किसे सिखा नौवे तरीके से सिखा तुसे भी प्यार दिया बेटी सही प्यार दिया, बेटी सही बोलना बड़ा आसान है पर बेटी हां बेटी बोलना बड़ा मुश्किल है ना, मुझे नहीं लगता कि कुड़िया भी फिरी
0: बिल्कुल दुए घरे जाना था एक, मतलब अपने जेड़ा 22-23-24 साल बड़े होंगे छड़ी के एकदम से दूजे घरे जाना था एडजस्ट करने थोड़ा टाइम
1: तो लगता ही है ना, पर अगर जे आप कुछ देखो ना बच्चे आप कुछ दुखी होंगे तो तुम्हारा परिवार सुखी होगा, आज बच्चे दुखी होंगे
0: बिल्कुल
1: है ना, जो मुंडू बेचारा दुखी होगा कि मुंडू भी सुसाइड करा दे कुछ करा दे, माहौल क्रिएट ही को करना पहले ना ता मैं मुंडुआ की जड़ी दशा थी ना तो मुंडुआ ताई में कविता लिखी ता अच्छी लगे तो प्लीज अगे समझो सपोर्ट करनी अगे भी
0: जी बिल्कुल ता एक प्यारा जिहा लोक गीत कोई है
1: जरूर रुचिका जी अच्छा मैं एक लोक गीत जेड़े कविता दे रूप च मैं तुहानू सुनाउणा है बदलता परिवेश देखो लोक गीत तां बड़े अजकल सुनदे आए सारे पर मैं एक जगह अजकल दा बदलता परिवेश है इस पर एक मैं ठंडी ठंडी हवा झूलदी झूलदे चिल्लां दे जालू जेड़ा साडा बड़ा मशहूर लोक गीत है ना सो तुहां सुणिया होणा सारे तां इसदा मैं एक ऑपोजिट वर्जन जेड़ा मैं आपू बनाया है तां सहि मैं तुहाडी नजर पेश करना चाहूंगी
0: जरूर

0: प्यारा दिया है ये तो, हाँ एक लोकगीत बोल सकते हैं कि प्रेरणादायक, बड़ा ही प्यारा दिया सचमुच, बहुत बड़ी मधुर दी आवाज कने। मैं तो उम्मीद करती है कि लोग भी इससे थोड़ा जागरूक होंगे कने, थोड़ा इस पर सोच विचार करके, है ना, एक एक शब्द च गहराई है अगर हाँ ढंगे में इसे सुन गे कने जान गे।
1: बिल्कुल जी, देखा ना पर बच्चे का आजकल बच्चे बोलिए कि बच्चे पटूर बनायो, जी बरसात है आजकल, पर दिल करता था कि पटूरुआ बनाइए पतरूड़ुआ बनाइए है ना, कड़िया था बोलते मम्मी क्या बनाया ये नहीं खाएंगे है ना, ये बनाया पिज्जा बर्गर आई याद है ना, तो मतलब बच्चे का खान पीन सब छुट्टी रुझान कटी है, कंस्ट्रक्शन वर्क कितना हो गया, मकान खेत च मकान बनी है ना, से पहाड़ कटोइए चिल्ला दे डालू खत्म हो गए, जिथे जाते इतनी ठंडी हवा चलती थी हरियाली थी तो बिल्कुल खत्म हो गई, तो कांगड़े का गीत है मुझे लगता है गीत गीत हरियाली बिल्कुल ऑपोजिट ही हो गई है ना जी, तो हां ये मतलब गलाना चाहते कि तू हां पेड़ लगा
0: बिल्कुल
1: अपने पहाड़ जो कटने से बचा जितना हो सके, अपने धरती जो हरा भरा बना जितने पेड़ हो सकते लगा तो सब कने, अपने बच्चे जो भी तो अपना अपने कल्चर के बारे च अपने खाने के बारे च है ना, अपनी खमीरी रोटी है मूंजियां बना ताकि बच्चों का स्वास्थ्य भी ठीक रहा, मोटा अनाज भी खाना चाहिए समझो, बिल्कुल नहीं पिज्जा बर्गर मोमो चौमिन खाई खाई बच्चे जड़े बीमारियां लग गई है ना, हेल्थ खराब हो रही, और बच्चे जो अजकल नशे का शिकार हो रहे बच्चे है ना, देखो अजकल कुड़िया भी तुम दिखा दे सोशल मीडिया चाहे सीखना ओद कुड़िया से नशे दिन मुंडू नशे दिन घर बर्बाद हो गई लोगों ने, तो अजकल बच्चे भी अस ही बोलना चाहते कि बच्चो कुछ माँ बाप के बारे सोचा, अच्छे बना अच्छा खा अच्छी पढ़ाई तो जो माँ बाप करवा दे कने तू हाँ अच्छे रस्ते पर चला ताकि माँ बाप का नाम रोशन होए, साडे देश का नाम रोशन होए अगे है ना, साडे हिमाचल का नाम रोशन होए
0: जी, बिल्कुल सही बोला दोस्तों उमेश जी ने कि आज जेड़ा टाइम है ना सब बड़ा ही एक ना उथल पुथल टाइप चल रहा, मतलब की यहाँ जेड़ा हिमाचल दी एक प्राकृतिक सुंदरता है ना सहमान जो दिखने नहीं मिला दी कही जी, मतलब मॉडर्न टाइम इन्हें बदलना जरूरी है पर अहें उसके प्रति अवेयरनेस जेड़ा जिम्मेदारियां जेड़ा रहा नहीं सह भी बड़ी जरूरी है, कई जी हाँ पेड़ कटने की गल कर दस दस पेड़ कटी तो देंगे पर एक पेड़ हाँ लगाई के उसकी केयर नहीं कर पाते, फोटो खिंचाने वास्ते एक फोटो पेड़ लगाई जरूर देंगे पर उसकी रिस्पांसिबिलिटी हाँ पूरी नहीं निभाते। खैर हाँ चलते फिरते उमेश जी की जिंदगी की स्ट्रगल भी और कने जेड़ा उन्हां दा ए राइटर दा जेड़ा सफर है उस दे बारे च गल करदे, ता उमेश जी जेड़ा तुहां ए कविता लिखने दा दौर दोबारा ते शुरू कीता या शुरू ही कीता है जेड़ा, ता पहली कविता तुहां कल नू लिखी ही?
1: रुचिका जी पहली कविता जेड़ी मैं लिखी थी कोरोना जब लगे था ना
0: जी,
1: तो फ्री टाइम जो चल कोई काम नहीं थे फिर करे बोर हो रहे थे सारे
0: जी,
1: फिर कोरोना जी कोरोना कोरोना चलिया सारे, फिर पहले कविता में कोरोने पर लिखी थी
0: जी,
1: हां जी उसके बाद में बीच लगातार उसी साल में तीन चार कविता जेड़ी लिखिया रीक जो प्लेटफॉर्म भी मिला सोशल मीडिया
0: जी,
1: देखो पहले हाँ लिखते थे के भी लिखने से डायरिया पे रहती थी चीज
0: कुछ
1: पूजी नहीं पाती थी, इंटरेस्ट भी इतना क्रिएट नहीं होता, चल उसे फिर मैं लिखी कविता कने एक कने फोटो कने एडिट करी करी करी मैं जेरी सोशल मीडिया च पाई है अपनी है ना, एक कोरोना एक कलयुग का प्रभाव हसनी दी व्यथा मेरी और कुड़िया ताई सेल्फ डिफेंस ऐसी बड़ी एक बड़ी कविता जेरी मैं सोशल मीडिया पर पोस्ट की, मुझे बड़ा प्यार मिला अपने फेसबुक फैंस का और बड़िया पसंद भी कर दे और मोटिवेशन मिलती अगे और भी अस लिखने की कोशिश करते, तो बस मेरा कोरोना काल ते ही शुरू होया था मेरा सफर, चलो थोड़ा थोड़ा मैं कोशिश करती रही लिखती रहा कने अपने दोस्तों तक पहुंचा रहा,
0: बिल्कुल तो दोस्तों देखा ए मतलब अपना फैमिली दा वो भी संभाला दे मतलब घर भी संभाला दे कन्ने अपनी ड्यूटी भी करा दे जॉब भी करा दे एक अध्यापिका दे तौर पर अपने इस समय इस वक्त जेड़े कार्यरत हैं, कन्ने कन्ने एक गायिका भी हैं, कितने प्यारे प्यारे गीत जेड़ा तुहानू तक पहुंचाए ने चाहे है कविता दे माध्यम ने हो ने चाहे जिस भी माध्यम, तो एक बोलते ना जेड़ा एक महिला होंगी से मल्टी टैलेंटेड होंगी है, मतलब अगर करना चाहन तो हाँ बड़ा कुछ कर सकते अपनी लिमिट्स च रही के अपने संस्कार च रही के कने अगर हाँ मिस यूज करके उदा मतलब अपने जेड़ा हाँ दे अधिकार है उदा मिस यूज करके तो फिर बोल देना है एक अगर बदनाम होंगे तो उस कन्ने फिर सारे जोड़िया जाते, तो हाँ ऐसा काम ना करन जिसकी वजह ने कि पूरी सोसाइटी पर सवाल उठन है ना, एक अच्छे प्लेटफॉर्म है ना वास्ते अच्छी अच्छी एक ऐसी मतलब फील्ड है जिथो वहां जा सकते, तो उमेश जी मैं एक गल भी करना चाहती कि जी हाँ, आजकल दिखदे ना, पहले दे दौर च खैर इतना वैसे कुड़ियां वैसे ज्यादा पढ़ाने दा वो था नहीं है ना, पर आजकल दे दौर च भी दिखन तो जी हाँ पेरेंट्स जड़न से ज्यादा कर जिया स्पोर्ट्स होई या म्यूजिक होई है, मतलब सिंगिंग होई या फिर ये जेड़ा भी चीज हुई है, इस ज्यादा इंटरेस्ट पेरेंट्स दसते नहीं है ना, मतलब बच्चों का शौक हुंदा,
1: बच्चों का शौक बड़ा हुंदा जी, बड़े बच्चे ऐसे हैं
0: पर इक्की दुए दिखी के जड़ा है बच्चे प्रेशराइज कर देना कि नहीं पड़ोसियां दे बच्चे जड़ा से साइंस फील्ड रखी हो है या वो है, तो उस चीज़ का क्या कहना चाहेंगे।
1: बिल्कुल थोड़ी गल बड़ी अच्छी मुझे लगी है, मैक्सिमम एदा ही हुंदा कि बच्चे जलू म्यूजिक रखी लैंदे शौक है म्यूजिक का है ना, तो लोग लोके लग पौंदे बोलना या कदे अपने रिश्तेदार लग पौंदे बोलना अच्छा इन्हें आर्ट्स रखे म्यूजिक रखे इन्हें साइंस के नहीं रखी इन्हें मेडिकल भी नहीं रखे इन्हें नॉन मेडिकल, मतलब इन्हें बच्चे किसी प्रेशर दे आवे है ना, फिर घर वाले जल से बोलते तो घर वाले बच्चों प्रेशर पाते, फिर बच्चा जो अपने शौक दे जल बाहर जाता है फिर बच्चा ना जो गिरंदा ना जो गिरंदा, फिर बच्चा की एक डिग्री या कागज टुकड़े लेकर घर भी आंदा पूरी जिंदगी, लेकिन बच्चे जेड़ा इंटरेस्ट है ना, अगर बच्चे म्यूजिक का इंटरेस्ट है संगीत का इंटरेस्ट है या और कोई अपनी चित्रकला अपनी ड्राइंग का शौक है, तो बच्चे अजकल हर तरीके की कोर्सेज है ना अगे है ना सपोर्ट करना, तो पेरेंट्स जो है सपोर्ट करना चाहिए, कोई भी देखो कोई भी विषय जो ऐसा है पीछे नहीं आज कल में, तो हाँ अगर संगीत चे बच्चा तुरा अगे तू आगे संगीत दे देखो लेक्चर बनी सकते टीजीटी पोस्ट पर जाई सकते प्रोफेसर बनी सकते या तो अपनी अकेडमी खोली सकते, क्योंकि कमाई के साधन तो बनते ही है ना, बच्चे का अपना शौक भी पूरा होंगे, तो बच्चे मतलब ये नहीं जरूरी कि मेडिकल नॉन मेडिकल या और आर्ट्स स्ट्रीम च जाकर बच्चा देखा बड़ा कुछ है, ये आईएएस ऑफिसर वगैरह सारे आर्ट्स स्ट्रीम के जानते हैं ना, जरूरी नहीं मेडिकल नॉन मेडिकल, ये बच्चे ने इधर गल्ला भी जो बच्चों वहाँ प्रेशराइज नहीं करना चाहिए बच्चे ना,
0: बिल्कुल आजकल जो जी बोला ना कि आजकल कोई सुसाइड करा दे मैक्सिमम केसेस इसी वजह ने होते,
1: बिल्कुल इसी
0: वजह रिजल्ट नहीं दे पाते उस तरह,
1: बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अगे मैं इस विषय पर इस विषय थोड़े अगे बढ़ाना चाहती, देखा कि मैं स्कूल जी हाँ काम कर दिया, मैं अपने बच्चे कुछ बच्चे ऐसे ने छोटे छोटे बच्चे इन्हें अगे मैं इन्हें इस अगे चुकया देना बच्चों जिसने बच्चे अपने टैलेंट के बारे पता नहीं था, इन्हें पेरेंट्स अगे आए कि मैं जो बड़ा भारी मतलब मेरा वो कर दे कि तू हाँ साढ़े बच्चे हो तो टैलेंट पहचाने कहीं अगे किता है ना, कुछ बच्चे हैं तेने लोक संस्कृति छोटे छोटे छोटे बच्चे दूसरी तीसरी के बच्चे हैं जितने अच्छे अच्छे साढ़े बच्चे जो अगे पार्टीसपेट करते हैं डिस्ट्रिक्ट लैवल पर स्टेट लैवल पर पार्टीसपेट करते, एक मेरे स्कूल की छोटी जी कुड़ी हूं तो सिक्स चली गई सदा ना तनवी सेकंड क्लास से तिना कुड़ी गाना शुरू किया स्कूल ते तिना ब्लॉक लेवल च फर्स्ट आई फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल च तिना अगे कम्पीट किया, इतनी प्यारी ती सारी आवाज है अगे कुड़िया का इतना इंटरेस्ट बनी अगे क्यों जब तिने सिक्स एडमिशन ली है ना तो सारे सिंगर सिंगर बोली कर बड़े खुश होंगी और बड़ा तिने सुना दी, सारे बोलते कि तेको कौन सिखाता है, और जलू तिना पेरेंट्स बोलते कि बोलते हमारे उमेश मैडम ने हमें सिखाया हमें आगे बढ़ाया, तो काफी भी खुशी होंगी है ना, अगर हम कुछ टैलेंट निकाली सकी अगे कसा बच्चा जो किस टैलेंट जो अगे लेके अगे बढ़ा, तो टीचर जो भी बड़ी खुशी होनी कहीं पेरेंट्स जो बड़ी खुशी होनी ना, कहीं अगे जो एक चीज होर बोलना चाहती देखा इस सफर तक जो है जी जी तुम गल की थोड़ा इंटरेस्ट कि बनिया नहीं बनिया, बचपन के शौक तो नहीं दसे कि अगे कियां ब्याह के बाद डंप हो गया कम, फिर स्कूल च जाकर मैं बच्चों सिखाती मैं है ना, तो अगे फिर मुझे एक और अगे हूं मुझे नवी प्रेरणा ताई मेरे एक गुरु ही है साढ़े डॉक्टर जन्मजी गुलेरिया जी है ना, मैं तिना के संपर्क च हूं दो के साथ दो तीन साल से ज्यादा आई, वैसे तो बड़े टाइम ते पहचानते सुनते एक बड़े अच्छे संगीतज्ञ है ना, एज प्रिंसिपल मतलब से हूं है पोस्ट पर प्रिंसिपल पोस्ट पर है ना, पर उन्होंने संगीत के प्रति इतना अगे से इतना खैर बराबर कभी इतने सुई भी नहीं है ना, पर उन्होंने आशीर्वाद जेड़ा है मतलब करने से बड़ा गाइड कर दे कने बड़ा अच्छा तिन्हें सपोर्ट अगे मिन जो है उन्होंने और लोक संस्कृति जेड़ी है तिना अगे बनाने तिना की किताब जी तिने लिखते से, तो मेरा भी तीस अगे नाम वगैरह तिना पाया तीस कुछ मैं भी अपना सहयोग दिंदी रहिंदी, तो मतलब बड़ा गाइड कर दी अगे, तो तिना भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती मैं डॉक्टर जन्मजय गुलेरिया जी है ना, बस ये मतलब तिना भी अगे इस मेरे इस कमे च जो है तिना का बड़ा अगे योगदान है मुझे अगे बढ़ाने ताई
0: जी बिल्कुल। तो थोड़ा जा अपनी यहाँ गलबात जो पॉज कर दे कहना एक प्यारा जहा पहाड़ी गीत अगर तुहां दी फरमाइश ना हो कोई या तुहां ही गुनगुनाना चाहते हो तो जरूर हमें दोस्तों तक पहुंचा
1: पहाड़ी गीत। अच्छा मेरी फरमाइश भी आप चला दो गीत
0: जी।
1: ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਮੈਂ
0: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਆਈ ਆ ਦੋਸਤੋ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਗੀਤ ਜੋ ਉਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚ।

0: तो दोस्तों 91.2 MHz पर तो हाँ सारे इस वक्त जरा ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला कनाज दी बड़ी ही प्यारी दी गल बात जरा तो हाँ सुना देना अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कने हाँ खास जरा मेहमान है न जरा उमेश जी है तो बड़ी ही प्यारी प्यारी गल्ला कने बड़े बड़े प्यारे ही सुहाग भी तुहां तक पहुंचाए उना बड़ी प्यारी प्यारी कविता तुहां तक पहुंचाई है जेड़ा आजकल दा एक तरह ते बोल सकते माहौल है अहां दे आसपास या अहां दी जिंदगी दा तो उस पर उना बड़े ही प्यारे प्यारे गीत जेड़ा या कविता जेड़ा लिखी के तुहां तक पहुंचाई है अपनी मधुर ते आवाज ता आईया फिर ते चल देन उना दी तरफ कने थोड़ी अपनी गलबात जो और बढ़ांदे ने और जान देन उना दी जिंदगी दे बारे च ता उमेश जी जिया की तुहा वैसे तो तुहा सारा कुछ मैनेज करा दे पर थोड़ा जहां दे दोस्तां भी दसा जेड़ा अहां दे मतलब की बोली सकते कि जेड़ा महिला हैं जेड़ा मतलब घर गृहिणियां हैं तसे भी अपने आप उस तरह ते मैनेज करी पान जी तो हां गांदे भी हैं तो हां लिखदे भी हैं तो हां जॉब भी करा दे तो हां घर भी संभाल दे तो मतलब एक टाइम पर ये सारी चीजा एडजस्ट करना कितना आसान हुंदा कितना मुश्किल हुंदा या की है तो हां इसे मेंटेन कर दे
1: जी रचिका जी वैसे तो कुछ भी आसान भी नहीं है लेकिन करना लगा था
0: मुश्किल
1: नहीं है ना अगर मने जो सोच हो कि मैं करना है क्योंकि सबसे पहले जो कोई भी काम करना है अगे बढ़ने ताई सबसे पहले एक अपना त्याग देना पौंदा कुछ न कुछ चीजा का ठीक है और सबसे पहले बढ़ने ताई निंद्रा त्याग जेड़ा है करना पौंदा है ना दिखा तलो बच्चे अस मां बाबा पर होंगे ना थलो तस अपनी मर्जी उठते जो मर्जी करते कमा नहीं कमा लेकिन जलू कुड़िया के ब्याह हो जाते तो अपने सपने होंगे मैं करना है वो करना है तो एक भी गल हो आई है ना कि घर का माहौल डिफरेंट हो जाता घर कम भी कमा पौंदा थोड़ा बहुत बच्चे अगे बच्चे होंगे रोटी सब कुछ करना पौंदा ना इस तरह थोड़ा तो अपने एक टाइम टेबल जरा तंजो मैनेज करना पौंदा ठीक है ना जी हूं अस सोचिए कि हाँ 9 बजे उठ गएगा 9 बजे उठी करिए हाँ भी नौकरी भी करनी है देखा तो 4 दिन से देखा कोई नहीं करता देखा कोई नहीं करना चाहे अपनी माँ भी होंगी से सस भी होंगी भी 4-5 दिन तक कोई चाय चाय करगा ना फिर कोई नहीं करना सके घर चीज लड़ाइया भी होनी है इस तरह तो शौक है कि तुम नौकरी करनी है तुम अपना जितने तुम्हारी शौक करनी है इस तरह कुछ तुम जो भी करते हैं ना चाहे गवर्नमेंट जॉब है चाहे प्राइवेट जॉब है चाहे तुम अपनी अकेडमी खोली है कुछ जरूरी नहीं है अजकल बिजनेस भी है कुड़िया है ना कुछ भी करा ही है इस तरह जो तुम एक पहले चुस्ती फुर्ती अपने शरीर जरा एक हेल्दी एनवायरमेंट जरा बनाना पौना है ना अच्छा खाओ जल्दी सो जल्दी उठो है ना सवेरे जल्दी उठना पौना जल्दी सो थोड़ा फोन च थोड़ा अजकल अजकल जो वातावरण है साढ़े टाइम में तो फोन नहीं थे ना इतना ज्यादा नहीं था पर अजकल क्या है
0: फोन
1: बस फोना च व्यतीत करे तो मैं अजकल जनरेशन कुड़िया मुंडू जो भी है ना मैं ये बोलना चाहती कि फोन जोड़ा थोड़ा घट चलाना घट कर दिया देखा रील ना दिखा के तुम कितनी की रील ना दिखी लेंगे तुम तेन दिखी तंज मैं तो अपने बच्चे भी बोलती बच्चे ना दिखी कर क्या मिलना तंज ठीक है थोड़ा बहुत टाइम मिलता तो थोड़ा अपना इंटरटेनमेंट होता तो दिखा अच्छी चीजा दिखा तू सब कुछ अच्छा करा पर तू जो फोन च बड़ी रहेंगे तू कल कमांगे कल सोंगे तू 12 बारह बस फोन चलांगे तो तू सवेरे कल उठ गए अगर सवेरे नहीं उठ गए तो तू कुछ नहीं कर सकते क्योंकि देखो तुम घरे च है ना तो तुम घरे का कम भी करना ही पौना है ना
0: जी
1: अगर तुम 4 रोटियां तो बनाने पौनी है
0: बाहर भी होंगे तो
1: बनाना पौना बाहर भी होंगे करना तो पौना ही है ना तो इस तरह सबसे पहले कि अपने आप को अपना जो टाइम टेबल है तुम अस एडजस्ट करना सीखा मेंटेन करना सीखा जिंदगी ताई अगे बढ़ी सकते कने अपने थोड़ा बहुत अपने शरीर का खाने पीने का ध्यान रखा हेल्दी खा ता कि तुम ठीक रहन अगर ठीक रहेंगे तो ठीक कमांगे ठीक नहीं रहेंगे तो क्या कमांगे
0: है ना जी
1: अच्छा खाना जी अच्छा जो बिल्कुल हेल्दी खाना संतुलित भोजन लड़कियां ताई चाहे लड़के ना अपना ये नशे नुशे का त्याग कर अजकल तंबाकू बीड़ी सिगरेट नशा चिट्टा वगैरह इतना कुछ चल रहा तो बच्चे जो इन चीजा है थोड़ा अवॉइड करन कने पेरेंट्स बखे सोचन ताई कमाई सकते
0: जी
1: है ना जी
0: जी बिल्कुल उमेश जी तो जी है अगर हाँ गल कर जरा इस टाइम अगर हाँ गल प्रेजेंट की गल कर ता अजकल तो वैसे जी तो बोले कि फोन दे वखरे दा ज्यादा रुझान है जेड़ा ये लोक संस्कृति या परंपरा उन्होंने वखरे दा ध्यान बच्चे
1: दा है नहीं ना
0: कई जी पहले हुंदा बुजुर्ग दसदे रहंदे हे हुण बुजुर्ग दा साया कई जी अजकल किले किले रहना पसंद है लोका जो ज्वाइंट फैमिली दा तो शौक रहा
1: नहीं है
0: ता मतलब कि ए जेड़ा अहां दे कविता दे माध्यम दे अहां गल करन या लोक गायकी दी अहां गल करन तो तुहें क्या लगदा कि ए किस हद तक जेड़ा है संस्कृति है मतलब बच्चे ने जोड़ी पांगे
1: देखा जी लोक संस्कृति जोड़ना कोई बड़ी बड़ी गल भी नहीं है पर अजकल बच्चों से इंटरस्ट जो है ना अह आप खत्म करा दे जी ब्याह होंगे कुछ होंगे तो अजकल क्या रिवाज चली पिया वैसे डीजे लगाई डीजे लगाई दे डीजे च मिनटा च पंजाबी गाने चली पो एक मिनट लगा दे दूजे गाने तो बच्चे सारा भी इंटरस्ट खत्म हो गया है ना तो हाँ से दिन चलिए कि आपू ढोलकी चिमटे बजाते थे आपू नचते थे जिया नाट्य वगैरह करनी आपू गाना जब तुआ गांगे तो बच्चे सीखे है ना अगर तुआ गांगे कुछ नहीं करके तो बच्चे का सही दिखना है ना पहले दिखा जन्मदिन होंगे थे ना जन्मदिन होंगे थे तो क्या कर देती अखे बखे जनानिया आदि थी इन्हें कोई लालच नहीं होंगे था कि क्या पता कि तू जाना बच्चे चाहे एक आंडा करना बोलते जाए कर ना तो गीत गाई आने थी ना तो सिज्जे चने
0: जी
1: है ना तो सह बोलते शुभ समझते सचने है ना लुंगे चने ते ना सह देने कने ज्यादा ज्यादा भी दो दो लड्डू या कोई छिले पतासे होंगे थे ना दिंदे थे ना कने हूं सह एक बड़ा बड़ी शोर सदे बनी है है ना जी तक संजे वाले एक अच्छा बोलते ना पैकेज नहीं होगा पैकेज नहीं होगा तो नहीं बनाई सकते बोलना जी चार लोग सदन कि सदगे है ना ये शर्म जी संजे नहीं रखना चाहिए कने पहले पूजे थे गठी करानी पूजा करनी ब्याहिया पूजनी अजक बच्चे ब्याहिया का पता नहीं है क्या नहीं
0: बिल्कुल जी है ना जेड़ा जे मतलब बोल सकते जिन्हों का जो स्टेटस ठीक है तिना वास्ते तो ठीक हों पर जेड़ा बेचारे थोड़ा मिडल मतलब कि इतना एफोर्ड नहीं करी पाते उन्हें वास्ते मुश्किल
1: हाँ, मुश्किल है मतलब इतनी हाई फाई सोच मत रखा कि तुम अपने बच्चे ने जन्मदिन करना तो तुम शर्म करके कि हाँ चार लोग नहीं सदन तुम तो अपनी पुरानी संस्कृति जो जागृत करा या कुछ मत करा तुम चाहे एक हलवा चने बनाए लिया प्रसाद बनाए लिया तुम बस चने सेड़ी लिया संस्कृति द्वारा उजागर करा है ना तुहां चार गीत सुहाग गीत गाए दे जन्मदिन जन्म संस्कार गीत ही गाए दिया तो बच्चों का जन जन्म संस्कार गीतों का पता नहीं अगे दी अगे दी कुड़ियां तो कुछ पता नहीं है बिल्कुल पता नहीं है तो मतलब है कि तुहां कर गए इन चीजें जिया तुहां अगे टाइम सोशल मीडिया हो गया चाहे आकाशवाणी है चाहे टीवी है कुछ भी है कुछ दे कुछ भी माध्यम है चाहे संस्कृति तो अगे बढ़ागे ता ही अगे बढ़नी है
0: जी बिल्कुल तो उमेश जी हूं समय जेड़ा थोड़ा जहा हां जेड़ा अपने दोस्तां ते दूर जाने का धीरे धीरे होने आला तो मैं जाते जाते तुहाते पुछना चाहूंगी कि जेड़ा अज दे युवा है या बच्चे हैं छोटे छोटे तो उन्हां वास्ते तुहां क्या मैसेज देना चाहोंगे कि जे कविता मतलब कई जी बच्चे का इतना रुझान हुंदा नहीं है पर कुछ तो हुंदा है दवाई देंदे अपने सिचुएशन दे चल दे या फैमिली प्रेशर दे चल दे तो हम क्या कहना चाहोंगे उन्हां बच्चों वास्ते युवा वास्ते कि वो मतलब किया प्रेरित होन अपनी संस्कृति दे प्रति अपनी परंपरा दे प्रति या कविता दे प्रति या लोक गायकी दे प्रति
1: बिल्कुल रुचिका जी बच्चे जो नजके थे बच्चे हैं थोड़ा टाइम पहले तो सबसे बड़ी था जब शुरुआत करी करे थे जो अहंकारी थे बिल्कुल बच्चे ने पहाड़ी भाषा जी गल ही नहीं करनी है ना एक शर्म समझ दे के है ना बिल्कुल बोल दे जो अगर बच्चे हैं तो अपनी भाषा बोलना ही नहीं आंदी होंगी ना तो सुनना कहीं अगे गीत गाने बड़े
0: मुश्किल है
1: सबसे पहले बच्चे में यही मोटिवेशन देना चाहती कि तुहां अपनी भाषा जो बोलने ते शर्मा है ना बिल्कुल नहीं कि तुहां घरे बोले कोई घरे कोई आई है तो नहीं जी तुहां किसी पहाड़ी गल नहीं करनी कि बड़ बारी अंग्रेजी बनाए देने तुहां बच्चे ठीक है हर चीज जरूरी है अगर तुहाड़ा बच्चा चलो नर्सरी के जी चलता जाता तो अपने आप सी चीजें तो अपने आप बच्चा सीख ही लैंदा ना ऐसा कुछ नहीं है पर जलू घरे तुहां बच्चे ने बिल्कुल ही पहाड़ी नहीं बोलनी है बिल्कुल अपनी जो भी लोकल जिस लैंग्वेज बच्चा पैदा होया परिवेश च तीस च अपनी गल जिले जरूर करा कने बच्चे जरूर सीखा अगर बच्चा अपनी भाषा बोलेगा तो अगे अपनी संस्कृति जो भी अडोप्ट करेगा
0: बिल्कुल
1: है ना
0: जी
1: अगर भाषा बोलना ही नहीं आता मतलब बच्चे क्या सीखना
0: जी बिल्कुल जी बिल्कुल दोस्तों बड़ा ही प्यारा दे मैसेज जेड़ा उमेश जी देता है कि सचमुच अज दा जेड़ा माहौल है ना बच्चों की भी गलती नहीं है पेरेंट्स ही कुती ना कुती अगर बच्चे थोड़े अगर कुसी अगर कोई परौने आई है तुहां दे घरे कोई गेस्ट आई है ना तो तुहां उन्हां सामने अगर वो पहाड़ी च बोल गए तो बाद दे जे पेरेंट्स उन्हें डांटना कि तुहां पहाड़ी च क्या बोले तुहां तां दी इमेज जेड़ा से लोग कर देती है ना कि तुहां ते हिंदी इंग्लिश स्कूल ना कहे पढ़ा दे जे अगर तुहां पहाड़ी च गल करनी तो पहाड़ी बोलना कोई शर्म की गल नहीं है अगर तुम वाकई अपनी संस्कृति जो बढ़ाना चाहते हैं अगे पहुंचाना चाहते हैं सुरक्षित तो उस वास्ते अहें अपनी संस्कृति ने जुड़े रहना भी तो बड़ा जरूरी है तो बच्चे जरूर सिखा जेड़ा हिंदी इंग्लिश कोई बुरी गल नहीं है लेकिन अपनी संस्कृति ते दूर मत करा तो जिया उमेश जी भी पूरे पूरे एफर्ट्स करा दे कि अपनी संस्कृति जो बचाने वास्ते जरा एक कविता लिखा दे, कविता दे माध्यम से संदेश जरा ऐसा तो सारे तक पहुंचा दे, चाहे गीता दे लोक गीता दे माध्यम ने पहुंचा दे, तो ये छोटे छोटे एफर्ट्स जरा ने यहां सारे करना चाहिए। तो अहां दा तो सबसे पहले ये कि अहां अगर अपनी यहां बोलिए च बोलने च शर्म महसूस करके तो हां गीत कहना है कविता तो फिर बड़े दूरे दी बात है ना। तो ये बड़ा प्यारा दिया मैसेज है। तो उमेश जी बड़ा अच्छा लगा तो कहने गल करी के कहने तो हां दे जेड़ा विचार जेड़ा लोका तक पहुंचाई के कहना बड़ा प्यारा दिया सफल जेड़ा तो हंदा एक मतलब कविता लिखने दा या लोक गायकी दा जेड़ा ए रिया है कहना अगे भी ये इं रहा है कहना लोका दा सपोर्ट जेड़ा सा तो जो फुल ऑन मिल रहा है ये हम उम्मीद कर देना। ता बड़ा बड़ा धन्यवाद तो हंदा हाथ
1: धन्यवाद जुड़े
0: कहना जाने जाने एक प्यारा दिया सुहाग जेड़ा सा मैं दोस्तों तक जरूर पहुंचाना चाहूंगी तो हंदी आवाज च
1: सुहागी सुनने की कुछ और
0: जेड़ा तो पसंद
1: एक मैं जन्म संस्कार गीत सुना
0: जी बिल्कुल।

0: जन्म संस्कार हसी मजाक दे गीत ना जी ये भाविया दे जी हसी मजाक है एक हसी मजाक ना जी बच्चा पैदा हुंदा था ननाना अपना मंगदियां थी खुशिया दा जन जन मजाक कर दिया की बीरता मेरा बड़ा अच्छा मेरे पापो मेरी सन कल गा दे की मैंने नाम लुटनाई एक हसी मजाक है ऐसा नहीं है एक मतलब एक
1: जी पहले सुहाग चाहे जो भी है मतलब की वो बोलते ना की जिया जिया रिचुअल
0: हांजी हांजी बिलकुल मजाक भी कर लेंदे थे गीता भी गाई लेंदे थे इस तरीके गीत बनाए थे बड़ा पुराना माहौल क्रिएट करने दे बड़े साधन लोग सुनने दे इच्छुक होन
1: तां जी जी लोग बोलते ना म्यूजिक यहाँ अगर कोशिश कर गए ना तो जे कोई ना एक जेड़ा होंदा कुछ लोगों का इंटरेस्ट सारे तो नहीं बोली सकते अंदर जेड़ा सा इंटरेस्ट होंदा सा जरूर जागदा होंदा उन्होंने अंदर भी सा फिर जिज्ञासा जागदी है कि नहीं यहाँ भी कुछ दे दिया यूनिक ट्राई कर अज दी पीढ़ियां उन्होंने वास्ते तो यूनिक ही है
0: बिल्कुल, बिल्कुल,
1: है ना ता बिल्कुल बड़ा अच्छा लगा तुम चुके गल बात करी के ता दोस्तों हूं वक्त हो तो सारे ते अलविदा लेने का दिया हूं इजाजत अपनी रेडियो दोस्त रुचिका जो फिर होनी है तो कन्ने मुलाकात एक नई गल बात कन्ने तद तक तो सारे इयां ही हंसते रहा मुस्कुराते रहा कन्ने सुनते रहे अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने पन दी।

0: गोरिया
1: गोरिया
2: गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: बैठिए मैडम बैठिए। देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो?
5: अरे बेटो तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियों कौन है?
4: लेकिन भाई साहब आप कौन है?
5: जी मैं इसका बाप हूँ।
4: आप इसके बाप हूँ? महमूद का बेटा नहीं तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है?
6: जी नहीं।
4: तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें?
1: चलान तो कटेगा भैया तेरा,
4: और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए।

नमस्कार दोस्तों, प्रेम विश्वास और भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पावन पर्व रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास, सुरक्षा और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है।

रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। हर कलाई पर सजे प्यार का धागा और हर चेहरे पर मुस्कान रहे। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ रेडियो गुंजन धर्मशाला की ओर से आ रहे

0: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी?
1: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
0: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए। कौन सा स्टाइल चाहिए आपको? ये देखिए, पिछले महीने मिश्रा जी की बेटी की शादी के लिए सिया था।
1: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए। थोड़ा सिंपल दिखाइए।
0: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
1: चुन्नी के लिए।
0: ये अपनी चुन्नी?
1: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
0: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
2: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी। पंडित जी ने इसी इतवार का मुहूर्त निकाला है, तो हो तो जाएगा ना तब तक।
0: अच्छा, 12 साल की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
2: नहीं, क्यों?
0: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
2: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
0: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
3: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
0: ना हम सीएंगे, ना किसी को सीने देंगे।
4: जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा मित्र, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं।

0: इतनी तेज चला रहा था कि सामने से एकदम से ट्रक आ गया। तो ट्रक को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से लेफ्ट ले लिया। तो जैसे ही लेफ्ट लिया, सामने से गाड़ी आ रही थी और गाड़ी में जाके बाइक लगी और बाइक पूरी खत्म हो गई।
1: बेबी बाइक को छोड़ो, आप बताओ आप बचे थे कि नहीं?
0: तब तो बच गया था, लगता है अब नहीं बचूंगा।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ही है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: गोरिया
1: गोरिया
2: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
3: बैठिए मैडम बैठिए, देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो, पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था, एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो।
4: अरे बेटो तू यहाँ क्या कर रहा है, और ये दोनों लड़कियां कौन है?
3: देखिए भाई साहब आप कौन है?
4: जी मैं इसका बाप हूँ।
3: आप इसके बाप हूँ? महमूद का बेटा नहीं तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है?
5: जी नहीं।
3: तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें?
6: जवान तो कटेगा भैया तेरा,
3: और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा।

बंधन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास, सुरक्षा और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है।

रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। हर कलाई पर सजे प्यार का धागा और हर चेहरे पर मुस्कान रहे। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ रेडियो वंचन धर्मशाला की ओर से आ रहे

0: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी?
1: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
0: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए। कौन सा स्टाइल चाहिए आपको? ये देखिए, पिछले महीने मिश्रा जी की बेटी की शादी के लिए सिया था।
1: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए। थोड़ा सिंपल दिखाइए।
0: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
1: चुन्नी के लिए।
0: ये अपनी चुन्नी?
1: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
0: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
2: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी। पंडित जी ने इसी इतवार का मुहूर्त निकाला है, तो हो तो जाएगा ना तब तक।
0: अच्छा, 12 साल की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
2: नहीं, क्यों?
0: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
2: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
0: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
3: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
0: ना हम सीएंगे, ना किसी को सीने देंगे।
4: जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा मित्र, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी खामोशी में ही ईश्वर का वास।
5: मम्मी जी क्या कह रहे हैं, बचपन में आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था।
2: हाँ, जब मैं 12 साल का था ना, तो मैं पापा को बिना बताए उनकी बाइक लेके घर से बाहर निकल गया, और मैं बाइक इतनी तेज चला रहा था कि सामने से एकदम से ट्रक आ गया। तो ट्रक को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से लेफ्ट ले लिया। तो जैसे ही लेफ्ट लिया, सामने से गाड़ी आ रही थी, और गाड़ी में जाके बाइक लगी और बाइक पूरी खत्म हो गई।
5: बेबी बाइक को छोड़ो, आप बताओ आप बचे थे कि नहीं?
2: तब तो बच गया था, लगता है अब नहीं बचूंगा।

नमस्कार श्रोताओं, सचिन कपूर हा। और आज त्वारा आला दिन हा, आज पूरा दिन है गया। सो घर कम कमाए बुना, कुछ मनु ये प्लान करू बुना की आज है एरा घूमना चल देन, आज है मंदिर अंदर घूमना चल देने, या करका हुरदा घूमना किया सो चल देन, है ना। त्वार किया सो अमूमन मैक्सिमम बंदे के ना सो परिवार वास्ते दिन दे हिन शोतो, है ना। और परिवार जो त्योहार के सो समर्पित बंदा है, और तुसु सभी वास्ते कार्यक्रम भी समर्पित है त्योहार वाले दिन वास्ते भी। मेरा नाम सचिन कपूर है और रेडी गुंजन धर्मशाला थो कड़े करता है। होप सो तो सब खरे भुने हिन, बढ़िया भुने हिन और अपने घरे खुश और तंदुरुस्त भुने हिन। आगाज कर लेते हैं कार्यक्रम रे इस गीता थो, और तथों बाद फिर जरूर गलबात कर ले तुसु सभी सोगी।

एफएम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो ऐसा बी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी का पगान सो चल रही है। तो श्रोतो आज हसु धारा रे गाल करने हैं कजो की पिछले कुछ दिन तो है टॉपिक धारा रा चुनो कर दे थी और इनके बहुत सारे श्रोता हसु की कनेक्ट भी बच्चों कर दे थी है और सब अपनी अपनी टिप्पणी की है सो करो भी कर दे थी है धारा पर जो की बड़ी ठीक टिप्पणी थी कजो की मनो है एनालाइज करो हा इनके सियाने एनालाइज करो हा खासकर सियाने हसु की जुड़ते हैं तिया एनालाइज करो आ कि पिछले कुछ साल थों किया धारा अंदर सो रौनका बेनारी ने जो रौनका पहले बुंदी थी कोई नरी शो क्या कारण भुवन जरूर गलबात कर ले लेकिन इस गीता थों बात

सचिन कपूर हा रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी है ट्यून खुर रहा और इंदी अपनी गप्पा तो है सब हुनु करते हैं इन शोतों तो है आज धारा री गल हो रही है और दसू कर दे थू कि इंदे सियाने के सो सियाने एनालाइज करो कि पिछले दुई चूर साल तो नहीं है भाई तस हिसाब बारा धारा अंदर रौनक मेला नहीं है है ना बहुत सारी चीज है सो है अपने कल्चर मंच श्रोताओं छड्डू करते हैं बहुत सारी चीज हैं जाए सो इंदा है जितना भी बल्ली लैन लेकिन तो है अपने ज्यादा दूर ना गाना इंदे बहुत जगह है अपने कल्चर जो कि सो बहुत अच्छे तरीकों की फॉलो कर दे और ताई शायद इंदा कल्चर किया सो रिच कहलंदा हा और ताई इंदा कल्चर किया इंदा लान किया सो थोड़ा यूनिक कहलंदा हा और मनु असू फॉलो करते हैं श्रोतों कारण ये भी लेकिन अब इंदे कल्चर मगर खनकर का किया ये चीज भी तो है रो करते बुने की बड़ी चीज सो इंक्लूड हुई ना जो कि इंदे कल्चर में ना थी है ना क्या हुई अक्ता स्टेज हुआ इंक्लूड जो कि इंदे कल्चर में बिल्कुल भी ना तो है कसकीरा हो रही रहा कल्चर किया सो अपना ही लो हा श्रोतो की स्टेज है करना लगे हैं स्टेज में पहले तो चलो जे नो नो स्टेज लगे करना था नुआचड़ी भी लंदे थी है ना अज भी लंदी इंदी बहनी के सो अज भी नुआचड़ी लंदी लेकिन बहुत सारी ऐसी भी हैं जो कि नुआचड़ी अंदर ना ठीक लगता यार क्या बोलते हैं लहंगा लाई लिया है ना तो एक कुछ ऐसी चीजा हिन जो है इन दे कल्चर माना थी और है अडोप्ट करी हिन अदर कल्चर था जरूर गल बात कर ले लेकिन लेके चल दे तू सब भी इस गीत तरीके नारी

एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है ट्यून कर रो रहा हूँ सचिन कपूर रहा तुम अपना आरचे अह गल करू कर दे थी पहले धारा री और धार भी अक श्रोतो इंदे जीवन रा एक अहम हिस्सा बुंदा थू है ना याद करा सियाने जो हुनु कर दे उन्हें सो वल्लू कर दे उन्हें सच वल्लू दा सचिन कपूर बड़ा अहम हिस्सा बुंदा थू इंदे जीवन रा कि यह दारो को गंदे थी है अपने गोरु बच्चू लेकर है ना दारा रासू मतलब खान पीन इतना अच्छा बुंदा थो पानी इतना स्वच्छ बुंदा थो और जो भी जाए सो माल बोआ जाए सो गोरु पैरू कोई भी बुन और मनो बोआ जहने भी दारा थो उस दा थो शो थो तो एंड हट्टा कट्टा पूरा या मतलब नौजवान गबरू बन कर इंदा थो जाए बाल दिखो ना बोआ है पूरा ही हट्टा कट्टा गाय को ना बुन पूरे गैन लगती थी शो थो कजो की दारा रा सब चीजा के खान पीन सब चीजा के ना सो स्वच्छ बुंदी थी शो थो लेकिन अब है इस जुड़ाव थो भी किया सो है दूर बुच्छू कर दे इन शो थो ए इनकी जिंदगी रा बड़ा अहम हिस्सा थो लेकिन आज की डेट मा इनकी जिंदगी रा कोई मतलब अहम हिस्सा बचू ने अह अपनी धारा के ना सो सोचा तो है कि बर्बाद करी थी ने खत्म करी थी ने और तुसु मनना ने करोड़ रुपया देकर ही तुसु ऐसी जगह ना मोड़ सकते जो इंदी धारा मंज थे शो तो जो इंदी धारा मंज आज भी हाँ तुह करोड़ों कमाई लिया करोड़ों रुपया खर्च करके तुह गलत है तुसु ए आले स्वच्छ हवा स्वच्छ खान स्वच्छ पीन स्वच्छ पानी कदी ना मोड़े राजे गलवाता चलती रहने इन सचिन कपूर सोगे लेकिन चल देने इसकी तारीख नारी

तो ऐसा भी ट्यून कर रहे हैं इस समय एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेडी गुंजन धर्मशाला और आऊं सचिन कपूर हर्षोत्तम कार्यक्रम जो लेकर चलते हैं थोड़ा करे और हगों और गलबात आज बड़े दिलारी लगू कर दे सब भी वे दिलारी लगू कर दे मुझे लगता है इन सियाने रे खास कर दिलारी लगू कर दे जो कि इन जो सियाने इनसो कभी भी न चंदे थी यकीन दी धारा इस प्रकार हो गई बर्बाद हूं यह है कसी व कल्चर किया सो अडोप्ट करी लैन इन सियाने इना कदी भी ना चंद ऐसा कदी भी ना चंद लेकिन फिर भी जो जनरेशन है सो डे बाय डे चेंज हो चुके करते हैं डे बाय डे अपने कल्चर में भी किया सो बहुत सारी चीजें इनपुट करू करते हैं जो कि शायद वो ना करना चाहती इनके कल्चर जो कुछ करने भी जरूरत नहीं है इन सियाने बहुत अच्छी विरासत किया सो रख रहे लेकिन यह कसकी नकस की जरिए जाए सो गीत रे माध्यम तो बोआ जाए सो शादी विवाह रे माध्यम तो बोआ जाए कोई अन्य और माध्यम बोआ है अपने कल्चर जो कि असुकर खन का खा डिस्टर्ब किया सो जरूर करू करते हैं एग्जाम्पल में दी इतने श्रोतों की कस प्रकार होगी क्या सो है अपने कल्चर जो डिस्टर्ब करू करते हैं एग्जाम्पल सब भी मोटा एग्जाम्पल में दिता किया है स्टेज के सो अडोप्ट करू करते हैं और ठेरी बजत हो किया सो इन द कल्चर थोड़ा करे सो कल्चर ना रे वो करता है दुई गल ऐह धारा मंज रहना खाना की सो छड़ी दिता है श्रोतो है ना आज भी कितने श्रोता के इनसो कॉल करू कर दे और सो दसू कर दे इनकी कस प्रकार होगी क्या सो है रहना खाना छड़ी दिता है ता इन दी धारा के ने सो खाली पेगी इन श्रोतो इस सोचने रे गल असुई थी पर दमाग का मंज जोर देने रे गल किया ये अवश्य है श्रोतो बहरहाल तो सब बन रहे ने इस समय आर्टिस्ट सचिन कपूर सोगे अय्या कार्यक्रम मंच होने दे तो सभी जो ये प्यार दिया गीत

हिंदी अपनी गप्पा जो

तशोतों अबे धारामंच किया सो कयो इंदे मनु किया सो घटरन दे हिन शोतों इगल बड़ी जरूरी हा शोतों जानना कोई लगे घट रहे ना जी बिल्कुल शोतों तू दसना चाहता कि अबे शोतों धारामंच किया सो मनु घट कतियो गाना लगे इति वास्ते इति पीछे आके ऐसे कई मोटे सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणी कारण हैं जो पर्यावरण थो जुट रहे हैं शतों आधुनिक दौर में पहाड़ी भी कठिन जिंदगी और बदलीं दे इस संसाधना भी वजह थो वे गद्दी समुदाय वे मनो के अबे स्थाई जीवन जो ज्यादा प्राथमिकता दिन दे हिन है ना जी तशो तो बहुत सारे कारण हिन कि शायद यह तस वजह थो अपनी धारा जो कि ऐसो छड्डू कर दें लेकिन अबे तो सुख सुविधा और बड़ी चीज कहने टेक्नोलॉजी की ऐसो बड़ी हाई स्तर पर चली कुछ हो रही है और अबे तस हिसाब बर मुझे लगता नहीं है लेकिन फिर भी इन सियाने के सोना हाई टेक्नोलॉजी आड़े थी ना इसो मतलब स्टोर व्हाट्सएप आड़े थी है लेकिन फिर भी तीन अपनी जिंदगी की आसो व्यतीत कर रही है धारा मंच सोची जब तो सोचा फिलहाल तो बन रहे सचिन कपूर सो गया गया लेकिन चलते ने इस गीत तारीख नारी तो शो तुम कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा चल रही ना और आज सचिन कपूर सो गी तो है इंदी अपनी गप्पा जो हुनु कर देने है हुन दे रहे बन दे रहे आसु हो गए जुड़ दे रहे आसु हो गए और कार्यक्रम रा आनंद लेंदे रहे आसु सो गए।

तशतों धारारी गाल की असो है करी है और बहुत सारे मुद्दे के न सोहिन नागान एरे भी जी की मेदस है, लेकिन अह तब ये चंद हिन किया है अपनी जो इनकी पुरानी चीज हैं तीनों संभाली कर रखना, जो इनकी बुजुर्गरी दितरी है सो निशानी हिन तीनों है संभाली करी रखना, तीनों है पिरोई करी रखना और त्यारी देखभाल किया सो है जरूर करना है ना, अपनी चीज जो अह संभाली करी जरूर रखना, कसकी और कल्चर किया सो है फॉलो ना करन, कजो कि इनका अपना ही कल्चर किया सो बहुत रिचा और बहुत यूनिक हाश होता हूँ, सो अपने कल्चर जो फॉलो करन और सियाने री गल जरूर मन, सियाने भी चीजा जरूर संभाले करे रख। इन्या शब्द था, आऊं सचिन कपूर ले लेने तो सुथो इजाजत, नमस्ते धर्मशाला।

नमस्कार, 91.2 MHz पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। जल शक्ति विभाग में होगी 4000 मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती। SOS की परीक्षाएं 17 से हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी किया शेड्यूल। इसरो अब नहीं बनाएगा कोई रॉकेट। रूफटॉप सोलर सिस्टम ग्रिड से जोड़ना अब और आसान। अब समाचार विस्तार से।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जल शक्ति विभाग में जल्द ही मल्टीटास्क वर्कर्स के 4000 पद भरे जाएंगे। ये बात उन्होंने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक भुवनेश्वर गौड़ के सवाल के जवाब में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण, जल शक्ति विभाग और बिजली बोर्ड में क्रियाशील रिक्त पदों को भरा जाएगा। उनका कहना है कि सरकार बिजली बोर्ड के अधिशासी अभियंता के माध्यम से बिजली मित्रों की भर्ती करेगी। मनाली विधानसभा क्षेत्र में भी बिजली मित्रों की भर्ती होगी। इसमें स्थानीय युवकों को तरजीह दी जाएगी। वेलदार के पदों के लेकर मुख्यमंत्री ने साफ किया कि इन्हें पूर्व सरकार के वक्त ही समाप्त कर दिया गया है तथा इनके स्थान पर MTW की नीति बनी है। हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। इसके तहत 122 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश में 80 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें से 34 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि 21 स्थानों पर आगामी एक माह के भीतर चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर लिए जाएंगे। शेष 25 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। ये जानकारी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि ये चार्जिंग स्टेशन HRTC के बस अड्डों और वर्कशॉप में स्थापित किए जा रहे हैं। इससे विभिन्न रूटों पर संचालित इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग सुविधा उपलब्ध होगी और उनके संचालन को और गति मिलेगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के साथ साथ उनके लिए आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार प्रदेश में आधुनिक, किफायती और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। HRTC इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए आवश्यक सुविधाओं को चरणबद्ध तरीके से विकसित कर रहा है ताकि यात्रियों को बेहतर और आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वाराणसी में आयोजित फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया के 56वें वार्षिक अधिवेशन में देशभर में आए होटल व्यवसायियों, ट्रेवल एजेंटों, टूर ऑपरेटरों और पर्यटन उद्योग से जुड़े अन्य प्रतिनिधियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने पर्यटन उद्योग से जुड़े सभी लोगों से आग्रह किया कि विदेश विदेश के पर्यटकों को हिमाचल आने के लिए प्रोत्साहित करें तथा अपने टूर पैकेज में राज्य के नए और अनछुए पर्यटन स्थलों को भी शामिल करें। उनका कहना है कि हिमाचल की शांत और सुरक्षित घाटियां, स्वच्छ हवा, निर्मल जल, बर्फ से ढके पहाड़, हरे भरे जंगल, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और गांव की सरल जीवन शैली इससे देश और विदेश के पर्यटकों के बीच एक अलग पहचान प्रदान करती है। आज का पर्यटक केवल पारंपरिक पर्यटन स्थलों तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वो शांति, प्रकृति, स्थानीय संस्कृति, वेलनेस, प्रामाणिक अनुभव और स्थानीय लोगों के साथ जुड़ाव को भी प्राथमिकता दे रहा है। हिमाचल इन सभी नई पर्यटन आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखता है। उनका कहना है कि सड़क, बिजली, पानी और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार से राज्य के दूरदराज क्षेत्र के पर्यटन स्थल भी अब अधिक सुगम हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यटकों को हिमाचल के अनछुए क्षेत्रों, स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली से करीब से परिचित करवाने के लिए अनुभव आधारित पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। इसके साथ ही कारवा पर्यटन और वीकेंड पर्यटन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। महिलाओं के लिए हिमाचल प्रदेश को सुरक्षित और स्वागत योग्य पर्यटन गंतव्य बनाने के उद्देश्य से शी ट्रैवल नीति तैयार की जा रही है। सरकार महिलाओं को होम स्टे, स्थानीय खाद्य व्यवसाय, हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पादों और पर्यटन से जुड़े स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए महिला आधारित पर्यटन उद्यमिता को भी बढ़ावा दे रही है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के SOS की 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 17 सितंबर से शुरू होंगी। इस दौरान पूर्ण विषय रीअपेयर, श्रेणी सुधार, विशेष अंक सुधार और अतिरिक्त विषय की परीक्षाएं शामिल होंगी। इन परीक्षाओं का आयोजन सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। बोर्ड ने परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। 8वीं कक्षा की परीक्षाएं 17 से 24 सितंबर, 10वीं कक्षा की 17 से 28 सितंबर और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 17 सितंबर से 6 अक्टूबर तक रहेंगी। इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। 10वीं और 12वीं कक्षाओं के परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं 8 से 17 अक्टूबर तक आंतरिक रूप से सभी राजकीय और संबद्धता प्राप्त
विद्यालयों में स्थापित अध्ययन केंद्रों में संबंधित विषय के अध्यापक द्वारा स्थल पर ही प्रश्न पत्र सेट करवाकर संचालित करवाई जाएंगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अब तक के सबसे बड़े ढांचागत बदलाव की तैयारी कर रहा है। इसरो अब खुद रॉकेट बनाने का काम धीरे धीरे बंद करेगा। आगे रॉकेट बनाने की जिम्मेदारी निजी कंपनियां और कुछ सरकारी कंपनियों को दी जाएगी। इनस्पेस के चेयरमैन डॉक्टर पवन गैनका ने बताया कि इसरो अपने पारंपरिक काम जैसे लॉन्च व्हीकल और आम सैटेलाइट बनाने का जिम्मा धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर और पीएसयू को सौंपने जा रहा है। इसरो अब रिसर्च, नई टेक्नोलॉजी, वैज्ञानिक मिशन और जरूरी स्पेस सिस्टम पर ज्यादा ध्यान देगा। इस बदलाव का मकसद देश में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाना और स्पेस सेक्टर की को तेजी से आगे बढ़ाना है। हिमाचल प्रदेश में घरों

उसे बिजली ग्रिड से जोड़ने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया को किसी एक माध्यम तक सीमित नहीं रखा गया है। उपभोक्ता डाक के माध्यम से संबंधित कार्यालय में स्वयं जाकर ईमेल अथवा निर्धारित आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के लिए निर्धारित फॉर्म एक बिजली वितरण कंपनी की वेबसाइट और उसकी अधिकृत कार्यालयों में उपलब्ध रहेगा। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

जी श्रोताओ, शुरू हो गया है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला और 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला करता है आप सभी का स्वागत।

और इसी के साथ आज भी हम आप सभी को चांद पे लिए चलेंगे। दोस्तों, चांद का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। कैसे कैसे है हम आगे जब कार्यक्रम में बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। और शुरू हो गई है, कही है हमारी आज की संध्याकालीन सभा। तो चलिए, चांद पर तो जब जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन श्रोताओं, आप सभी को, जिन भी जो भी श्रोता हमारे किसी न किसी वजह से आज का ये खास दिन मना रहे हैं, उन सभी श्रोताओं को बहुत बहुत मुबारक हो रेडियो गुंजन परिवार की ओर से। वो दिन वो कोई भी हो सकता है, किसी का जन्मदिन हो सकता है, किसी की एनिवर्सरी हो सकती है, या कभी आप फर्स्ट डेट पे गए थे वो हो सकता है, कुछ भी सेलिब्रेशंस आप करते होंगे आज के दिन, तो उसके लिए आप सबको मुबारक हो। श्रोताओं, आज है 23 अगस्त। तो देखो भाई, कब अगस्त का महीना चढ़ा था, पहले दिन, जी हाँ, पहली तारीख को मॉर्निंग ड्यूटी मैंने ही की थी, मुझे आज भी याद है। और ऐसे कई महीने चढ़े, लेकिन धीरे धीरे धीरे हम साल के आखिर में पहुंच ही जाते हैं, और यही दस्तूर है। दोस्तों देखिए, आज भी आप कितने खुश थे ना सुबह सुबह कि भाई संडे है, मौज मस्ती करेंगे, आज तो घर में रहेंगे या फिर कहीं घूमने जाएंगे। लेकिन सुबह 9:30 बजे ही मौसम ने जो अपना नज़ारा दिखाया है ना भाई, दिन के वक्त ही अंधेरा छा गया था। और सच बताऊं कि उस अंधेरे को देख करके ना थोड़ी सी मायूसी भी हुई थी, और वो इसलिए क्योंकि जब ऐसे ही दिन लगातार लगातार लगातार चलते चले जाते हैं ना, तब एक मोनोटोनस सा माहौल बन जाता है, चाहे वो मौसम हो या फिर हमारा अपनी तबीयत हो, तबीयत खराब हो, हर दूसरे दिन खराब हो जाए, तो ऐसा लगता है ना कि भाई अब थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। तो हाँ, ये मौसम चेंज लाया भी, कितने बजे, देखो 9:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक तो इसने मूसलाधार बारिश की है, थोड़ा सा रुका 11 बजे के करीब, और उसके बाद फिर धीरे धीरे धीरे 1:30 बजे के करीब क्या शानदार धूप निकली, और उस धूप में हमने जो सुबह के कपड़े धोए थे ना, उन सारे कपड़ों को सुखाया। तो जब मैं कहती हूँ कि धर्मशाला का मौसम बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, हमें बिल्कुल नहीं पता लगता है कि क्या होने वाला है आगे, अगर चाहे जो हमारा मौसम विभाग है वो कुछ भी बता दे या कुछ भी ना बताए, फिर भी हमारे यहाँ का मौसम का बिल्कुल पता नहीं लगता है। आप सहमत हैं ना मेरे साथ? तो मौसम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि आज तो धर्मशाला में गरज के साथ बारिश और तूफान होगा, जो कि हुआ, और मॉनसून के कारण दिन भर रुक रुक कर बौछारें पड़ने और बादल छाए रहने की पूरी संभावना थी आज। अभी फिलहाल तो जब मैं स्टूडियो की तरफ आ रही थी तो बादल फिर दोबारा से छा गए थे, और अगर जब मैं वापस जाऊंगी ये ड्यूटी करके, अपना पूरा बातचीत करके आप लोगों के साथ, तब कैसा मौसम होगा तब देखी जाएगी। खैर, अभी तो हम इन सभी चीज़ों के साथ बढ़ते हैं आगे को, और आपको सुनवाते हैं।

तो भाई चांद के पार तो हम नहीं आपको लेके जा सकते हैं, हालांकि मैंने कहा ज़रूर था कि चलो आपको चांद के पार लिए चलते हैं, गीत ही वैसा था ना। पर असल में अगर देखा जाए तो हम चांद के पार नहीं, लेकिन हाँ चांद तक ज़रूर जा सकते हैं। श्रोताओ आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, और हमारा ये रेडियो स्टेशन आज आपको लेके जाएगा चांद तक। पता है क्यों? आज है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस।

और क्यों है ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आज? क्योंकि चंद्रयान 3 जो मिशन 3 था वो आज पूरा हो गया था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा था चंद्रयान 3, जिससे कि भारत चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला 4th देश और इसके दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित कर दिया। इससे पहले की सफलताएं अगर आप जानना चाहें तो 2019 में इसरो का चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया था।

और आज के दिवस की कुछ और खास राजनीतिक या ऐतिहासिक घटनाएं हम आपको बताते हैं। 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला और हैदराबाद के निजाम को भारतीय संघ में विलय करने की कड़ी कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी दे डाली। 1933 में महात्मा गांधी को पूना सिविल अस्पताल में सरकारी हिरासत से रिहा कर दिया गया था, जहां उन्होंने लंबे समय तक भूख हड़ताल की थी, जिससे कि उनका स्वास्थ्य गंभीर रूप से खतरे में पड़ गया था। 2007 में यूनेस्को ने ऋग्वेद की 30 दुर्लभ पांडुलिपियों को अपने विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल कर लिया। और श्रोताओं, बस अब कार्यक्रम में समय हो गया है एक और म्यूजिकल ब्रेक का।

और ये जो गीत है ये आ रहा है जीने की राह फिल्म से, उषा मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ें।

जी, कभी ऐसा देखा है ना आपने भी आसमान में कि तारे हों पर चांद ना हो? तो ऐसा ही लगता है कि शायद ये सभी जो हैं वो चांद को ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं। 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

तो श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चंद्रयान जैसे मिशन सीधे साधे चांद तक नहीं जाते हैं। इसरो रॉकेट की मदद से यान को पहले पृथ्वी की कक्षा में भेजता है, फिर गुरुत्वाकर्षण और ईंधन की ताकत से उसकी कक्षा को बड़ा करके धीरे धीरे चांद की ओर बढ़ाया जाता है।

सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से शक्तिशाली रॉकेट LVM3 या PSLV यान को अंतरिक्ष में भेजता है। अब यान तो सीधे चांद पर जाता नहीं, वो पहले पृथ्वी के चारों ओर गोल चक्कर लगाता है और अपनी रफ्तार को बढ़ाता है। और धीरे धीरे इंजन चलाकर यान को पृथ्वी से दूर लंबी कक्षाओं में भेजा जाता है। एक तय समय पर यान को पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकाल करके फिर चंद्रमा के रास्ते पर डाला जाता है।

और चंद्रमा के पास पहुंचने पर यान का गुरुत्वाकर्षण उसे अपनी ओर खींच करके चांद के चक्कर कटवाता है। फिर अंत में लैंडर चांद की सतह पर धीरे धीरे उतरकर इतिहास रचता है।

जैसे रचा गया था 2023 में आज ही की तारीख को। तो कैसी लगी फिर आपको ये जानकारी? तो देखिए फिर हमने कर दिया ना अपना वादा पूरा, पहुंचा दिया ना आपको चांद पर, और वो भी बिल्कुल तरीके से। अब आप समझ गए हैं ना कि चांद पर पहुंचना इतना आसान नहीं होता है भाई, बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी चीजें रास्ते में आती हैं। और अगर इससे भी ज्यादा समझना चाहें आप, तो फिर ऐसी पढ़ाई कीजिए या फिर थोड़ी सी और सर्च कीजिए, तो आप और ज्यादा समझ पाएंगे। खैर फिलहाल तो कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे एक और खूबसूरत मनमोहक सा गीत।

0: डाउनलोड sarigama.com से।
1: जख्म फिल्म का ये गीत है अलका याग्निक की आवाज।

हाँ तो श्रोताओं, जब कोई भी अपना प्यारा हमें याद आता है या वो हमारे सामने आ जाता है तो हमें वाकई में याद आता है कि आज गली में चांद निकला है, क्योंकि बाहर देखता ही कौन है, है ना? या फिर उसको चांद की उपमा दे दी जाती है। तो 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। दोस्तों, एक वक्त था जब हम कहते थे चंदा मामा दूर के, लेकिन 23 अगस्त 2023 को हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने ये कह दिया कि चंदा मामा तो बस एक टूर के। टूर मतलब समझते हैं ना आप लोग भी तो जाते हैं ना अलग अलग टूर्स पे, कभी किसी देश, कभी किसी और जगह। मैं तो कहती हूँ वैसे घूमने फिरने के लिए ना अपने देश को ही चुन लिया जाए तो वो भी कम है, सारी उम्र भी नहीं घूम पाएंगे आप। बाहर देश विदेश जाने की क्या जरूरत है। और आज तो रेडियो के माध्यम से हम आपको लिए चल रहे हैं चांद पे। तो आज से ठीक 3 साल पहले इसी दिन शाम के 6:04 पर जब भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर उतरा जहां दुनिया का कोई देश पहुंच नहीं सका था, तो पूरे ब्रह्मांड में भारत का डंका बज गया। जिस जगह पर हमारा विक्रम लैंडर उतरा था उसे आज हम शिव शक्ति पॉइंट भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज का पूरा शो इसी चांद और तिरंगे के नाम। बने रहिएगा मेरे साथ यानी रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

जी दोस्तों, चांद के पास जो सितारा है वो तो हसीन लगता ही है ना। देखते हैं आप उस सितारे को जो चांद के पास होता है और कितना चमकदार होता है वो सितारा।

और ये जो गीत अभी आपने सुना, स्वीकार किया मैंने फिल्म से हमने लिया था। कभी मौसम साफ हो तो जरूर देखिएगा चांद के पास वो कौन सा सितारा होता है जो बड़ा चमकदार होता है, कितना प्यारा लगता है। और अब हम लेते हैं आज का विचार। थोड़ा सा लेट हो गया है लेकिन चलिए, विचार तो विचार है। और विचार में भी हमारे चांद ही है। चांद हमें सिखाता है कि जीवन के सबसे अंधेरे पल ही हमें सबसे ज्यादा चमकना और धैर्य रखना सिखाते हैं। जैसे चांद हर रात बदलकर भी पूरा होने का हौसला नहीं खोता है ना, बस बिल्कुल वैसे ही हमें भी अपना हौसला बरकरार रखना है। चांद को भी तो पूरा होने के लिए कई रातों का सफर तय करना पड़ता है। आसमान के बिना उजाले के भी चांद अपनी रोशनी से रात को रोशन कर देता है। और एक बात और, चांद में दाग है लेकिन फिर भी वो खूबसूरत है। इसलिए अपनी कमियों से प्यार करें। कई शायर, कई कवि जो कविताएं लिखते हैं, चांद की इस बात का जिक्र जरूर करते हैं कि चांद में दाग है। और हम बचपन में कहते थे कि चांद में तो वो बूढ़ी अम्मा होती है, वो बैठ करके चरखा काटती है। बचपन की वो कहानियाँ और चांद की वो बूढ़ी अम्मा चरखा काटती हुई। अभी भी जब हम पूरा चांद देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो परछाइयाँ हमें उसके अंदर नज़र ज़रूर आती हैं। और अब हम अपने बच्चों को ये नहीं बताते कि चांद के अंदर वो चरखा काटती हुई एक बुढ़िया अम्मा होती है। कहाँ सुनाते हैं हम आजकल बच्चों को चांद की कहानियाँ, या कोई भी कहानी सुनाते हैं क्या? और जब बच्चों की बात चल ही पड़ी है तो दोस्तों, बड़ी ही दुखद खबर भी आ रही है। कोई बच्चा जो है वो मोबाइल के चक्कर में, 14 साल का बच्चा, अपने आप को ही उसने, अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर लिया, केवल उसे मोबाइल नहीं दिया गया इसलिए। एक बच्चा जो काफ़ी समझदार भी था, वो जाकर के पहाड़ी पे खड़ा हो गया क्योंकि उसे आईफोन चाहिए था। लेकिन कहीं कभी हमने ये सोचा है कि क्या ये केवल बच्चों की गलती है? क्या ऐसा नहीं है कि शुरुआत से ही उन्हें कुछ माहौल ही घर का वैसा मिलता है कि जब वो इस तरह की ज़िदें करने लग जाते हैं और उस ज़िद में फिर उन्हें नहीं समझ में आता कि वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अगर घर में पहले से ही बच्चों को टोका जाए, रोका जाए, सही गलत का फ़र्क समझाया जाए, या फिर ये बताया जाए कि हम, मतलब जो हमारा परिवार है वो किस हद तक जा सकता है, जितनी चादर हो उतनी ही पैर पसारने चाहिए, बच्चों को ये सिखाया जाना चाहिए। और थोड़ा सा बच्चों की जो संगति है उस पर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि होता पता क्या है, बचपन में ना हम बच्चों को कभी भी ये नहीं कहते कि तुमने ये गलत किया है तो इसके लिए माफ़ी मांगो। हम बोलते हैं कोई बात नहीं, बच्चा है, अगर उसकी गलतियां भी हों तो हम उस पर हंस देते हैं। ये शुरू से ही हमें नहीं करना चाहिए। बच्चों को शुरू से ही ये एहसास होना चाहिए कि हम क्या गलत कर रहे हैं, हम क्या नाजायज़ डिमांड कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से, जो कि वो नहीं पूरी करेंगे। अगर कर भी सकते होंगे तो भी कोई ऐसी डिमांड हो तो बिल्कुल पूरी नहीं करनी चाहिए। खैर, ये अलग विषय है, इसके बारे में किसी और दिन किसी और कार्यक्रम में हम ज़रूर बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम
चांद की ओर रुख करेंगे दोबारा से। और मैंने किसी एक कार्यक्रम में शायद आप लोगों को बताया भी था कि बच्चे जो है ना वो बचपन में चांद पकड़ने की जिद भी करते हैं, तो फिर माँ क्या करती है कि वो थाली लेकर के आ जाती है, उसमें पानी भरती है और चांद की परछाई उसमें दिखती है, तो बच्चा उसमें खेलता है, हाथ ऐसे डालता है तो चांद उधर भाग जाता है, हाथ वहाँ डालता है तो चांद इधर आ जाता है, मतलब चांद उसकी पकड़ में आता ही नहीं, बच्चा उतने में ही खुश हो जाता है। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं एक और चंदा मामा का प्यारा सा मनमोहक सा गीत।

खूबसूरत गीत अभी आपने सुना 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। श्रोताओं, बात आज हो रही है चांद की। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है आज। चंद्रयान 3 मिशन जो है वो पूरा हो गया था आज। और जब चांद की बात चल ही रही है तो आपको ये भी बता दूं कि हमारे देश में तो त्योहारों और चांद का कनेक्शन ही अनूठा है।

पुराने ज़माने में जब घड़ियां या फिर मोबाइल नहीं थे, तब आसमान का चांद ही इंसानों का सबसे पहला और भरोसेमंद कैलेंडर था। चांद के घटने बढ़ने की कलाओं को देखकर ही महीनों का हिसाब रखा जाता था। और बस अभी कुछ दिनों में आने वाला है रक्षाबंधन भी, तो रक्षाबंधन और पूर्णिमा का भी तो संबंध है। यह हमेशा सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूर्णिमा के दिन चांद पूरा और सबसे पवित्र रूप में होता है और मान्यता ये भी है कि पूर्ण चंद्रमा की गवाही में भाई बहन का पवित्र रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत होता है।

और हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनकी जो ईद होती है वो भी तो चांद से ही संबंधित होती है। उनका इस्लाम का हिजरी कैलेंडर पूरी तरह लूनर यानी चंद्र चक्र पर चलता है। जब तक आसमान में ईद का बाल चंद्र हिलाल यानी दूज का चांद नजर नहीं आता तब तक ईद का जश्न और रमज़ान के रोज़े पूरे नहीं होते। ईद का चांद खुशियों का पैगाम लेकर आता है। और करवा चौथ में चांद देख करके व्रत खोला जाता है। बुद्ध पूर्णिमा और गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व भी तो पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है, यानी कि ये चांद ही है जो हम सबको एक धागे में पिरोता है। और अभी तो रुकिए, अभी चांद के काफी सारे अनोखे रहस्यों से भी पर्दा उठाना बाकी है। जी हाँ, जरूर जरूर उठाएंगे ये पर्दा, परंतु पहले चलेंगे एक और गीत की ओर।

वजीर फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से। और इस गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार कर कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में संपन्न हुई। इसमें ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बैठक 2026 के अंतर्गत सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने खेल विकास, युवा भागीदारी तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने व्यावहारिक और सतत सहयोग के साथ ब्रिक्स खेल भागीदारी का निर्माण करने का आह्वान किया। उन्होंने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धा और खेल विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी साझा करने का प्रस्ताव किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है।
2: हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरईसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वह महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्टस एजुकेशन ने अमेज़न वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को AI और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि भारत नवाचार, तकनीक और प्रतिभा का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने स्पष्ट किया है कि वायरस H1N1 के किसी नए रोग की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मौजूदा समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, यह वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। ICMR के अनुसार H1N1 समेत मौसम में इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पडिक्कल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी श्रोताओ, 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। दीवाने जस्तजू हो गया चांद, दीवानाए जस्तजू हो गया चांद, बादल से गिर के खो गया चांद। चांद का हुस्न भी जमीन से है, वार फरमाइएगा, चांद का हुस्न भी जमीन से है, चांद पर चांदनी नहीं होती।

और इसी तरह की कुछ और शायरियाँ सुनने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल आपको सुनवा रहे हैं एक और खूबसूरत गीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने सुना ये गीत। जी हाँ, हम भी तो आपको आज चांद की ही सैर करवा रहे हैं श्रोताओं। और जिन श्रोताओं ने अभी अभी अपने रेडियो सेट्स ऑन किए हैं उनको हम बता दें जानकारियाँ जो हैं। क्या क्या बताना है? भाई बताना ये है कि आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है और आज ही के दिन चंद्रयान 3 मिशन कंप्लीट हुआ था। और ये हुआ था सन 2023 में। उस दिन हम कितने खुश थे ना। आपको पता है कि उस दिन भी जब ये होने वाला था तो यहाँ से हम लाइव वो सब कुछ कवर कर रहे थे और आपको यहाँ से जानकारी भी दे रहे थे। वो इसलिए मुझे याद है कि शायद उस दिन भी मेरी ही ड्यूटी यहाँ पर थी और मैं ही बैठी थी इस हॉट चेयर पर और साथ में अपने इस प्यारे दोस्त माइक के ज़रिए आप तक वो सारी बातें पहुंचा रही थी। तो आप इस समय हैं अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ। और बताएं हम चांद की कुछ और ऐसे रहस्य जो कि शायद आप नहीं जानते हैं। लेकिन हाँ, वो लोग ज़रूर जानते होंगे जो थोड़ा सा भी रिसर्च करते हैं, जानने के इच्छुक होते हैं, उनको ज़रूर पता होगा कि चांद की अपनी एक महक है। जब अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्री चांद की धूल अपने स्पेस सूट पर लेकर के लौटे थे तो उन्होंने बताया कि चांद की मिट्टी से बारूद के जलने जैसी यानी गन पाउडर जैसी महक आती है।

और चांद पर हवा और पानी नहीं है, इसलिए वहाँ कोई धूल उड़ती नहीं। इसका मतलब ये है कि 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने जो पहला कदम रखा था, उसके निशान अगले लाखों सालों तक वैसे ही वहाँ रहेंगे।

और भी ऐसी जानकारियाँ जो आपके साथ हम साझा करेंगे अगले कुछ मिनटों में। लेकिन उससे पहले एक और गीत आप सभी के रेडियो सेट्स पर।

आप सभी इस समय बने हुए हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, और कार्यक्रम पेश कर रही हूं मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। और इस समय मेरे साथ टेक्निकल असिस्टेंट हैं शशि। तो चलिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर हम चंद्रयान 3 मिशन की बात कर रहे हैं और फिर से चलते हैं चांद के पास। बेसबब मुस्कुरा रहा है चांद, बेसबब मुस्कुरा रहा है चांद, कोई साजिश छुपा रहा है चांद। चांद धीरे से मुस्कुराया है, चांद धीरे से मुस्कुराया है, चांद को कौन याद आया है। और आज हम भी उम्मीद कर सकते हैं कि हमें भी चांद शायद नजर आ जाए, क्योंकि मौसम बाहर जो है थोड़ा सा आसमान हमें कहीं कहीं पर साफ नजर भी आ रहा है। और चांद की बातें हम कर रहे थे, आपको बता रहे थे कि चांद के कुछ रहस्य भी हैं। तो चांद पर भूकंप भी आते हैं, जैसे हमारी धरती हिलती है ना, वैसे ही चांद पर भी भूकंप आते हैं, और ऐसा धरती के गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी के खिंचाव के कारण होता है। और आगे हम बताएंगे एक बड़ा ही दुखी कर देने वाला सच, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाएंगे एक आपको खुश कर देने वाला गाना। जी ये लीजिए, आप सभी के रेडियो सेट्स पर प्रस्तुत है ये गीत।

आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला, और इस समय आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। दोस्तों, 7:30 होने को बस 2 मिनट बाकी हैं, और देखिए कब हमने कार्यक्रम शुरू किया था, चांद की बातों से। और चाहते हैं कि चांद की बातों से ही हम इसे ख़त्म भी करें। क्योंकि आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है, चंद्रयान 3 मिशन आज पूरा हुआ था, और एक और ख़ास बात आज के दिन है, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो है इंटरनेशनल हैशटैग डे। हैशटैग्स का इस्तेमाल आप सभी करते हैं, आपको पता है हैशटैग्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं, और हैशटैग्स तो अब बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ख़ास करके फेसबुक पर हम बड़े हैशटैग्स इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है आज।

चलिए वो बात आपको बता देते हैं जो मैंने कहा था कि थोड़ा सा हमें मायूस कर देने वाली है, वो ये है कि चांद हमसे दूर भाग रहा है। चांद हर साल हमसे लगभग 3.8 सेंटीमीटर दूर खिसकता जा रहा है। और चांद पर जब दिन होता है तो तापमान 120 डिग्री सेल्सियस यानी कि उबलता सा होता है, और रात में -130 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। और अगर दोस्तों ये बात है तो फिर हम जो ये सपने देखते हैं कि हमें चांद पर बसना है और चांद पर तो कॉलोनियां बनाने की बात हो रही है, चांद पर कुछ लोग अभी नहीं पता है कि वो सच में है या ऐसे ही फिक्शन में है, कि चांद पर कुछ ज़मीन का टुकड़ा खरीदा जा रहा है। जब तापमान का ये हाल है चांद पर, हवा और पानी वहां पर नहीं है, धूल वहां उड़ती नहीं, कुछ भी ऐसा खास होता नहीं है जो पृथ्वी पर होता है, तो फिर वहां पर रहा कैसे जा सकता है। इसलिए श्रोताओं कभी कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहावने भी होते हैं, तो बस कुछ ऐसा ही ये भी हमारा जो सुहावना सा एक सपना है ना, वो बस ऐसे ही बनाए रखिए। तो फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि चंदा मामा दूर के ही सही हैं।

दोस्तों अभी आपने गीत सुना 1959 की फिल्म लव मैरिज का, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। जी चाहता है तुमको समंदर की सैर कराऊं, जी चाहता है तुमको समंदर की सैर कराऊं, एक चांद की कश्ती में बिठाऊं और एक चांद पानी पर बहाऊं। वाह, यानी एक चांद आसमान में, एक पानी में और एक खुद उनका महबूब। तो दोस्तों शो का अब आखिरी हिस्सा चल रहा है और बात हो रही है चांद की। तो भला हमारे शायर और कवि कैसे पीछे छूट सकते हैं? सच कहूं, अगर दुनिया से चांद गायब हो गया ना, तो हमारे शायरों की आधी शायरी ही खत्म हो जाएगी। शायरों के लिए चांद सिर्फ एक उपग्रह यानी सैटेलाइट नहीं है, ये कभी महबूब का चेहरा बन जाता है तो कभी दूर देश बैठे किसी अपने की याद दिलाता है। जब इंसान बहुत खुश होता है तो उसे ईद का चांद नज़र आता है, और जब वही इंसान तन्हा होता है, अकेला होता है, तो रात के सन्नाटे में वो चांद को ही अपना सबसे पक्का दोस्त मानकर उससे दिल की बातें करने लगता है। तभी तो किसी ने खूब कहा है, रात को रोज चांद का दीदार कर लिया करो, कम से कम तन्हाई में कोई अपना सा तो नजर आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, श्रोताओं, विज्ञान ने भले ही चांद पर तिरंगा फहरा दिया हो, लेकिन हमारे दिलों में चांद आज भी उतना ही जादुई, उतना ही रोमानी और उतना ही खूबसूरत है। तो आज की रात जब आप अपने घर की छत पर जाएं, तो चांद को सिर्फ देखिएगा मत, उससे थोड़ी सी गुफ्तगू भी कर लीजिएगा, यानी कि बातें।

0: श्रोताओ, अब चलते हैं हम आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो प्रादेशिक समाचारों के लिए।
1: आह्वान, प्रदेश में 122 करोड़ रुपए की लागत से 80 स्थानों पर स्थापित होंगे इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग स्टेशन। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने विकसित भारत के निर्माण में शिक्षण संस्थानों की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने भाजपा पर लगाए गए राष्ट्रगान के अपमान के कांग्रेस के आरोपों को नकारा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए अंतरिक्ष स्टार्टअप्स से निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है। अंतरिक्ष स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से आज चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने और भविष्य बनाने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने कहा कि लागत के मामले में भारत की स्थिति काफ़ी बेहतर है और देश में कुशल प्रतिभाओं के साथ जोखिम उठाने की मजबूत क्षमता भी है।
2: आप भारतीय स्टार्टअप को खोजती होगी भाई, कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने होटल व पर्यटन उद्योग से हिमाचल के नए पर्यटन गंतव्यों को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। वाराणसी में आज होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वार्षिक अधिवेशन में उन्होंने कहा कि सड़क, बिजली, पानी और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार से प्रदेश के दूरदराज क्षेत्र के पर्यटन स्थल भी अब अधिक सुगम हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन ढांचे को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दे रही है और कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 3,11,00,000 पर्यटक हिमाचल पहुंचे थे, जबकि इस वर्ष जुलाई माह तक करीब 1,06,00,000 पर्यटक प्रदेश का भ्रमण कर चुके हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कल 24 अगस्त को खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से खिलाड़ियों, जनप्रतिनिधियों और युवाओं से संवाद करेंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण के धर्मशाला स्थित केंद्र में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। माय भारत केंद्र कांगड़ा के उपनिदेशक ध्रुव डोगरा ने बताया कि इस दौरान युवाओं और खिलाड़ियों को फिटनेस सहित विकसित भारत के लक्ष्य का संदेश दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। शिमला में आज राज्य पथ परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में 80 स्थानों पर 122 करोड़ रुपए की लागत से चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। ये चार्जिंग स्टेशन परिवहन निगम के बस अड्डों और वर्कशॉप में स्थापित किए जा रहे हैं। अग्निहोत्री ने बताया कि भविष्य में जहाँ भी जरूरत होगी वहाँ चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि निगम के बड़े बेड़े में शामिल 297 इलेक्ट्रिक बसें लंबे व छोटे रूटों पर सफलतापूर्वक चलाई जा रही हैं। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने विकसित भारत के निर्माण में शिक्षण संस्थानों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। भारतीय प्रबंधन संस्थान जम्मू के स्थापना वर्ष समारोह में उन्होंने कहा कि AI, ऑटोमेशन, डेटा और उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास से व्यवसाय और रोजगार के स्वरूप में व्यापक बदलाव आ रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे बदलते परिवेश में केवल तकनीकी ज्ञान पर्याप्त नहीं होगा। राज्यपाल ने विद्यार्थियों से अपनी डिग्री को शिक्षा की अंतिम मंजिल ना मानते हुए इसे जीवन भर सीखने की यात्रा की शुरुआत के रूप में देखने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि भारतीय प्रबंधन संस्थान जम्मू को हिमालयी क्षेत्र की विकास संबंधी चुनौतियों और संभावनाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आकांक्षी जिला चंबा में स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती के लिए NHPC चमेरा 2 पावर स्टेशन द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत 75,00,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। राज्यसभा सांसद व ऊर्जा संबंधी स्थायी संसदीय समिति के सदस्य हर्ष महाजन ने बताया कि इस पहल से जिला में गरीब, जरूरतमंद और दुर्गम इलाकों के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस स्वीकृत राशि में से 50 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक लेप्रोस्कोपी मशीन उपलब्ध करवाई जाएगी। भाजपा विधायक दल ने वंदे मातरम के मुद्दे पर आज शिमला के रिज मैदान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि वंदे मातरम देश के स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा और स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग व बलिदान का प्रतीक रहा है। ऐसे में इसे विधानसभा में सम्मानपूर्वक गाया जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस द्वारा भाजपा पर लगाए गए राष्ट्रगान के अपमान के आरोपों को भी सिरे से खारिज किया।
3: हमने कहा है कि हम आगे बढ़कर से भी बात करेंगे, हम उसमें लीगल कोर्स भी एग्जामिन कर रहे हैं। हमने गलत किया क्या है? विधानसभा में जो राष्ट्रीय गान के संदर्भ में जो झूठा प्रचार किया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं द्वारा, उसकी हमने वीडियो मांगी है, वीडियो दे पा रही, क्योंकि वीडियो में ऐसा है ही नहीं, कोई अपमान नहीं हुआ। राष्ट्रीय गान के सम्मान में सभी सदस्यों ने खड़े होकर के राष्ट्रीय गान किया है, और जब वीडियो नहीं दे रहे हैं, अगर नहीं देंगे तो हम हाईकोर्ट तक भी जाएंगे।
1: जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर जनहित के मुद्दों से बचने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष बेरोजगारी और चुनावी गारंटियों सहित अन्य मुद्दों पर सदन में चर्चा चाहता है, लेकिन सत्ता पक्ष खुद सदन से बाहर जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर कर्मचारियों व पेंशनरों की लंबित मांगों के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाया है। धर्मशाला में आज भाजपा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के जिला स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि पेंशनरों का 15% महंगाई भत्ता और वर्ष 2016 के वित्तीय लाभ लंबित हैं। अनुराग ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार अपनी दी हुई चुनावी गारंटियों को पूरा करने में विफल रही है।
4: 1,10,000 करोड़ रुपए के कर्ज तले हिमाचल प्रदेश दबा है। कोई ठोस निर्णय हिमाचल की सरकार नहीं कर पा रही, उल्टा हिमाचल प्रदेश की लाखों महिलाएं 1,500 रुपए प्रति महीना जो वायदा किया था कांग्रेस की सरकार ने, वो पिछले 4 सालों से इंतजार कर रही। 5 लाख युवाओं को रोजगार सरकारी नौकरियां देने की बात कही थी, वो 50,000 नौकरी तक नहीं दे पाए। किसानों से किया गया वादा और दूध उत्पादकों से 2 रुपए किलो गोबर और 100 रुपए लीटर दूध खरीदने का, उसका क्या हुआ? 300 यूनिट बिजली के मुफ्त मिलने थे, उसका क्या हुआ?
1: प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से पिछले 24 घंटों में कई क्षेत्रों में व्यापक वर्षा हुई है। इस वर्षा से नदी नाले उफान पर हैं और विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन से यातायात भी प्रभावित हुआ है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में 125 सड़कें अवरुद्ध हैं। इसके अलावा भारी वर्षा से बिजली और पेयजल व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है। राज्य में 30 जून से शुरू हुए मॉनसून सीजन के दौरान बारिश व भूस्खलन से जुड़ी घटनाओं में अब तक 230 लोगों की मृत्यु हुई है। चंबा जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए 25 अगस्त तक मणिमहेश यात्रा स्थगित करने का निर्णय लिया है। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बताया कि ये निर्णय यात्रा मार्ग पर भारी वर्षा के चलते संभावित खतरे को देखते हुए लिया गया है। इस दौरान श्रद्धालुओं से यात्रा मार्ग पर जाने से बचने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया है। आधिकारिक तौर पर मणिमहेश यात्रा 4 सितंबर से शुरू होकर 19 सितंबर तक चलेगी। लाहौल स्पीति में राज्य स्तरीय पोरी मेले के अंतिम दिन त्रिलोकीनाथ मंदिर से आज मणिमहेश यात्रियों को विदाई दी गई। हर वर्ष जिला से श्रद्धालु दुर्गम स्थानों से पैदल सफर तय कर मणिमहेश झील तक पहुँचते हैं। अधिक ब्यौरे के साथ ये रिपोर्ट।
5: लाहौल स्पीति में भगवान शिव के प्रति गहरी आस्था से जुड़ी ये यात्रा डड़ी यात्रा के नाम से प्रसिद्ध है। हर वर्ष श्रद्धालु राशल और कुगती दर्रे के दुर्गम रास्तों से करीब 5 दिन पैदल सफर कर मणिमहेश झील पहुंचते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार राधाष्टमी के दिन सूर्य की पहली किरण जब झील पर पड़ती है तो झील का जल अमृत समान हो जाता है। श्रद्धालु इस पवित्र झील में स्नान को पुण्यदायी मानते हैं। त्रिलोकीनाथ से दी गई ये विदाई लाहौल स्पीति की धार्मिक आस्था और सदियों पुरानी परंपरा का जीवन प्रतीक बन चुकी है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
1: अदालतों में लंबित मामलों को मध्यस्थता, सुलह व आपसी सहमति से निपटाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। हमीरपुर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि जिला की सभी अदालतों में ये अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत केस का निपटारा करने के लिए संबंधित अदालत में आवेदन किया जा सकता है। मध्यस्थता के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने पर दिया बल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यटन उद्योग से प्रदेश में नए पर्यटन गंतव्यों को बढ़ावा देने का किया आह्वान। प्रदेश में 122 करोड़ रुपए की लागत से 80 स्थानों पर स्थापित होंगे इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग स्टेशन। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने विकसित भारत के निर्माण में शिक्षण संस्थानों की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने भाजपा पर लगाए गए राष्ट्रगान के अपमान के कांग्रेस के आरोपों को नकारा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
0: श्रोताओ 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का भी, लेकिन चलते चलते आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: काला बाजार फिल्म का ये गीत है मोहम्मद रफी की आवाज।
1: तुमको भी कैसे नींद आएगी, ओ खोया खोया जा।
0: तो आज रात को जब आप घर की छत पर जाएं, वैसे तो बाहर अब बारिश हो रही है, लेकिन जहां पर चांद दिख रहा है वहां आसमान में चंदा मामा को देखें और गर्व से मुस्कुराएं, क्योंकि अब वहां सिर्फ दाग नहीं है,
1: खोया खोया जा।
0: वहां हमारे प्यारे भारत के चंद्रयान के कदमों के निशान भी छुपे हैं। तो दोस्तों, अंत में इसरो के वैज्ञानिकों को सलाम करें और कहें कि विज्ञान को अपनाएं और देश का नाम रोशन करते जाएं।
1: हवा जो चले,
0: लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: बोलिया आकर बोलिया बोलिया आकर आ बोलिया
1: गोरिया।
2: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
3: बैठिए मैडम बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो, पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था, एक चतुर नार बड़ी होशियार, है क्या गाना था वो?
4: ओए बिट्टो, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है?
3: लेकिन भाई साहब आप कौन है?
4: जी मैं इसका बाप हूँ।
3: आप इसके बाप हूँ? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है?
5: जी नहीं।
3: तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें?
6: जवान तो कटेगा भैया तेरा।
3: और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि
5: रोड किसी के बाप का नहीं।
3: शाबाश, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
7: नमस्कार दोस्तों, प्रेम विश्वास और भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पावन पर्व रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि प्यार विश्वास सुरक्षा और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है।

रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। हर कलाई पर सजे प्यार का धागा और हर चेहरे पर मुस्कान रहे। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ रेडियो गुंजन धर्मशाला की ओर से आ रहे इस रक्षाबंधन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

0: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी?
1: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
0: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए कौन सा स्टाइल चाहिए आपको। ये देखिए, पिछले महीने मिश्रा जी की बेटी की शादी के लिए सिया था।
1: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए, थोड़ा सिंपल दिखाइए।
0: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
1: चुन्नी के लिए।
0: ये अपनी चुन्नी?
1: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है
0: बेटा। चुन्नी कितने साल के हो आप?
2: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी। पंडित जी ने इसी इतवार का मुहूर्त निकाला है, तो हो तो जाएगा ना तब तक।
0: अच्छा, 12 साल की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
2: नहीं, क्यों?
0: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
2: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
0: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
3: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
0: ना हम सिएंगे, ना किसी को सीने देंगे।
4: जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा मित्र, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी खामोशी में ही ईश्वर का वास।
5: मम्मी जी क्या कह रहे हैं, बचपन में आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था।
6: हाँ, जब मैं 12 साल का था ना, तो मैं पापा को बिना बताए उनकी बाइक लेके घर से बाहर निकल गया, और मैं बाइक इतनी तेज चला रहा था कि सामने से एकदम से ट्रक आ गया। तो ट्रक को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से लेफ्ट ले लिया। तो जैसे ही लेफ्ट लिया, सामने से गाड़ी आ रही थी, और गाड़ी में जाके बाइक लगी और बाइक पूरी खत्म हो गई।
5: बेबी, बाइक को छोड़ो, आप बताओ आप बचे थे कि नहीं।
6: तब तो बच गया था, लगता है अब नहीं बचूंगा।

नमस्कार। 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन रंजिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। जल शक्ति विभाग में होगी 4000 मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती। SOS की परीक्षाएं 17 से हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी किया शेड्यूल। इसरो अब नहीं बनाएगा कोई रॉकेट। रूफटॉप सोलर सिस्टम ग्रिड से जोड़ना अब और आसान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जल शक्ति विभाग में जल्द ही मल्टीटास्क वर्कर्स के 4000 पद भरे जाएंगे। ये बात उन्होंने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक भुवनेश्वर गौड़ के सवाल के जवाब में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण, जल शक्ति विभाग और बिजली बोर्ड में क्रियाशील रिक्त पदों को भरा जाएगा। उनका कहना है कि सरकार बिजली बोर्ड के अधिशासी अभियंता के माध्यम से बिजली मित्रों की भर्ती करेगी। मनाली विधानसभा क्षेत्र में भी बिजली मित्रों की भर्ती होगी। इसमें स्थानीय युवकों को तरजीह दी जाएगी। बेलदार के पदों के लेकर मुख्यमंत्री ने साफ किया कि इन्हें पूर्व सरकार के वक्त ही समाप्त कर दिया गया है तथा इनके स्थान पर MTW की नीति बनी है। हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। इसके तहत 122 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश में 80 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें से 34 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं जबकि 21 स्थानों पर आगामी एक माह के भीतर चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर लिए जाएंगे। शेष 25 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। ये जानकारी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि ये चार्जिंग स्टेशन HRTC के बस अड्डों और वर्कशॉप में स्थापित किए जा रहे हैं। इससे विभिन्न रूटों पर संचालित इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग सुविधा उपलब्ध होगी और उनके संचालन को और गति मिलेगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के साथ साथ उनके लिए आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार प्रदेश में आधुनिक, किफायती और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। HRTC इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए आवश्यक सुविधाओं को चरणबद्ध तरीके से विकसित कर रहा है ताकि यात्रियों को बेहतर और आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वाराणसी में आयोजित फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 56वें वार्षिक अधिवेशन में देश भर में आए होटल व्यवसायियों, ट्रेवल एजेंटों, टूर ऑपरेटरों और पर्यटन उद्योग से जुड़े अन्य प्रतिनिधियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने पर्यटन उद्योग से जुड़े सभी लोगों से आग्रह किया कि वे देश विदेश के पर्यटकों को हिमाचल आने के लिए प्रोत्साहित करें तथा अपने टूर पैकेज में राज्य के नए और अनछुए पर्यटन स्थलों को भी शामिल करें। उनका कहना है कि हिमाचल की शांत और सुरक्षित घाटियां, स्वच्छ हवा, निर्मल हरे भरे जंगल, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और गांवों की सरल जीवन शैली इससे देश और विदेश के पर्यटकों के बीच एक अलग पहचान प्रदान करती है। आज का पर्यटक केवल पारंपरिक पर्यटन स्थलों तक सीमित नहीं रहना चाहता बल्कि वो शांति, प्रकृति, स्थानीय संस्कृति, वेलनेस, प्रामाणिक अनुभव और स्थानीय लोगों के साथ जुड़ाव को भी प्राथमिकता दे रहा है। हिमाचल इन सभी नई पर्यटन आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखता है। उनका कहना है कि सड़क, बिजली, पानी और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार से राज्य के दूरदराज क्षेत्र के पर्यटन स्थल भी अब अधिक सुगम हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यटकों को हिमाचल के अनछुए क्षेत्रों, स्थानीय संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली से करीब से परिचित करवाने के लिए अनुभव आधारित पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। इसके साथ ही कारवां पर्यटन और वीकेंड पर्यटन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। महिलाओं के लिए

हिमाचल प्रदेश को सुरक्षित और स्वागत योग्य पर्यटन गंतव्य बनाने के उद्देश्य से सी डबल नीति तैयार की जा रही है। सरकार महिलाओं को होम स्टे, स्थानीय खाद्य व्यवसाय, हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पादों और पर्यटन से जुड़े स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए महिला आधारित पर्यटन उद्यमिता को भी बढ़ावा दे रही है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के SOS की 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 17 सितंबर से शुरू होंगी। इस दौरान पूर्ण विषय रिपेयर, श्रेणी सुधार, विशेष अंक सुधार और अतिरिक्त विषय की परीक्षाएं शामिल होंगी। इन परीक्षाओं का आयोजन सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। बोर्ड ने परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। 8वीं कक्षा की परीक्षाएं 17 से 24 सितंबर, 10वीं कक्षा की 17 से 28 सितंबर और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 17 सितंबर से 6 अक्टूबर तक रहेंगी। इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। 10वीं और 12वीं कक्षाओं के परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं 8 से 17 अक्टूबर तक आंतरिक रूप से सभी राजकीय और संबद्धता प्राप्त विद्यालयों में स्थापित अध्ययन केंद्रों में संबंधित विषय के अध्यापक द्वारा स्थल पर ही प्रश्न पत्र सेट करवाकर संचालित करवाई जाएंगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अब तक के सबसे बड़े ढांचागत बदलाव की तैयारी कर रहा है। इसरो अब खुद रॉकेट बनाने का काम धीरे धीरे बंद करेगा। आगे रॉकेट बनाने की जिम्मेदारी निजी कंपनियों और कुछ सरकारी कंपनियों को दी जाएगी। इंस्पेस के चेयरमैन डॉक्टर पवन गैनका ने बताया कि इसरो अपने पारंपरिक काम जैसे लॉन्च व्हीकल और आम सैटेलाइट बनाने का जिम्मा धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर और PSU को सौंपने जा रहा है। इसरो अब रिसर्च, नई टेक्नोलॉजी, वैज्ञानिक मिशन और जरूरी स्पेस सिस्टम पर ज्यादा ध्यान देगा। इस बदलाव का मकसद देश में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाना और स्पेस सेक्टर की को तेजी से आगे बढ़ाना है। हिमाचल प्रदेश में घरों और अन्य पात्र परिसरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाकर बिजली ग्रिड से जोड़ना अब पहले के मुकाबले आसान होगा। हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग ने रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक ग्रिड इंटरैक्टिव सिस्टम लगाने वाले उपभोक्ताओं के लिए आवेदन और कनेक्शन प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बना दिया है। आयोग ने रूफटॉप सोलर PV ग्रिड इंटरैक्टिव सिस्टम विनियम 2015 में 14 संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी की है। संशोधित नियमों के तहत पात्र उपभोक्ता केंद्र या राज्य सरकार की रूफटॉप सोलर योजना के तहत सोलर सिस्टम स्थापित कर उसे बिजली ग्रिड से जोड़ने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया को किसी एक माध्यम तक सीमित नहीं रखा गया है। उपभोक्ता डाक के माध्यम से संबंधित कार्यालय में स्वयं जाकर ईमेल अथवा निर्धारित आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के लिए निर्धारित फॉर्म एक बिजली वितरण कंपनी की वेबसाइट और उसकी अधिकृत कार्यालयों में उपलब्ध रहेगा। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।

0: एले गोरिया।
1: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
2: बैठिए मैडम बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था, एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो।
3: अरे बेटो तू यहाँ क्या कर रहा है, और ये दोनों लड़कियों कौन है?
2: देखिए भाई साहब आप कौन है?
3: जी मैं इसका बाप हूँ।
2: आप इसके बाप हूँ? महमूद का बेटा नहीं तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है?
4: जी नहीं।
2: तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें?
5: चालान तो कटेगा भैया तेरा,
2: और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियम का पालन कीजिए, क्योंकि
4: रोड किसी के बाप का नहीं।
2: शाबाश, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
6: नमस्कार दोस्तों, प्रेम विश्वास और भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पावन पर्व रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि प्यार विश्वास सुरक्षा और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है।

रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। हर कलाई पर सजे प्यार का धागा और हर चेहरे पर मुस्कान रहे। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ रेडियो गुंजन धर्मशाला की ओर से आ रहे इस रक्षाबंधन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

0: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी?
1: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
0: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए कौन सा स्टाइल चाहिए आपको। ये देखिए, पिछले महीने मिश्रा जी की बेटी की शादी के लिए सिया था।
1: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए, थोड़ा सिंपल दिखाइए।
0: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
1: चुन्नी के लिए।
0: ये अपनी चुन्नी?
1: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
0: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
2: अगले ही महीने 12 साल की हो जाएगी। पंडित जी ने इसी इतवार का मुहूर्त निकाला है, तो हो तो जाएगा ना तब तक।
0: अच्छा, 12 साल की है।

0: तो आपको प्रॉब्लम नहीं है
1: नहीं क्यों?
0: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
1: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
0: अरे भैया जी एक मिनट, अरे बिरजू वो कौन सा नंबर है निकलवाओ तो जरा।
2: मास्टर जी टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
0: ना हम सीएंगे ना किसी को सीने देंगे।
3: जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा मित्र, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी खामोशी में ही ईश्वर का वास।
4: मम्मी जी क्या कह रहे हैं, बचपन में आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था।
5: हाँ, जब मैं 12 साल का था ना, तो मैं पापा को बिना बताए उनकी बाइक लेके घर से बाहर निकल गया, और मैं बाइक इतनी तेज चला रहा था कि सामने से एकदम से ट्रक आ गया। तो ट्रक को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से लेफ्ट ले लिया। तो जैसे ही लेफ्ट लिया, सामने से गाड़ी आ रही थी और गाड़ी में जाके बाइक लगी और बाइक पूरी खत्म हो गई।
4: बेबी बाइक को छोड़ो, आप बताओ आप बचे थे कि नहीं।
5: तब तो बच गया था, लगता है अब नहीं बचूंगा।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी, और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहाँ हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

0: 우리 아
1: 우리 아 가라 우리 아
2: गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: बैठिए मैडम बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो, पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था, एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो?
5: अरे बेटो तू यहाँ क्या कर रहा है, और ये दोनों लड़कियों कौन है?
4: देखिए भाई साहब आप कौन है?
5: जी मैं इसका बाप हूँ।
4: आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है?
6: जी नहीं।
4: तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें?
7: चालान तो कटेगा भैया तेरा।
4: और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियम का पालन कीजिए, क्योंकि
6: रोड किसी के बाप का नहीं।
4: शाबाश, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
8: नमस्कार दोस्तों, प्रेम विश्वास और भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पावन पर्व रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि प्यार विश्वास सुरक्षा और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है।

रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। हर कलाई पर सजे प्यार का धागा और हर चेहरे पर मुस्कान रहे। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ रेडियो गुंजन धर्मशाला की ओर से आ रहे इस रक्षाबंधन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

0: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी?
1: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
0: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए। कौन सा स्टाइल चाहिए आपको? ये देखिए, पिछले महीने मिश्रा जी की बेटी की शादी के लिए सिया था।
1: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए। थोड़ा सिंपल दिखाइए।
0: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
1: चुन्नी के लिए।
0: ये अपनी चुन्नी?
1: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है
0: बेटा। चुन्नी, कितने साल के हो आप?
2: अगले ही महीने 12 साल की हो जाएगी। पंडित जी ने इसी इतवार का मुहूर्त निकाला है, तो हो तो जाएगा ना तब तक।
0: अच्छा, 12 साल की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
2: नहीं, क्यों?
0: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
2: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
0: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
3: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
0: ना हम सिएंगे, ना किसी को सीने देंगे।
4: जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा मित्र, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी खामोशी में ही ईश्वर का वास।
5: मम्मी जी क्या कह रहे हैं, बचपन में आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था।
2: हाँ, जब मैं 12 साल का था ना, तो मैं पापा को बिना बताए उनकी बाइक लेके घर से बाहर निकल गया, और मैं बाइक इतनी तेज चला रहा था कि सामने से एकदम से ट्रक आ गया। तो ट्रक को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से लेफ्ट ले लिया। तो जैसे ही लेफ्ट लिया, सामने से गाड़ी आ रही थी, और गाड़ी में जाके बाइक लगी और बाइक पूरी खत्म हो गई।
5: बेबी, बाइक को छोड़ो, आप बताओ आप बचे थे कि नहीं?
2: तब तो बच गया था, लगता है अब नहीं बचूंगा।

पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो, हम सबका यही है प्रयास। दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज़। सो स्टे ट्यून विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।